कई बार आंख मारना भी कितना पावरफुल है, देखिए किसी की जान जा सकती है. एंड जान नहीं जानी चाहिए, जान बरकरार रहनी चाहिए. और आपका जो ये वीक है वो बहुत बढ़िया जाना चाहिए, ये मेरी इच्छा है, मेरी मुराद है. एंड दैट इज व्हाट आई एब्सोल्युटली लव. इसके साथ में मेरा भी थोड़ा सा पर्सनल सेल्फिश एटीट्यूड कह सकते हैं, सेल्फिश मोटिव कह सकते हैं, कि मैं चाहती हूँ मेरा भी हफ्ता बहुत अच्छा जाए. और मैं ऐसा दिल से मानती हूँ कि जब हमारे आसपास लोग खुश होते हैं, जब दे फील बेटर एंड वी मे बी इन सम वेज मेक देम फील बेटर, वी फील बेटर. इट्स अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन. तो अगर आप लोग खुश हैं, आप लोग इंजॉय करेंगे फन एशिया रेडियो को 104.9 FM विद पारो, सो बिलीव मी पारो इज गोइंग टू एंजॉय इवन मोर. एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक दिस वीक ग्लोरियस. हैप्पी मंडे टू यू ऑल. गाना सुनना चाहते हैं 972-3555-55 पर कॉल कर सकते हैं एंड आई विल प्ले द सॉन्ग दैट यू वांट टू लिसन. क्या है आज की थीम बताएंगे, करेंगे बात थोड़ी सी देर में.

0: बताना चाहती हूँ आपको, दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय उमर ख्वाजा. इफ यू आर इन्वॉल्व्ड इन अ कार और ट्रक एक्सीडेंट, होपफुली नॉट, और अ स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट, डेफिनेटली नॉट. लेकिन जिंदगी है, कई बार हो जाता है, कई बार फिसल जाते हैं, कई बार कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट इस तरह का कुछ. इफ दैट हैपन्स, अटर्नी उमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कंपनसेशन दैट यू डिजर्व. Dealing with insurance companies can be stressful, so you need an attorney that will make sure you are compensated. You don't pay until you win. That is the key, and I absolutely love that. That means that you can call them for a free consultation. Kaise kar sakte hain? Free consultation ke liye unhe call kar sakte hain. Number hai 469-300-5046. Or you can visit their website, which is attorneyomer.com. So it is attorneyomer together as one word .com. And so this is something that is a very resourceful number, and the email, the website that you should know in any event that you need, that you will, if you need to use it. And I also want you to know that this segment is brought to you, yes, by Umar Khwaja, with traffic updates around DFW and accident report as well. And we'll talk about that as well in a little bit. Lekin request aane shuru ho gayi hai mere paas. Agar aap koi gana suna chahte hai, to aap call kar sakte hai. वैसे तो हमारा फनीशा का नंबर हर किसी को पता है, लेकिन बहुत सारे नए लिसनर्स हमारे साथ हर महीने जुड़ रहे हैं. डालस में बहुत सारे लोग, व्हेन दे मूव टू डालस, और मे बी व्हेन दे वर नॉट वेरी अवेयर अबाउट द इंडियन थिंग्स लाइक इंडियन अवर नंबर वन रेडियो स्टेशन फनीशा रेडियो 104.9 FM, अभी उनको पता चल रहा है. तो ऐसे हर महीने हमारी लिसनरशिप बढ़ रही है, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं. सो ऐसा होता है कि कुछ लोगों को शायद हमारा नंबर ना पता हो, कुछ लोगों को शायद पारो का नाम ना पता हो, क्योंकि मैं हूं पारो. नंबर अगर नहीं पता है तो 972-355-5555 पर कॉल कर सकते हैं. एंड इफ यू आर अ न्यू लिसनर ऑफ फनीशा रेडियो, यू आर अ न्यू फैन ऑफ फनीशा रेडियो, देन वेलकम. वी लव आवर फैंस. फनीशा रेडियो, यू आर ऑन एयर.
1: Hi, how are you?
0: I'm good.
1: मुझे एक गाना रिक्वेस्ट करना है, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का, दम मस्त कलंदर.
0: दम मस्त कलंदर. आपका नाम क्या है सर?
1: हसन.
0: हसन साहब, बड़ा बढ़िया गाना आपने करा है सेलेक्ट फॉर मंडे इवनिंग, बड़ा मस्त गाना. आई विल प्ले दैट. थैंक यू सो मच.
1: जी, थोड़ा सा टायर्ड हूँ ना, ये गाना सुन के एनर्जी आ जाती है.
0: एनर्जी आ जानी, अब फनीशा को सुन के तो एनर्जी बहुत जबरदस्त आ जाती है मेरे.
1: मैं तो बोलती हूँ, सुनता हूँ आप लोगों को.
0: थैंक यू सो मच. और कड़क चाय, दैट इज दी अदर, मुझे लगता है कि वो एक बड़ा इंग्रेडिएंट इम्पोर्टेंट है मेरे लिए फॉर एनर्जी, स्पेशली शाम को. तो शौकीन है आप चाय के?
1: हाँ बिल्कुल है.
0: चलिए फिर, आप
1: अभी वाइफ को ऑलरेडी फोन करके बोल दिया है कि रेडी रखो, कल आ रहा हूँ.
0: अरे वरे, आपने तो घर में पहले ही मतलब इंस्ट्रक्शन दे दिया. ये नहीं आपने कहा कि मैं घर जाके मैं बनाऊंगा कड़क कड़क चाय और बीवी को भी पिलाऊंगा और खुद भी पीऊंगा.
1: चलिए, मैं तो अभी जॉब फिनिश करके आ रहा हूँ ना.
0: थक के आ रही है. नहीं नहीं, दैट इज वेरी स्वीट. थैंक यू सो मच सर. हसन साहब,
1: थैंक यू.
0: हसन साहब का गाना चलाएंगे, लेकिन उसके पहले आई थी वसीम साहब की रिक्वेस्ट, और उन्होंने कहा था कि एक अच्छा सा गाना आतिफ असलम साहब का लगा दीजिए, और वो भी ड्राइव कर रहे हैं. आई एब्सोल्युटली लव आतिफ असलम. और ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है पारो के लिए कि कौन सा गाना अच्छा है आतिफ असलम साहब का, क्योंकि इतने सारे अच्छे हैं. बट आई एम गोइंग टू प्ले वन व्हिच आई एक्चुअली लाइक ऑल्सो, नॉट जस्ट बिकॉज ऑब्वियसली आतिफ असलम साहब ने गाया है, बट मुझे इसके ना लिरिक्स बहुत अच्छे लगते हैं. मुझे इसके जो शब्द हैं, जो इसमें उर्दू की पोएट्री है, जो वो बहुत ही अच्छी लगती है.

प्रीतम साहब का म्यूजिक है और आतिफ असलम साहब गा रहे हैं और बड़ा फेमस गाना है ये, बट आई एब्सोल्युटली लव द लिरिक्स इन दिस जो इरशाद कामिल साहब के हैं. बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे शायरी करते हैं और बहुत बहुत सारे लिरिक्स लिखते हैं इरशाद कामिल साहब. एंड आई जस्ट वांट टू से फ्यू लाइन्स. देखिए आप ज़रा ध्यान दीजिए कितना बढ़िया प्यारा रोमांटिक गाना है. रोमांटिक गाने मुझे जब बहुत अच्छे लगते हैं, जब उनमें और ज़्यादा कुछ पोएट्री होती है, कुछ मीनिंग होता है और बड़ा इंटरेस्टिंग सा मीनिंग है. जैसे इसमें ख्वाब है तू नींद हूं मैं, दोनों मिले रात बने. आई एब्सोल्युटली लव दैट. और पूरी इसी तरह की इसमें बहुत सारी पोएट्री चलती रहती है. अगर आप पूरा ध्यान से सुने, तेरे ख्यालों से तेरे ख्यालों तक मेरा तो है आना जाना, मेरा तो जो भी है तू ही था तू ही है, बाकी जहां है बेगाना. एब्सोल्युटली रियली फैबुलस. और एक और बताना चाहती हूं आपको, तुम एक मुसाफिर हो मैं कोई रहा अनजानी, तुम एक मुसाफिर हो मैं कोई रहा अनजानी, मन चाहा मोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी. रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी. एब्सोल्युटली वंडरफुल लिरिक्स. और जब इतनी प्यारी आवाज में गाया है आतिफ असलम साहब ने तो बहुत ही बढ़िया गाना बन गया है. और इसके साथ हसन साहब का गाना मैं चलाती हूँ. हसन साहब, एक चीज के लिए माफी पहले से मैं मांग लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो आपने ऑन एयर बोला था, हमारे सारे लिसनर्स सुन रहे हैं तो उन्हें पता है आपकी एग्जैक्ट रिक्वेस्ट. लेकिन मैं इन सब ख्यालों में और ये जो इतने बढ़िया लिरिक्स हैं और इन सब के लिरिक्स इतने ब्यूटिफुल, इनके मीनिंग में एक चीज भूल गई है. आपने मेरे ख्याल से तो नुसरत फतेह अली खान साहब का था, क्योंकि ये गाना बहुत सारे जो आपने रिक्वेस्ट किया है वो गाना बहुत सारे सिंगर्स गा चुके हैं और राहत फतेह अली खान साहब ने भी गाया है. और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपने शायद रिक्वेस्ट किया नुसरत फतेह अली खान साहब का, लेकिन अगर आपने किसी और का रिक्वेस्ट किया तो फिर भी आप मुझे लगता है एंजॉय करेंगे. क्योंकि जब नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज सुनते हैं और उनका ओरिजिनल गाना सुनते हैं तो कितने भी अच्छे सिंगर हों, सभी थोड़े से तो कम लगते हैं. सो लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग हसन साहब आपके लिए.

हैप्पी मंडे टू यू ऑल. मुझे मंडे बहुत पसंद है. क्यों पसंद है बताऊंगी थोड़ी देर में. बहुत सारे रीजंस है, बट आई रियली लाइक मंडे. मुझे लगता है ऐसे लगता है जैसे शुरुआत हुई है किसी बढ़िया सी चीज की, मतलब इस हफ्ते की, वो भी बढ़िया ही चीज है. एंड आई रियली लाइक इवनिंग्स. मुझे शाम बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मौसम भी शाम को कई बार, स्पेशली अब जब गर्मी हो रही है, तो मुझे लगता है शाम को बड़ा अच्छा ठंडा ठंडा सा मौसम हो जाता है और बड़ा आई एंजॉय दैट फील. स्पेशली अब जैसे वेर यू आर हेडिंग इन टू समर, स्प्रिंग चल रहा है अभी, लेकिन वी आर हेडिंग इन टू समर और मुझे लगता है शाम को मुझे बड़ा अच्छा लगता है. अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग, दैट टू मी, फॉर मी इज द परफेक्ट टाइम. बड़ा जैसे थोड़े देर पहले हमारे लिसनर से भी बात हो रही थी, बड़ा अच्छा लगता है शाम को कड़क कड़क चाय पीजिए सुबह शाम. एंड आई एब्सोल्युटली लव अदरक वाली मसाले वाली चाय. और मुझे लगता है कि जिंदगी में और क्या चाहिए, यही तो चाहिए. एक बढ़िया सा मंडे हो, बढ़िया सी मंडे की शाम हो, बढ़िया सी कड़क कड़क चाय हो और पारों को सुनते हुए ड्राइव कर रहे हो. वैसे ड्राइव करते हुए पता नहीं आप लोग चाय पीते, मैं तो एक्चुअली ड्राइव करते हुए भी पीती हूँ. आई ऑलवेज हैव माय कप विद मी. अभी मैं आ रही थी तो मैं अपना चाय का प्याला अपने साथ टू गो में जो टू गो जो कप है उसमें लेके आ रही थी, बिकॉज चाय मेरे हाथ में रहती है तो मुझे ऐसा लगता है कि पावर है मेरे पास. और पावर की अगर बात करें तो कनेक्टिंग अमेरिका की बात बताना चाहती हूँ आपको. दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय कनेक्टिंग अमेरिका. विद कनेक्टिंग अमेरिका यू कैन टर्न योर बिजनेस एक्सपेंसेस इनटू अ पावरफुल इनकम स्ट्रीम थ्रू अ यूनिक इंश्योरेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी डिजाइन टू बूस्ट योर बॉटम लाइन. और यहीं पर नहीं खत्म होती है इनकी बात, इट डजंट स्टॉप देयर. दे ऑल्सो हेल्प होम ओनर्स पे ऑफ देयर मॉर्गेज इन 10 years और लेस. तो इंतजार मत करिए, जेम्स साहब को कॉल करिए आज ही इसी वक्त और या जब भी आप कर सकते हैं एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस. नंबर है उनका 3218887345. आप विजिट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट विच इज कनेक्टिंग अमेरिका फाइनेंशियल्स. दैट्स वन वर्ड टुगेदर, कनेक्टिंग अमेरिका फाइनेंशियल्स .com एंड स्टार्ट टर्निंग योर डेली एक्सपेंसेस इनटू इनकम. कनेक्टिंग अमेरिका इज वेयर स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश. थोड़ा सा वक्त बचा है, एक ब्रेक में जाने वाले हैं. लेट्स लिसन टू दिस फन सॉन्ग. ये गाना है जो मैं अगला चलाने वाली हूँ, जो मुझे इसके इतने सारे रेंडिशंस आ चुके हैं और मुझे समझ नहीं आता कि मुझे कौन सा ज्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे तो सारे ही पसंद है. इतना बढ़िया फोक गाना, उसके बाद इसको क्या क्या क्या क्या मसाला मिला के इसको बना दिया. ये गाना ना थोड़ा पनीर की तरह है. पनीर की आप कितनी भी अलग अलग तरह की सब्जियां खा ले, सभी अच्छी लगती हैं. एंड विद दैट वी विल बी हेडिंग इट टू अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक एंड देन वी विल बी बैक राइट हियर ऑन 104.9 FM, पारो इन द हाउस.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय वन गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: कहते हैं माँ के हाथ का खाना दुनिया में सबसे स्पेशल होता है, पर इस मदर्स डे लेट्स मेक थिंग्स स्पेशल फॉर हर। एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस वेयर शी एंजॉयज एंड वी सेलिब्रेट हर,
2: द फ्लेवर लाउंज वेयर एवरी डाइनिंग मोमेंट इज एन एक्सपीरियंस।
1: ऑन दिस मदर्स डे फ्लेवर लाउंज ला रहा है एक मीठा सा सरप्राइज, अ कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट फॉर एवरी मदर।
2: द फ्लेवर लाउंज एट प्रेस्टन रोड फ्रिस्को एट मलाबार गोल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर मदर्स हु मेक लाइफ फ्लेवरफुल।
3: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है, और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8682364611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई।
4: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेरी।
5: ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां,
6: जुल्फें सिर्फ हवा में नहीं स्टाइल में भी उड़नी चाहिए। बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो, सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर, अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट। बिकॉज ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक, इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस। मेंशन फनएजिया एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर हेयर स्टाइल सर्विस। कॉल अमरीन एट 214-909-6601
1: और विजिट देयर इंस्टाग्राम अमरीन सैलून, लोकेटेड एट एलन एंड फ्रिस्को।
6: अमरीन सैलून, style that moves with you.
7: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
8: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.

May the fourth be with you. May the force be with you. जी हाँ, ये मैं नहीं कहते, ये स्टार वॉर्स ने ये इसका जो पन है आप ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा फेमस है. एंड दैट इज टूडेज डे. और इस बिसी की वजह से, इस वजह से और कुछ और भी वजह है, बट डेफिनेटली इस वजह से स्टार वॉर्स डे के नाम से जाना जाता है आज का दिन. आई नो अ लॉट ऑफ यू आर फैंस ऑफ स्टार वॉर्स, और हमारा बॉलीवुड भी स्टार वॉर्स और इस तरह की मार्वल कॉमिक्स और इस तरह की जो फिल्में हैं उनसे इतना प्रभावित हुआ है. तभी तो इतने सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ और बहुत सारी फिल्मों में तो दे यूज दी हॉलीवुड टेक्नोलॉजी. दे एक्चुअली हैव पीपल फ्रॉम हॉलीवुड हेल्पिंग देम एंड ट्राइंग टू क्रिएट द सेम इफेक्ट. तो स्टार वॉर्स बहुत फेमस है, लोग बड़े फैंस हैं स्टार वॉर्स के. तो आज का दिन हमारे स्टार वॉर्स के जो फैंस हैं उनको मैं नमन करना चाहती हूँ, बिकॉज टुडे इज देयर डे. टुडे इज द डे ऑफ स्टार वॉर्स. May the fourth be with you. May the force be with you. Again, those who are joining us, I want to wish you all a very happy Monday.

What a beautiful song. और इसके भी lyrics बहुत ही प्यारे हैं. अगर आपको वक्त मिले तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनिएगा ये गाना और lyrics पे ध्यान दीजिएगा. Very beautiful, meaningful. कितना हम connection ढूंढते हैं ऐसा लगता है जब मैं इन गानों को सुनती हूँ. कोई भी इंसान, कभी आप किसी से प्यार करते हैं तो connection ढूंढते हैं, किसी से दोस्ती है तो connection ढूंढते हैं. कहीं ना कहीं हम लोगों से, चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट गई हैं. कई बार ऐसा होता है मेरे पास कोई एक चीज़ निकलती है जो शायद किसी ने मुझे कई साल पहले गिफ्ट करी थी, अभी तो मेरे पास उस बंदे का या बंदी का नाम तक नहीं है, कहीं नंबर नहीं है. समटाइम्स यू फॉरगेट, बट वो चीज जो है वो दैट टेक्स यू बैक टू दैट मेमोरी ऑफ दैट पर्सन. चाहे और भी आपको शायद उस इंसान के बारे में ज्यादा याद ना हो, लेकिन चीजें जो होती हैं उसके साथ कनेक्शन, ये कनेक्शन जो हैं दे मेक मी वेरी इमोशनल. एंड आई थिंक दिस इज वॉट कनेक्ट अस ऑल, क्योंकि ये एक चीज ऐसी नहीं है कि ये पारो कह रही है. दिस इज समथिंग आई फील ऑल ऑफ अस फील इन डिफरेंट वेज. कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी की भीड़ में भागते रहते हैं हम और ये कनेक्शंस हम ध्यान नहीं देते, ये कहीं छूट जाते हैं. ऐसा नहीं है, हम सब बंधे हुए हैं इन कनेक्शन से, लेकिन कई बार हमें जो नॉइज है वो इतना ड्राउन कर देता है. नॉइज ऑफ वर्क, प्रेशर, फैमिली, लॉट ऑफ कमिटमेंट्स, बहुत कुछ कर गुजरने की इच्छा, और इंसान के साथ इतनी सारी चीजों में हम बंधे रहते हैं. और कई बार पीयर प्रेशर बहुत होता है, अभी दूसरे वाले ने बड़ी गाड़ी ले ली तो मैंने क्यों नहीं ली, दूसरे वाले का घर ज्यादा बड़ा है तो मैंने क्यों नहीं लिया. ऐसी सारी चीजों में, दुविधा में हम अपनी जिंदगी में पिसते रहते हैं और इन सब चीजों में कई बार ये कनेक्शंस हम भूल जाते हैं. और इसीलिए ऐसी चीजों के लिए जरूरी है कि थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा स्लो डाउन करें जिंदगी में एंड रिफ्लेक्ट करें. और इसके लिए एक बड़ी रिट्रीट होने जा रही है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ. इट इज ओशो यूनिवर्सल रिट्रीट. सो दिस मे 14th to 17th, आज है 4th, तो यानी कि 10 दिन बाद ये शुरू हो रही है. सो दिस मे 14th to May 17th, स्टेप इनटू अ 3-day इमर्सिव जर्नी टू रिलीज स्ट्रेस, क्लियर इमोशनल ब्लॉक्स एंड रीकनेक्ट विद योर इनर सेल्फ थ्रू पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स गाइडेड बाय एक्सपीरियंस्ड फैसिलिटेटर्स. तो ये 3 दिन की रिट्रीट है. एंड Why is this needed? अगर आप ये कहेंगे, because sometimes the best thing we can do for ourselves is स्लो डाउन. कैसे कर सकते हैं हम रजिस्टर? रजिस्टर करने के लिए आप जा सकते हैं उनकी वेबसाइट विच इज oshoyuniversal.org. मुझे लगता है कि कई बार थोड़ा सा रुकना चाहिए. आई ट्राई टू डू दैट इन द मॉर्निंग एंड बिफोर आई स्लीप. वैसे ऐसा नहीं है, कई बार मैं खराब आदत है, कई बार मैं मॉर्निंग में उठते के साथ ही थोड़ा सोशल मीडिया देखती हूँ. लेकिन बिलीव मी, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं बदल दूंगी. ये मैं अपने आप से कह रही हूँ. एंड ये भी सही है कि कई बार मैं रात को थोड़ी कुछ वेबसाइट्स ब्राउज करती हूँ, स्पेशली जो जो मुझे बहुत पसंद है, सम शॉपिंग वेबसाइट्स दैट आई एब्सोल्युटली लव. मेरा डी स्ट्रेसिंग वेबसाइट है वो वेबसाइट से. लेकिन ये एक चीज़ है जो मैं कई बार करती हूँ, आई वॉन्ट टू डू एवरी डे. अभी मैंने नहीं करा है इनकॉर्पोरेट, बट आई रियली फील दैट इट इज़ वेरी पावरफुल दैट every morning just for a few minutes and every night before sleeping we do a reflection, we think about few things in a very immersive way. matlab hum log kai bar kya hota hai ki zindagi na upar se jiye ja rahe hain, to aisa mujhe lagta hai ki agar ye hum thode se waqt subah ke time pe thoda, isko aap bol sakte hain deep thinking, but kai log aisa bhi bolte hain ki aap bilkul bed se bhi nahi uthe ya chai wagera bhi nahi pi hai, that is the time then when you should just you are awake but you are not fully awake. उस वक्त आप थोड़ा सा ये सोचें, थोड़ा सा. कुछ लोग ये कहते हैं that you should read, and that is something that also I have not started doing but I want to do, which is like early morning really good reading, and that also holds true with doing that before you go to bed. थोड़ा सा reflect करें, 5 मिनट, बहुत ज्यादा नहीं, but that changes a lot in the day that you live. और अगर रात को करेंगे तो नींद आपको कैसी आएगी, सपने कैसे आएंगे.

Absolutely loving these songs that I've lined up for you. बताना चाहती हूँ जसबीर जस्सी साहब का जो गाना आप सुन रहे थे इससे पहले, which is the ले गई कुड़ी गुजरात की, that brings so many memories because ये original गाना, ये तो जो आपने सुना remix है, लेकिन ये भी जसबीर जस्सी साहब ने ही गाया है, लेकिन ये remix है, लेकिन जो उनका original था, that created such big sensation in 1990s, दिल ले गई कुड़ी गुजरात की. And ये एक बड़ा ये इस कुछ उस तरह की बात है जब he was feeling very depressed and he has talked about it in his interview that ये जो इनकी दिल ले गई इनकी जो एल्बम थी बहुत ही कमर्शियली सक्सेसफुल भी हुई थी और ये गाना तो बहुत वायरल, उस समय वायरल वर्ड नहीं था लेकिन आज का अगर वर्ड उसमें चिपका दिया जाए उस टाइम पे तो वायरल हुआ था. इट वॉज बिग कमर्शियल सक्सेस, सो दैट हेल्प्ड हिम इमोशनली एज वेल एंड आई एम श्योर इट हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल इमोशनली. कुछ और बातें करूंगी आप लोगों से क्योंकि गिव अवेज है मेरे पास. आई हैव सम इंटरेस्टिंग गिव अवेज दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट, लेकिन उसके पहले कुछ बताना चाहती हूँ आपको अबाउट देसी मंडी, विच इज द बिगेस्ट साउथ एशियन ग्रोसरी स्टोर इन टाउन. देसी मंडी हैज अमेजिंग ऑफर्स, क्रेविंग मोर फॉर लेस, दिस वीक हैज यू कवर्ड. क्या होने जा रहा है इस हफ्ते में, यानी कि आज से मंडे से क्या क्या वहां मिलने जा रहा है डील में. बहुत सारी चीजें हैं, मगर अगर डील की बात करें तो मंडे एंड वेंसडे दे हैव बाय वन गेट वन फ्री ऑन बिरयानी, नूडल्स एंड फ्राइड राइस.

ट्यूजडे और थर्सडे को अगर आप वहां जाएंगे तो यू कैन गेट बाय वन गेट वन फ्री ऑन डोसास एंड चार्ट्स एवरी वीकडे 5 to 9 PM. दिस इज वैलिड. अभी घड़ी में हुए हैं 7:50, यानी कि आपके पास है 9 बजे तक का टाइम. देसी मंडी में जाके आज का मंडे वाला ऑफर ले लीजिए. देर इज नो मिक्स एंड मैच. TNC सप्लाई, मोर फ्लेवर मोर सेविंग्स ऑल वीक लॉन्ग. देसी मंडी है कहां पर? ये है लुइसविल टेक्सास में. दोस्तों यारो, मैं हूं पारो. 972-355-5555 है स्टूडियो का नंबर. इफ यू वांट टू शेयर समथिंग और टॉक अबाउट समथिंग, बट यू नो व्हाट, आई हैव अ गिव अवे दैट विल दैट इज गोइंग टू जनरेट सम डिस्कशन. तो आई एम क्यूरियस, आज मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए एक टॉपिक आज से ही रिलेटेड है और गिव अवे से रिलेटेड है. मतलब इन सबसे रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आई हूँ. खिचड़ी नहीं है, खिचड़ी जैसा लग रहा है 3-4 चीजें मिला के, लेकिन ये खिचड़ी नहीं है, ये है बिरयानी. जकास, वी विल टॉक अबाउट इट इन लिटल बिट. पारो इन द हाउस.

0: Vanisha Radio, you are on air.
1: Hi, can you play a song from Dhurandhar 2?
0: Kaun sa gana?
1: Ari Ari.
0: Ari Ari, aapka kya naam hai, Sarji Sarji?
1: Vinay Gupta.
0: Vinay Gupta, Gupta sahab, bilkul zarur aapke liye lagati hu. Thank you so much. चलिए ये गाना सुनते हैं. वी गोना टॉक अबाउट गिव अवे, क्योंकि गिव अवे जैसे मैंने कहा आज के दिन से रिलेटेड है. थोड़ा सा ही वक्त बचा है. विनय गुप्ता साहब, आई थिंक आप ड्राइव कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ आप अपना गाना सुनते हुए एंजॉय करते हुए जाएं. उसके बाद एक छोटे से ब्रेक में चले जाएंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज स्पेशल अबाउट टुडेज डे. बहुत सारी चीजें स्पेशल है, पारो को सुन रहे हैं, इससे ज्यादा स्पेशल और क्या होगा. मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपनी तारीफ करके. किसी को आप बताइएगा मत, मेरे डैलस के लिसनर्स, कि पारो को बहुत अच्छा लगता है अपनी तारीफ करके. लेट्स लिसन टू आरी आरी एंड विद दैट आई विल be heading it to a short commercial break aur uske baad yahi lautenge 104.9 FM mein aur karenge kuch interesting baat, which is tied to today's day and giveaway.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है, this is home. Welcome to देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे, नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह, प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी. Desi Mandi, powered by Desi's, loved by Dallas.
3: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी. सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
4: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी. जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी.
3: के टू ड्राइव मतलब?
4: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है. लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस, सब के टू ड्राइव हैंडल करता है.
3: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
4: 100%
5: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी. विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402. Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
6: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
7: Excuse me? It's called being loyal.
6: It's called being predictable.
7: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
6: And what's so special at Neon Cactus?
7: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabiha halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
6: Not bad.
7: Happy hours Monday to Friday. And amazing food and drink deals every day.
6: Okay, this I didn't expect from you.
7: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
8: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids' wear.
9: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
8: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
10: Chicken banana.
11: चिकन बनाना?
12: ब्रो बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट.
13: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
14: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield loans, and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
15: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
16: इंडिया में घर खरीदना या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना अब हुआ और भी आसान. गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो अब फ्रिस्को में. मिलिए मुंबई, पुणे, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के टॉप डेवलपर्स से. सब एक ही छत के नीचे 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कीजिए और अपने प्लान्स के हिसाब से सही प्रॉपर्टी चुनिए. आइए 9th एंड 10th मई को हयात रेजेंसी फ्रिस्को डलास में सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक. एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री. माई स्क्वायर फीट प्रेजेंट्स सबसे बड़ा इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो.

आधा हो गया है हमारा शो और आधा है बाकी. और मुझे इसलिए आ रही है हंसी बिकॉज इट्स सच एन इंटरेस्टिंग थिंग. मुझे 6 साल हो गए हैं रेडियो पे काम करते हुए और ऐसा बहुत रेयरली होता है. लेकिन व्हाट हैपेंड इज आई स्टार्टेड टॉकिंग और मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट एबल टू हियर माई सेल्फ क्योंकि यू नो इट्स अ वेरी हाई टेक स्टूडियो. आजकल तो वैसे भी डिजिटल एंड ऑल दैट इज वेरी एडवांस्ड. तो हमारा फनीशिया का स्टूडियो मुझे ऐसा लगता है जब मैं एंटर करती हूँ कि मैं मैट्रिक्स वाली फिल्म आप लोगों ने देखी होगी राइट. आज स्टार वॉर्स का दिन है तो मैट्रिक्स फिल्म में जैसी फीलिंग आती है दैट एज इफ यू आर इन लाइक अनदर प्लैनेट दैट्स द फीलिंग आई गेट इज अ वेरी एडवांस्ड. लेकिन तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है मुझे खुद सुनाई नहीं दे रहा कि मैं एंड आई वॉज टॉकिंग टू माई सेल्फ और मुझे लग रहा था मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ. बट दैट समटाइम्स हैपन्स कई बार होता है ऐसा. लेकिन जरूरी यही है कि वी रिमेंबर दैट वी ऑल नीड टू टॉक टू ईच अदर एंड लिसन टू ईच अदर एंड टॉकिंग एंड लिसनिंग की बात करते रहेंगे. पहले मैं थोड़े से गाने चलाती हूँ एंड देन वी विल डू सम टॉकिंग एज वेल क्योंकि आज का दिन बहुत ही स्पेशल है. अगेन वॉन्ट टू से जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है हैप्पी मंडे. आई होप यू आर एंजॉइंग योर मंडे बिकॉज आई एम एंजॉइंग. मैं मंडे को बहुत एंजॉय करती हूँ और मंडे शाम अगर आप लोगों के साथ हो तो और भी क्या बात है. चार चांद लग जाते हैं सोमवार में.

तुमी हो बंधु सखा तुमी, सारे मेरे दोस्त मित्र सखी सखा, ऑल माई फ्रेंड्स बंधु बंधा बंदे बंदियां, ऑल अवर डैलस लिसनर्स, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विच इज मंडे. और मंडे की देखिए बहुत बेचारे को मुझे बड़ा बुरा लगता है मंडे के बारे में, मैं सच्ची बोल रही हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि लोग बड़ी नफरत करते हैं. मतलब इतना प्यारा सा छोटा सा दिन है, मतलब शुरुआत करता है जैसे गांव वगैरह में होता है ना, हम लोग इंडिया पाकिस्तान में यहाँ पे भी यूएस में जो मुर्गी के बांग से या मुर्गे के मुर्गे, अब आपके आपको पता चल सकता है कि मैं कहीं गांव वाँव में बड़ी नहीं हुई हूँ, दिल्ली के हाई राइजेस में बड़ी हुई हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे राइट. जब मुर्गा बांग देता है तो सुबह होती है, मुझे मंडे ऐसा लगता है, मतलब हम सब के लिए एक नया हफ्ता लेकर आता है. जैसे मुर्गा बांग देता है, ऐसे मंडे बांग देता है और हमें बताता है कि भाई जाग जाओ, हफ्ता शुरू हो गया है. लेकिन हम लोग बड़ा बुरा करते हैं इसके साथ, मतलब बड़ा बुली करते हैं. वैसे बता दूं आज एंटी बुली डे है, ये भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ. May 4th इज नॉट ओनली स्टार वॉर्स डे, इट इज ऑल्सो एंटी बुलिंग डे. और इसलिए मैं ये मुहिम चला रही हूँ कि हम मंडे को बुली नहीं करेंगे, मंडे को प्यार करेंगे, मंडे को हम समझेंगे, और मंडे को जो हमें इतना बढ़िया हमारा हफ्ता शुरू करता है उसको हम क्यों पसंद करते हैं ये बताएंगे. सो लेट मी टॉक अबाउट द गिव अवे, एंड दिस गिव अवे इज गोना बी इंटरेस्टिंग. सो आप अभी कॉल मत करिए, क्योंकि जब भी मैं गिव अवे करती हूँ आई स्टार्ट गेटिंग कॉल्स, क्योंकि सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है एंड इट इज नॉट द फर्स्ट पर्सन हु कॉल. आई एम गोइंग टू टेक कॉल्स फॉर द नेक्स्ट अराउंड 10 मिनट्स, और उसमें से मैं एक लकी ड्रॉ करूंगी, राफेल जैसे कहते हैं, एंड द पर्सन हु विंस दैट द लकी ड्रॉ इज गोइंग टू बी द विनर. सो यस, यू कैन कॉल एनी टाइम इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट्स ऑलमोस्ट 8:22 विल स्टॉप दिस गिव अवे. लेकिन क्या है गिव अवे, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चंडीगढ़ बाइट्स का गिव अवे है. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने ये गिव अवे इन द लास्ट 1 month नहीं जीता हो इस शो पर या किसी और फनीशा के शो पर, बिकॉज इफ यू हैव देन दिस डिस्क्वालीफाइज यू. एंड व्हाट इज दिस, दिस इज अ चांस टू विन कड़ाई पनीर और कड़ाई चिकन फ्रॉम योर फेवरेट रेस्टोरेंट चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन, प्लस इंजॉय द स्पेशल थाली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेज रोटेटिंग डेली फॉर लंच ओनली. ये कहां पर है, इनकी लोकेशन बता देती हूं, दैट इज मैकडर्मेट ड्राइव इन एलन. सो यू कैन विजिट chandigarhbites.com, ये इनकी वेबसाइट है, फॉर मोर डिटेल्स. अब क्या है सवाल, सवाल ये है, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी आपको मंडे पसंद है या नहीं पसंद है, आज के दिन से रिलेटेड है सवाल राइट. मैं आपसे ये सब कुछ नहीं पूछूंगी कौन सा दिन पसंद है, मैं आपसे पूछूंगी मैं आपसे पूछूंगी मंडे आपको क्यों पसंद है, व्हाई डू यू लाइक मंडे. मतलब ऑप्शन नहीं है आपके पास मंडे को नफरत, सोमवार को की नफरत करने का या उसको ना पसंद करने का, मैं ऑप्शन ही नहीं दे रही हूं वो. सो आई एम गोइंग टू आस्क यू दैट व्हाई डू यू लाइक मंडे, जस्ट गिव मी वन रीजन, एंड 9723555555 ज्यादा रीजन नहीं चाहिए क्योंकि वक्त कम है, आई वॉन्ट टू टेक अ लॉट ऑफ कॉल्स. सो सिर्फ एक जल्दी से क्विक रीजन बता दीजिए व्हाई यू लाइक मंडेज, एंड विद दैट यू कीप लिसनिंग टू सॉन्ग्स, एंड I have quite a few listeners. शुरू हो गई है मेरी लाइन्स बजनी. I'm going to do a lucky draw in a little bit.

बहुत सारी मेरे पास कॉल्स आई हैं, आई एम गोइंग टू एंड इट नाउ द गिव अवे, क्योंकि इतनी कॉल्स आ गई हैं, इतने सारे, और जो मुझे ऐप पर देख रहे हैं उनको मैं दिखाना चाहती हूँ कि कितनी सारी मेरे पास ये चिट्स हैं, बिकॉज जो भी मुझे अपने नाम बता रहे थे, अपने रीजन बता रहे थे, आई वॉज क्विकली पुटिंग देम इन स्मॉल चिट्स सो दैट वी कैन डू दिस गिव अवे. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर पार्टिसिपेशन. आई थिंक मेरे ख्याल से मुझे तो काउंट भी नहीं है कितनी सारी हैं, इसमें शायद 15 तो होंगी, इतने लोगों ने कॉल किया बैक टू बैक. थैंक यू सो मच. आई नो कुछ लोगों को मुझे बोलना पड़ा कि आप जल्दी से एक रीजन बता दीजिए, इसलिए क्योंकि सारी मेरी लाइंस बज रही थी. आई वांटेड एवरीबॉडी टू गेट एन अपॉर्चुनिटी एंड आई होप मैंने किसी को मिस नहीं किया अगर किसी का कॉल ड्रॉप हो गया. सो आई एम सॉरी अबाउट दैट. सो लेट्स पिक वन पर्सन एंड हु दिस इज. ये शफी साहब हैं, और शफी साहब मुबारक हो आपको, ये हमारा गिव अवे चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से. सो शफी साहब आप सुन रहे हैं तो प्लीज आप अगले 5 मिनट में मुझे कॉल करिए, मुझे आपके डिटेल्स चाहिए होंगे सो दैट आई कैन फॉरवर्ड इट टू चंडीगढ़ बाइट्स. और इतने सारे लोगों ने मुझे कॉल किया दैट आई डोंट वांट टू टेक अदर नेम्स, क्योंकि मुझे लगता है मैं किसी का नाम भूल जाऊंगी, इतने सारे नाम हैं यहां पर और वक्त भी कम है हमारे पास, थोड़े से देर में हम ब्रेक में जाएंगे. लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ, एक थोड़ा सा नटशेल में बताना चाहती हूँ लोगों ने मुझे क्या कहा. लोगों ने कहा कि वीकेंड की थकान दूर करता है मंडे वीकेंड. बहुत सारे लोगों ने ये रीजंस दिए कि वीकेंड्स बिजी होता है और मंडे एक थोड़ा सा एक नया चैप्टर शुरू होता है, एक नया, एक हमारे जनाब ने कहा कि आरंभ होता है मंडे का. आई एक्चुअली लाइक दैट वर्ड, आरंभ, स्टार्टिंग, बिगनिंग, शुरुआत होती है. एक हमारे सर ने कहा कि वो प्लेनों में क्लास में आते हैं इसलिए मैंने मंडे बड़ा पसंद है. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग रीजन हमारे यू नो एक जो लिसनर ने बताया. और जैसे कई सारे लोग ये कह रहे थे कि वीकेंड बड़ा बिजी होता है, तो मैं ये सोच रही थी करते क्या है लोग वीकेंड में इतना बिजी क्यों होता है वीकेंड हमारे डैलस के लोगों का, थोड़ा सा कम करिए ना वीकेंड का ट्रैफिक मंडे. बट सम वन पर्सन सेड, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, कि मंडे उन्हें इसलिए पसंद है क्योंकि वो बहुत सारा काम कर देते हैं, 50% काम मंडे को खत्म कर देते हैं, तो उन्हें मंडे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्रोडक्टिव होता है उनका, और बाकी उनका जो हफ्ता है वो थोड़ा सा स्प्रेड आउट हो जाता है उसमें 50%. मतलब कि आपका ये, आई थिंक आई रियली लाइक दैट, कि जैसे एक कबीर साहब का दोहा है ना, जो आज करे सो अब कर, कल जो समथिंग लाइक दैट, राइट, कल करे सो परसों पल में परले होगी, समथिंग लाइक दैट. अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बचपन का है, बट आई विल लुक इट अप एंड टेल यू गाइस. बट ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो अभी करना है वो इसी के इसी वक्त करो, एंड डोंट लीव इट ऑन, मतलब दोहे का जो रीजन है वो यही है कि आगे पे मत छोड़ो. तो ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी. बहुत सारे कुछ इसी तरह के रीजन लोगों ने दिए. थैंक यू अगैन शफी साहब. 972-355-5555 पर कॉल करिए. मुबारक हो आपको कढ़ाई पनीर और कढ़ाई चिकन फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स.

कई बार मुझे भी ऐसा लगता है, ये जो गाना है इसमें ये शब्द है कि घोड़े पर बलमा घोड़े पर क्यों सवार है, कई बार मुझे भी लगता है कि हम ये क्यों एक घोड़े पर सवार हैं। ये हम कहते हैं ना, ये एक कहावत है हमारे हमारे जगह पर, ये कहा जाता है कि यार तुम घोड़े पे क्यों सवार हो मतलब भाग कहाँ रहे हो, रुक जाओ, थोड़ा सा इंजॉय कर लो, थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट कर लो, थोड़ा सा थम जाओ, और दिस लाइफ इज सो ब्यूटिफुल, कहीं ऐसा ना हो कि फिसल जाए, निकल जाए एंड यू डोंट इवन रियलाइज दैट। एक कहानी है रॉबर्ट कूवर साहब, बहुत फेमस राइटर हैं यूएस के, बहुत अमेरिकन राइटर, फिक्शन राइटर, मुझे बहुत पसंद है उनकी। एक कहानी है गोइंग फॉर अ बियर, एक पेज की कहानी है, शायद आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, बहुत ही फेमस कहानी है। और वो कहानी मुझे इसलिए बहुत अच्छी लगती है और इसलिए वो फेमस है क्योंकि एक पेज की है, एंड इट स्टार्ट्स विद एक बंदा जो है बियर पीने के लिए जाता है, एक आदमी बियर पीने के लिए जाता है, और कैसे उसकी लाइफ एकदम जूम जूम जूम जूम करके भागती है कि एक पेज के अंदर मतलब वो एंड में तो खत्म ही हो जाता है मतलब पूरी जिंदगी उसकी ऐसे फिसल जाती है। एंड इट्स सच अ वंडरफुल द वे द टाइम पासेस इन दैट वन पेज, कैसे वो टाइम उन्होंने उसको बताया है ये कि कैसे जिंदगी, वैसे तो है हमारे पास टाइम होता है, लेकिन जो अगर हम रुकते नहीं और भागते रहते हैं तो कैसी फीलिंग आती है, टाइम ऐसा ऐसा लगता है कि मतलब फिसल गया ये, नहीं, इट्स जस्ट अ साइकोलॉजिकल फीलिंग, एंड वो उस स्टोरी में बड़े अच्छे से दिखाया है। तो कुछ इसी तरीके मुझे भी फीलिंग आती है, बताना चाहती हूँ आप लोगों को, ये एक गिव अवे और मैंने बचा के रखा है, सो वी आर गोना डू दैट इन द लास्ट 30 मिनट्स ऑफ माय शो। जी हाँ, 7 से 9 आप लोगों के साथ मैं कल भी रहूंगी, और 7 से 9 का वक्त है तो मैं आप लोगों के साथ 9 बजे तक हूँ, सो आई एम गोना डू अनदर गिव अवे, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गिव अवे, एक बड़ा इंटरेस्टिंग गिव अवे आप लोगों के लिए इस हफ्ते हम लोग लेकर आए हैं, और बहुत सारे और आरजेस भी कर चुके हैं, एंड लेट्स लिसन टू सम मोर सॉन्ग्स एंड वी विल टॉक अबाउट That. और मैं थोड़ी देर में ये भी बताऊंगी कि मंडे मुझे क्यों पसंद है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मेरा तो फेवरेट दिन है ये।

0: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
1: सब कुछ साफ रख सकते हो
2: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती कोई नहीं सोचता मेरे बारे में
3: क्योंकि ये कौन बोला
2: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट जिसमें है डस्ट पॉलन एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है मेरा तो साफ ही होगा तो आप सही नहीं सोच रहे हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें मुझे भी साफ करना होता है मेरा काम था बताना अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा आपको क्या चाहिए
4: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है कॉल जीतू पटेल 9728772500
5: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती उनके लेवल्स होते हैं लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल स्लो कुक्ड कीमा मटर रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस
0: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ फ्लेवर हम संभाल लेंगे
6: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है
7: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग
8: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 469-362-7755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day, flavor play.
0: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
9: ऐसा लगता है कि डिसीजंस आप ले रहे हो पर रिजल्ट्स कंट्रोल में नहीं करियर रुक सा गया है रिश्तों में क्लैरिटी नहीं और फ्यूचर बस एक सवाल बनकर रह गया है हर जगह आंसर्स ढूंढने से बेहतर है सही जगह समझना कनेक्ट विद अनीता चुंद्रू एट द कॉलोनी टेक्सस चार्ट रीडिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी और हवन सर्विसेज से मिले सही गाइडेंस कॉन्टेक्ट 9453387670 ईमेल astro111city@gmail.com Anita Chundru, your life with right direction.
0: Contact 9453387670. Email astro111city@gmail.com or visit taxi at 5200 Memorial Drive, Colony, Texas.
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: Ab to karna hi padega, madam.
12: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

वेलकम बैक दोस्तों यारो, मैं हूँ पारो। सुन रहे हैं आप मुझे ऑन मे 4th। घड़ी में इस वक्त हुए हैं 8:34, 8:34 PM। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि मंडे की क्या खासियत है और मंडे क्यों पसंद है। मुझे मंडे इसलिए पसंद है, सबसे बड़ा रीजन ये है दैट आई चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव। एक जमाना था जब मुझे मंडे बिल्कुल पसंद नहीं होता था एंड मुझे ऐसा लगता था कि ये यार मंडे क्यों आ गया, संडे जो है ये लंबा क्यों नहीं होता, 24 घंटे क्यों मिलते हैं, संडे को मिलना चाहिए 48 घंटे और लंबा चलना चाहिए, मंडे नहीं आना चाहिए। एंड देन आई चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव एंड देन फिर मुझे लगा अगर मैं मंडे से प्यार करने लगूं, अगर मैं समझने लगूं कि ये मंडे जो है एक स्पेशल दिन है, दिस इज अ डे गिवन टू अस दैट इज द स्टार्ट ऑफ अ ब्रांड न्यू वीक। हमारे टाइम बैंक में एक और हफ्ता जुड़ गया है, देयर इज अनदर वीक फॉर अस टू डू मोर थिंग्स। जो अधूरे ख्वाब पहले छूट गए थे, कुछ प्लान्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अधूरे छूट गए थे, वो पूरे करने के लिए हमें एक और हफ्ता मिला है। मुस्कुराने के लिए, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए एक और ग्लोरियस हफ्ता मिला है। दिस इज द बिगनिंग ऑफ अ वीक इन विच वी कैन डू वॉट वी वॉन्ट or at least try to do what we want to do, and that is one of the many reasons that I like Monday. Sun rahe hain aap mujhe, is waqt thoda sa hi waqt bacha hai hamare show mein aur main kehti hu TGIF. जी हाँ, TGIF नहीं है आज, लेकिन it is even better, it is TGIM.

मैं जब भी इस गाने को सुनती हूँ, मुझे सबसे अच्छी चीज इस गाने में, ऑब्वियसली बड़ा मस्त गाना है, बट सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है रितेश देशमुख की जैकेट. इट्स एक्चुअली ये पुराना गाना है थोड़ा, रिलेटिवली मेरे ख्याल से 8-10 साल तो हो गए होंगे, काफी पुरानी पिक्चर है ये. एंड लेकिन अब ये बहुत ज्यादा फैशन में आ गया है, विच इज द जैकेट. दिस इज एन इंडो वेस्टर्न स्टाइल की जैकेट पहन रहे हैं इसमें रितेश देशमुख साहब. सबके कपड़े इसमें, दिलजीत दोसान और इसमें और मतलब सबके जो कपड़े हैं उससे सबसे ज्यादा चमक रहे हैं, सबसे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं रितेश देशमुख. एंड आई फील दैट व्हेन आई लुक एट दिस सॉन्ग एंड व्हेन आई वॉच दिस सॉन्ग और मैं उनकी जैकेट सोच देखती हूँ, तो मुझे लगता है अपने इनके जो इंटीरियर फैशन डिजाइनर है, वो फैशन डिजाइनर अपने टाइम से काफी आगे के होंगे, क्योंकि उस समय इतना ये फैशन नहीं आया था. स्टार्ट ही हुआ था लेकिन इतना नहीं आया था, लेकिन अब दिस इज सच इन वोग. मतलब इस वक्त इनकी जो जैकेट है, इस तरह की जैकेट इज सो मच इन स्टाइल बोथ फॉर मेन एंड वुमेन. सो इसके साथ लेट्स लिसन टू सम मोर सॉन्ग्स और थोड़ी सी करेंगे इसके बाद पेज 3 की बातें. वैसे तो हम पेज 3 की बातें हमेशा ही करते हैं यहां पर, बिकॉज पेज 3 मीन्स वी टॉक अबाउट सेलिब्रिटीज, वी टॉक अबाउट बॉलीवुड, स्पोर्ट्स, सारी मसालेदार खबरें हमारे पास होती हैं, फनीशा के पास, जो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और फिर आप लोग भी शेयर करते हैं. लेकिन थोड़ी सी स्पेसिफिक एक सवाल पूछूंगी आप लोगों के साथ, बट लेट्स लिसन टू द सॉन्ग फर्स्ट. ये एक हमारे एक जनाब की एक प्रॉब्लम है, बड़ा भूलते हैं ये, जहां पर भी जाते हैं ना गड्डी भूल जाते हैं. 20 साल हो गए लेकिन बदले नहीं, ये गदर मचा रखा है सच्ची.

लेट्स टॉक अबाउट द गिव अवे दैट इज रिलेटेड विद पेज थ्री. अगर नहीं गए हैं पेज थ्री तो क्यों नहीं गए हैं. पेज थ्री एक ऐसी जगह है जहां हर कोई जाता है. पेज थ्री एंड सॉकर लीग. यस, एंड इफ यू लव सॉकर देन हियर समथिंग एक्साइटिंग फॉर यू. मैकिनी Chupacabras FC is kicking off their home opener this May 16th. Yani ki isi mahine pe. And guess what? Page 3 Eatery along with Funisha Radio is giving you a chance to be there live. We are giving away 2 free tickets to lucky listeners. So you and your plus one can enjoy an action-packed game right here in DFW. तो एक सवाल है आप लोगों से. वैसे तो बहुत सारे सवाल होते हैं, मैं हमेशा ही करती रहती हूँ, लेकिन ये सवाल इससे related है, page 3 से. And I'm going to talk about that in a little bit. But I want again to tell you that you have not won this giveaway on this show or any. ये show पे तो मैंने आज ही ये giveaway शुरू किया है. But if you have won it on any other show, then that makes you ineligible in the last 1 month. And so सवाल आपका क्या है वो क्या है मैं बताती हूं. एंड दिस इज ब्रॉट टू यू बाय पेज 3 ईटरी एंड फनिशा दैट इज ब्रिंगिंग द गेम क्लोज टू यू एंड मेकिंग इट मोर एक्सेसिबल टू यू. अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम नहीं गए क्योंकि टिकट नहीं था. ओके, सवाल ये है. एट द 1994 फेमिना मिस इंडिया टू कंटेस्टेंट्स, जी हां, दो कंटेस्टेंट्स जो हैं हु डिडंट विन द टॉप टाइटल, both became global icons. Do contestants hain jo global icons bane 1994 ki baat ho rahi hai. Who were they and what did they win? Main agar aap ye waise bahut aasan sawal hai, mujhe lagta hai meri lines bajne lagi hain, logo ko pata chal jayega. And the first person to give the right answer is going to get 2 tickets to the game. Lekin aapko mujhe dono ke naam batane hain that won globe, that became global icons and won global titles in 1994. Aur agar mujhe lagega bahut sare log sahi jawab nahi de rahe hain ya nahi de pa rahe hain, to I'm going to give some hint. But I think it's such an easy question that I don't think we need to give hints. 9723555555 hai studio ka number. Ek bar fir se bata do, 1994 mein Femina Miss India mein do contestants hain who didn't win the top title but they both became global icons. They won Miss Universe and Miss World. Who are these two?

एब्सोल्युटली क्रेजी कर दिया. ये दोनों ग्रेट एक्ट्रेसेस बाद में साबित हुई, लेकिन उस वक्त आइकन्स, मॉडल्स एंड पीपल, लॉट ऑफ वुमेन इन द लास्ट 30 साल होने वाले हैं इस बात को. एक्चुअली 30 साल हो गए पारो, कहाँ निकल गया ये वक्त. इट्स 32 ईयर्स पुरानी बात है, क्या बात है. 32 ईयर्स पहले 1994 में दो एक्ट्रेसेस जो बाद में एक्ट्रेसेस बनी, बट दीज टू लेडीज वन ग्लोबल टाइटल्स. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द रिस्पॉन्सेज, सबने सही जवाब दिया. मुझे लगता है शायद थोड़ा मुश्किल है, मुझे हिंट देनी पड़ेगी, बट नो दैट वॉज नॉट नीडेड. मुकुल जैन साहब वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गिव द राइट आंसर, सुष्मिता सेन एंड ऐश्वर्या राय. सो मुकुल जैन साहब आपको मुबारक हो. टू टिकट्स फॉर द टू फॉर टू पेज थ्री टू फॉर द सॉकर इवेंट. एंड विद दैट लेट्स लिसन टू ये जो आपने गाना सुना क्रेजी किया, ये तो ऐश्वर्या जी ने किया था क्रेजी दुनिया को, लेकिन उस वक्त सुष्मिता सेन ने भी बहुत क्रेजी किया था.

यही मैं चाहती हूं कि आपका जो रेस्ट ऑफ द इवनिंग है दैट गोज रियली मस्त मस्त एंड कीप एंजॉयिंग योर इवनिंग एंड कीप एंजॉयिंग द मंडे इवनिंग. और इसके साथ बताना चाहती हूं आपको, कल होगी मुलाकात पारो के साथ, यानी कि आई विल मीट यू एट 7 PM टुमारो एंड टुमारो वी विल सेलिब्रेट ट्यूजडे. और जैसे होता ना, हम लोग कैसे कहते हैं ना, पॉलिटिशियंस का जो है रंग बदल जाता है, पार्टी बदल जाती है तो रंग बदल जाता है, ऐसे ही पारो का भी कुछ ऐसा ही है. कल हम ट्यूजडे की बात करेंगे कि हमें ट्यूजडे क्यों इतना पसंद है. And with that, RJ Paro signing off.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओह हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
4: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
5: कहते हैं माँ के हाथ का खाना दुनिया में सबसे स्पेशल होता है, पर इस मदर्स डे लेट्स मेक थिंग्स स्पेशल फॉर हर। एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस वेयर शी एंजॉयज एंड वी सेलिब्रेट हर,
6: द फ्लेवर लाउंज वेयर एवरी डाइनिंग मोमेंट इज एन एक्सपीरियंस।
5: ऑन दिस मदर्स डे फ्लेवर लाउंज ला रहा है एक मीठा सा सरप्राइज, अ कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट फॉर एवरी मदर।
6: द फ्लेवर लाउंज एट प्रेस्टन रोड फ्रिस्को एट मलाबार गोल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर मदर्स हु मेक लाइफ फ्लेवरफुल।
7: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
8: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Panacea Radio.

the magic 24/7 only on 104.9 FM.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
3: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
2: Kya matlab?
3: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
2: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
3: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
2: Ab to karna hi padega, madam.
4: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: Yaar, main thak chuki hoon. Party ke pehle safai, fir party, baad mein safai. Upar se aap to koi madad karte ho nahi. मेरे से नहीं होगा ये।
6: अरे यार बोला ना, लेकिन तुम्हें सुनना ही नहीं। बताया ना, जहाँ पार्टी है वहीं खाना है, जहाँ खाना है वहीं पार्टी है। सिंपल।
5: मतलब
6: देख, जगह बुक करेंगे पूरे 3 घंटे के लिए और वो भी सिर्फ $250 में, और खाना पीना जो ऑर्डर करना है वो अलग से पे करके वहीं ऑर्डर कर लेंगे। अब तेरे को तेरी सफाई की पड़ी है, अब खुल के पार्टीज कर, चाहे क्रिसमस हो, थैंक्सगिविंग हो या फिर तेरे भाई का बर्थडे। नाम याद रख बस, फन पिज्जा एट कॉलोनी।
0: विजिट फन पिज्जा किचन FPK एट कॉलोनी इज नाउ ओपन फॉर डाइन।
7: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna, that's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
8: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान साहब, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खान साहब 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Funasia.
9: Zindagi ke kai rang. Funasia Radio ke sang.
10: Good evening, Dallas. Kya haal hai sabka? Main hoon Snigdha aur aap sun rahe ho Dil Se Dallas, sirf Funasia 104.9 FM par. अगर आप इस वक्त ड्राइव कर रहे हो, लेट नाइट शिफ्ट फिनिश कर रहे हो या स्टडी मोड में हो या बस हेडफोन्स लगा के रिलैक्स कर रहे हो, वेलकम टू टुनाइट्स वाइब। आज की रात अगले 2 घंटे होंगे फुल बॉलीवुड वाइब्स, चिल कॉन्वर्जेशन और वो लेट नाइट फीलिंग जो सिर्फ रेडियो पे फील होता है। कभी कभी रात में ना बस अच्छे गाना और थोड़ी सी पीसी इनफ होती है पूरा दिन का स्ट्रेस हल्का करने के लिए। सो टू मेक योर स्ट्रेस अ लिटिल हल्का हल्का, हियर यू गो।

ऑनेस्टली बॉलीवुड की फील गुड सॉन्ग्स का वाइब ही ना कुछ अलग ही होता है. एकदम इंस्टेंटली मूड लाइट कर देता है, चाहे आपकी दिन स्ट्रेसफुल रहा हो या बस रूटीन वाला बोरिंग डे. गुड म्यूजिक सम हाउ मेक्स एवरीथिंग फील बेटर. और लेट नाइट में सॉन्ग्स और ज़्यादा कनेक्ट करते हैं हमें. रात में फाइनली थोड़ा सा साइलेंस भी मिलता है. दिन भर इतना नॉइज़ जो होता है, कॉल्स, नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस, मैनेजर की डांट, बॉस की डांट, क्या क्या. कभी कभी हम खुद को प्रॉपरली भी सुन नहीं पाते, बट यू नो व्हाट. और फिर एक अच्छा सा गाना लगा लो एंड इट विल जस्ट मेक योर मूड सो लाइटेंड. दैट इज़ ऑल आई एम हियर टू मेक योर नाइट फील लाइटर एंड ब्राइटर एंड इवन विद अ फील गुड म्यूजिक.

So, keeping our Bollywood vibe on, मुझे लगता है बॉलीवुड म्यूजिक की सबसे अच्छी बात ये है कि वो हर मूड के लिए एक परफेक्ट गाना मिल ही जाता है. लाइक फॉर एज एन रोड ट्रिप हो, वर्कआउट हो, लेट नाइट ओवर थिंकिंग हो, किसी के लिए भी सॉन्ग्स ऐसे ही मिल जाते हैं. एंड यू नो, अपार्ट फ्रॉम एवरी थिंग, जेंजी के प्लेलिस्ट तो ऑनेस्टली सच एन अनप्रिडिक्टेबल होती है. एक मिनट अरिजीत चल रहा होता है, नेक्स्ट मिनट के, और फिर अचानक ओल्ड स्कूल किशोर कुमार क्लासिक्स. बट ऑनेस्टली वो ही हिंदी म्यूजिक की टाइमलेस बन जाती है. और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिर्फ सॉन्ग्स नहीं रहते, मेमोरीज भी बन जाती है. किसी ट्रिप की याद, किसी दोस्त की याद, या बस लाइफ का एक रैंडम फेस. तो चलिए डैलिस, अब एनर्जी को थोड़ा और स्ट्रांग बनाते हुए लेट्स गो अहेड फॉर आवर नेक्स्ट म्यूजिक सेट.

0: You're listening to Dil Se Dallas with Snigdha. Let's get back after a short break.
1: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है.
2: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त. जब गाने हो जबरदस्त. ओनली ऑन फन एशिया रेडियो.
3: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
4: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
5: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Phoenicia.
6: Zindagi ke kai rang. Phoenicia Radio ke sang.

आई नो ऑल लव वाइब्स राइट. बॉलीवुड सॉन्ग्स का इम्पैक्ट ही ऑनेस्टली रात में इट्स ऑल लाइक फील गुड टाइप ऑफ. दिन में सेम ट्रैक्स नॉर्मल लगते हैं बट लेट नाइट में लिरिक्स सडनली ज़्यादा मीनिंगफुल होने लगती है और फील होने लगता है. मे बी बिकॉज नाइट्स आर क्वाइटर है ना. नो रश, नो केओस, बस म्यूजिक और थॉट्स. और ऑनेस्टली रेडियो का मैजिक भी वही है जी. नो स्क्रोलिंग, नो डिस्ट्रैक्शंस, जस्ट वाइब्स. आजकल हम सब इतने कॉन्स्टेंटली ऑनलाइन रहते हैं कि साइलेंस भी फील करना बहुत रेयर हो जाती है और इसीलिए लेट नाइट रेडियो का कंफर्ट ही अलग होती है. तो वेयर एवर यू आर टुनाइट, वर्किंग, स्टडिंग, ड्राइविंग या बस रिलैक्स मोड में, होप टुनाइट्स प्लेलिस्ट इज मेकिंग योर नाइट फील अ लिटिल लाइटर.

चल हुई जरा शोर हुआ, बॉलीवुड के सॉन्ग्स कीपिंग माई बॉलीवुड वाइब ऑन, कभी ओल्ड फील नहीं होते। कितनी भी साल निकल जाए वाइब सेम ही रहती है, और सॉन्ग्स के साथ मेमोरीज भी ऑटोमेटिकली अटैच हो जाती है। कोई ट्रैक स्कूल की याद दिलाता है, कोई ट्रैक प्यार की याद दिलाता है, कोई ट्रैक फैमिली ट्रिप, और कोई एक रैंडम लाइट नाइट ड्राइव। इसीलिए प्लेलिस्ट इतनी पर्सनल फील होती हूँ मैं। और ऑनेस्टली म्यूज़िक का काम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, कभी कभी मोटिवेशनल, कभी कभी प्यारा, कभी कभी काम डाउन, और कभी कभी बस कंपनी देने वाला भी होता है म्यूज़िक। आज का वेदर, सिटी लाइट्स और बॉलीवुड म्यूज़िक, ऑनेस्टली दिस शुड मेक अ परफेक्ट लेट नाइट कॉम्बो। तो वॉल्यूम हाई रखिए, पर गाना धीमे से और प्यार से सुनिए।

0: डैड।
1: राहुल कैसा है बेटा? Everything fine?
0: Everything fine, Dad. In fact, बहुत खुश हूँ मैं. After a long time.
1: Hey, are you in love?
2: तू ही मुझको बता दे.
0: How do you know?
1: मेरा बाप साले. When the son is in love, the father just knows.

सो कीपिंग द बॉलीवुड वाइब ऑन एंड ये प्यारा प्यारा गाने सुन के अगर आपके पास भी कुछ अपनी बॉलीवुड स्टाइल की प्यारी प्यारी स्टोरीज हो तो कॉल कीजिए हमें एट फन एशिया 9722355555 पर. आई एम स्निग्धा, यू आर लिसनिंग टू दिल से डैलिस. सो आई एम हियर रेडी आपके अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लव स्टोरीज सुनने के लिए. सो देर ना कीजिए, कॉल कीजिए एंड द क्लॉक इज टिकिंग एट 10:54 फॉर यू गाइज़.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे
4: Get ready for the smoky, flavorful goodness of Tandoori Chicken Pizza. Perfectly marinated tandoori chicken, mildly spiced, tender, and bursting with aroma. Layered over creamy cheese and a golden crust. It's the perfect balance. Not too spicy, not too mild. Just right for every flavor lover. Taste the magic of the tandoor on your favorite sliced tandoori chicken pizza. Only at Fun Pizza Kitchen. Fun Pizza Kitchen, where every slice tells a story.
5: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye, The Jabu Times available hai ek click par, thejabutimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Funasia.
6: Zindagi ke kai rang. Funasia Radio ke sang.
7: 104.9 FM. So Dallas, officially energy is up. Bollywood confidence ke songs aur vibes hamesha different hit karte hai. Instant mood set. कभी कभी बस एक गाना इनफ हो जाता है पूरा मूड बेटर करने के लिए और ऑनेस्टली आज का लाइफ ऑलरेडी काफ़ी फास्ट चल रही होती है नॉन स्टॉप नोटिफिकेशंस डेडलाइंस स्क्रीन टाइम और कॉन्स्टेंट प्रेशर तो म्यूजिक बिकम्स दैट वन स्मॉल एस्केप एक छोटा ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग और लेट नाइट में तो जब भी आप हेडफोन्स लगा के अच्छे गाने सुन रहे हो तो पूरी दुनिया थोड़ा काम फील होने लगती है तो चाहे आप वर्क कर रहे हो स्टडी ड्राइविंग या वट एवर इट्स एनी वेज नाइट द क्लॉक इज क्लिकिंग एट 11:02 सो यू कैन फील अ लिटिल लाइटर कामर एंड बस गानों की वाइब एंजॉय करो
8: अपनी लिमिट में रह और हाँ ये जो रॉन्ग आइडियाज तेरे दिमाग
9: तुझे क्यों लगता है

0: ये ट्रैक था सिर्फ लड़कों के लिए जिनकी फेस अभी मेरी ना गर्ल आई नीड यू की जैसा है। तो जाओ भाई, जाके गर्लफ्रेंड्स बना लो और जो शादीशुदा है बीवी के लिए सरप्राइजेस प्लान करो। यू नो व्हाट यू माइट बी थिंकिंग, अरे यार सिर्फ हम ही करें सब कुछ। यस, इट्स अ बॉयज थिंग टू डू।
1: यहाँ क्या देख रहे हो? हाँ देखो ना,

0: रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।
2: यार मैं थक चुकी हूँ। पार्टी के पहले सफाई, फिर पार्टी, बाद में सफाई। ऊपर से आप तो कोई मदद करते हो नहीं, मेरे से नहीं होगा ये।
3: अरे यार बोला ना, लेकिन तुम्हें सुनना ही नहीं। बताया ना, जहाँ पार्टी है वहीं खाना है, जहाँ खाना है वहीं पार्टी है। सिंपल।
2: मतलब
3: देख, जगह बुक करेंगे पूरे 3 घंटे के लिए, और वो भी सिर्फ $250 में। और खाना पीना जो ऑर्डर करना है वो अलग से पे करके वहीं ऑर्डर कर लेंगे। अब तेरे को तेरी सफाई की पड़ी है, अब खुल के पार्टीज कर, चाहे क्रिसमस हो, थैंक्सगिविंग हो, या फिर तेरे भाई का बर्थडे। नाम याद रख, Fun Pizza at Colony.
4: Visit Fun Pizza Kitchen. FPK at Colony is now open for dine-in.
5: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.
6: It's 11:30 PM, guys. Midnight ka vibe, quiet road, city lights, cool weather or headphones. Perfect combo. Aur Bollywood music ka evolution bhi kaafi interesting raha hai. आज की प्लेलिस्ट में इंडी वाइब्स भी है, लोफी मूड्स भी है और प्यारा प्यारा बॉलीवुड का टच भी है। बट वन थिंग ऑलवेज स्टेज सेम, इमोशंस। गुड म्यूजिक ऑलवेज कनेक्ट्स, और इसीलिए कुछ गाने ट्रेंड ख़त्म होने के बाद भी सालों तक हमारे प्लेलिस्ट में रहते हैं। अगर आप भी इसी वक्त बस रिलैक्स मोड में हो, देन दिस प्लेलिस्ट इज़ एग्जैक्टली फॉर यू। तो चलिए डैलिस कंटिन्यू करते हैं टुनाइट्स लेट नाइट वाइब विद टू मोर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स।

0: सचिन ये क्या कर रहा है तू?
1: क्या हो रहा है भाई? हा?
2: पापा रोमांटिक सीन लिख रहा हूँ
1: यहाँ किस तरह बीच सड़क पर नाच कर
2: फील कर रहा हूँ।
1: अरे फील क्या कर रहा है डफर, सब लोग देख रहे हैं।

वेलकम बैक डैलस, आप सुन रहे हैं दिल से डैलस विद स्निग्धा ऑन फनीशिया 104.9 FM पर। वन थिंग आई जेन्युइनली लव अबाउट रेडियो इज कंपेनियनशिप, स्पेशली रात में। आप सिटी के किसी भी कॉर्नर में हो सकते हो राइट नाउ, हम अभी भी एक ही सॉन्ग एक ही फील कर रहे होते, और ऑनेस्टली दैट्स अ रियली नाइस फीलिंग। म्यूजिक सम हाउ स्ट्रेंजर्स को भी कनेक्ट कर ही देता है। एक ही गाना, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट प्लेसेस, बट सेम इमोशंस फील कर रहे होते, और शायद इसीलिए रेडियो का चार्म भी आज सेम है, सिंपल, काम और रियल। सो थैंक यू डैलस फॉर स्पेंडिंग योर नाइट विथ मी, और अब हमारा नेक्स्ट म्यूजिक सेट भी बिल्कुल रेडी है।

Dallas, I hope your night's going good. और आप 10 बजे से मेरे साथ हो तो thank you so much. अगर आप अभी recently tune in किए हो तो welcome to tonight's vibe. Honestly, late night radio का mood ही different होता है. No rush, no pressure, बस good music and relaxed conversations. और Bollywood songs के साथ night और भी beautiful feel होती है. कभी कभी बस एक calm playlist और थोड़ा peaceful time ही enough होता है. Mentally reset feel करने के लिए तो before we move ahead, deep breath लीजिए, relax कीजिए, enjoy कीजिए tonight's final music stretch. Here you go, guys.

लेकिन आपकी आंखों से नींद कोसों दूर है, पर हम है ना आपके करीब, आपके रेडियो डायल पर सारी रात आपके साथ। फन इज योर रेडियो 104.9 FM।

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजर रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इन टू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा। डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है. तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा. नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर.

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

Thank you for tuning into 104.9 FM Fun Asia Radio. एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है. मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं. छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे. जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट. सो कमाल, धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ.

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

0: de hoy.
1: सॉरी
0: हम ठीक हैं

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

कमीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यूं तो किया बर्बाद तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद हैं।

0: तमाशे थिएटर भर देते हैं, इससे फिल्मों का भी फायदा हो जाता है।
1: तुम इस तमाशे में शामिल?
0: तुम्हारी जिंदगी के तमाशे में शामिल काफी है।

0: कुछ बदल गया है।
1: नहीं तो?
0: आपकी आवाज में नहीं, आपके मन में।

0: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है। और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
1: Astrology readings for guidance only and results may vary.
2: Hi, this is Saleem Merchant from Saleem Suleiman and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे।
4: कहते हैं माँ के हाथ का खाना दुनिया में सबसे स्पेशल होता है, पर इस मदर्स डे लेट्स मेक थिंग्स स्पेशल फॉर हर। एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस वेयर शी एंजॉयज एंड वी सेलिब्रेट हर।
5: द फ्लेवर लाउंज वेयर एवरी डाइनिंग मोमेंट इज एन एक्सपीरियंस।
4: ऑन दिस मदर्स डे फ्लेवर लाउंज ला रहा है एक मीठा सा सरप्राइज, अ कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट फॉर एवरी मदर।
5: द फ्लेवर लाउंज एट प्रेस्टन रोड फ्रिस्को एट मलाबार गोल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर मदर्स हु मेक लाइफ फ्लेवरफुल।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

bringing the community together. Fun Issue Radio, 104.9 FM.

0: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है। और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 6823464611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
1: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिजल्ट्स मे वेरी।

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।
1: मैं तेरी याद मुड़के जाती नहीं, सजना अब तो नींद भी मुझको आती नहीं।
2: दिल को चुक गई।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: तो कर लेना
1: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM
2: Yeah, it's coming up.

0: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
1: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे
4: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती उनके लेवल्स होते हैं लेवल वन मिक्स वेज पकोड़ा लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत लेवल टू मसाला ऑमलेट और दही भल्ला थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट लेवल थ्री अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना Full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema mutton. Rich, bold, no compromises.
5: Isiliye Tandoori Flame lekar aaya hai, new on the flame and new weekend menu. Visit Tandoori Flame in Garland at Shiloh and PGBT. Tandoori Flame, now serving new favorites. Craving ka level badhao, flavor hum sambhal lenge.
6: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

0: Oh, baby.
1: Variety is the spice of our station. Yeah, 104.9 FM.

अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय वन गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी, ब्रिलियंस, सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
1: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय वन गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving. Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
8: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
9: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी, जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
8: K2 ड्राइव मतलब
9: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
8: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
9: 100%
6: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2 ड्राइव.com और कॉल 214-814-0402 Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
10: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
11: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
12: Planning to buy a perfect home or make a smart investment in India? Now it's easier than ever. Gruh Pravesh, India Property Expo in Frisco. Meet top developers from Hyderabad, Bengaluru, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR all under one roof. Explore 200 plus projects and find the right property that fits your plans. 9th and 10th of May, Hyatt Regency Frisco, Dallas, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry and free parking. Biggest India Property Expo by My Square Feet.

0: Spider-Man becomes the first movie to top $100 million in its opening weekend on today's date in the year 2002. And in 2003, Carlos Alcaraz was born in Spain. The Spanish professional tennis player, who at age 19 became the youngest athlete in history to reach the top spot in the Men's Association of Tennis Professionals.
1: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of Funasia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
2: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
3: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
2: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
3: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
4: Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar.
3: Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
5: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
6: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
5: कैसे?
6: पेज 3 ईटरी?
5: No, not another restaurant again.
6: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
5: मतलब great food, great drinks, and great company, यानी कि मैं।
7: Page 3 ईटरी, eat, sip, gossip, repeat.
8: इमिग्रेशन पेपर वर्क से परेशान? अब टेंशन छोड़िए। easypetition.com के साथ USCIS पेटिशन फाइल करना हुआ इजी। आप खुद इंडिपेंडेंटली प्रिपेयर और फाइल कर सकते हैं पेटिशंस लाइक F1 या B1 चेंज ऑफ स्टेटस, F1 OPT, H4 विद EAD, I-485 और I-485J, N400 नेचुरलाइजेशन और 200 से भी ज्यादा पेटिशन टाइप्स और प्राइसिंग सिर्फ $30। तो आज ही जाइए easypetition.com पर, easypetition.com।
9: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
10: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGPT। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
11: Drive a BMW, Mercedes or Audi? Then don't trust it with just anyone. German Motor Works in Richardson, expert European auto care, precision diagnostic and top tier service. All under one roof. From oil changes to brakes, they keep your drive flawless. Call 972-690-6623 today. German Motor Works, engineered for excellence.
12: Did you know Bawarchi Biryani's is the number one Indian restaurant chain in USA? It's true. With over a decade of experience and 50-plus locations across the country, Bawarchi Biryani's makes the best Hyderabadi Dum Biryani's and Andhra Pulao's. They also serve the finest North and South Indian cuisine. So why dine anywhere else?
13: Visit one of their DFW locations, Plano, Frisco, Irving or Richardson.
14: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.

0: It's 9 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG Fintax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
4: Ready to turn up the heat? Introducing our Achari Paneer Pizza, where bold Indian spices meet cheesy perfection. Think tangy pickle flavors, a dash of chili, and soft paneer cubes soaking up every bit of that spicy magic, all on a hot, fresh crust straight from the oven. It's not just a pizza, it's a flavor explosion with every bite. If you dare to try something bold, come grab your Achari Paneer Pizza today, only at Fun Pizza Kitchen, where tradition meets the oven. Fun Pizza Kitchen, flavor that fires you up.
5: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
6: Astrology readings are for guidance only and results may vary.
7: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस ओनली वन नेम पॉप्स अप, एजी फिनटैक्स। दिस टैक्स सीजन फॉर अ स्ट्रेस फ्री टैक्स फाइलिंग, फाइल स्मार्ट, फाइल इजी विद ग्रंथी टैक्स प्रोस एंड एसोसिएट ऑफ एजी फिनटैक्स। साथ ही साथ आपका रिफंड मैक्सिमाइज करना और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान करना, दैट्स आवर कमिटमेंट। तो इस बार डिले क्यों, कॉल 972-618-8555 और विजिट agfintax.com। ग्रंथी टैक्स प्रोस पावर्ड बाय एजी फिनटैक्स। प्लान टुडे, प्रॉफिट टुमारो।
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
10: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
11: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
10: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
11: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
10: ये क्या होता है?
11: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
12: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
13: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
14: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
15: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
0: To this great mariachi music, we're going to start this hour of the program. On this Tuesday, the 5th of May, Cinco de Mayo, synonymous with extravagant fiestas celebrated in Mexico and the United States. Observed annually on today's date, it marks the day the outnumbered Mexican army defeated France at the Battle of Puebla in 1862. And the day is ushered in with ethnic pride as revelers join in this fun, with fairs, carnivals and flamboyant floats. Along with the overflowing tequila, the scrumptious Mexican cuisine and folklore dancing that form part of the celebration. Happy Cinco de Mayo to you.

0: I will have the world news coming up for you at 9:30. We'll have another guest at 9:45. Plenty of music all lined up for you right here on the Fun Asia Network.
1: कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?
2: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं.
3: 3 minutes. That's how long it takes to sign up with Bezit. They challenge your property tax appraisal, build the case, go to the hearing. You just wait for the result. 89% of customers get a reduction. Average savings over $1,100. Collin and Denton County. May 15th is your last day this year. Bezit.co.
4: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
5: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी. सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
6: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी. जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी.
5: के टू ड्राइव मतलब
6: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है. लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लव फील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब के टू ड्राइव हैंडल करता है.
5: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
6: 100%
7: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी. विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402. Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
8: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
9: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids' wear.
3: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
9: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
10: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
11: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में.
10: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया. कैसे मैनेज होगा सब?
11: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं.
3: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है, क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता. जीनो क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट. नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम. कॉल 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
12: इंडिया में घर खरीदना या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना अब हुआ और भी आसान. गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो अब फ्रिस्को में. मिलिए मुंबई, पुणे, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के टॉप डेवलपर्स से. सब एक ही छत के नीचे. दो से ज्यादा प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कीजिए और अपने प्लान्स के हिसाब से सही प्रॉपर्टी चुनिए. आइए 9th एंड 10th मई को हयात रेजेंसी फ्रिस्को डलास में सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक. एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री. माई स्क्वायर फीट प्रेजेंट्स सबसे बड़ा इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो.

Hello, namaskar, and thank you very much for tuning in. This is Gupshup Gali with me too, and I am so glad to be here. I cannot tell you enough about it. Trust me when we say that, we mean it really. जिंदगी में हमारे जो भी चल रहा हो, कभी अच्छा कभी बुरा, सब कुछ मिला जुला होता है. कभी tired, कभी very energetic. All of that, you know, takes a एक एक एक अलग ही एक शक्ल लेती है यहाँ जब हम आके बैठते हैं ना, हम जब माइक के पीछे होते हैं ना. इट इज़ ऑलवेज ए हैप्पी मोड दैट वी स्टार्ट विथ, एंड हैप्पीनेस इज़ वॉट वी सीक, राइट? तो होपफुली ये जो हम वाइब आपके लिए क्रिएट करते हैं, होपफुली आप तक पहुँचता है. That's what I want to say right here on Gupshup Gali with me too here all the way till 12:30.

You are listening to Furniture Radio 104.9 FM. मैंने कहा है ना, हमेशा कुछ मिले जुले गाने लाती हूँ, कुछ जो बहुत पॉपुलर होते हैं, जो आप बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, जो बार बार सुनना चाहते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे गाने भी जो अक्सर हमारे स्टेशन पे नहीं प्ले होते हैं. तो यस, दिस इज वन ऑफ देम. रीतो रिबा इज द नेम ऑफ दिस सिंगर हियर. यू आर लिसनिंग टू फर्नीचर रेडियो 104.9 FM. अगले सेगमेंट में वेदर अपडेट लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ आइसोलेटेड इवनिंग स्टॉर्म्स जो हैं उसके लिए आपका अलर्ट रहना जरूरी है. इट इज गपशप गली विथ मी टू राइट हियर ऑन फर्नीचर रेडियो 104.9 FM.

थैंक यू वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज गपशप गली विद मी टू. हमारी गपशप चलती रहेगी और आपको पता है ना 11:30 टू 12 के बीच एक ऐसा रिलेटेबल सवाल लेकर आती हूँ आप लोगों के साथ जिसमें आप सब कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. एंड प्लीज मतलब आए और अपने दिल की बात करें सीरियसली विथ नो पर्दा एट ऑल. दैट्स वॉट वी वॉन्ट यू ऑल टू डू क्योंकि ये है गपशप गली और गपशप तो वैसी ही होनी चाहिए अनफिल्टर्ड, है ना. तो इसीलिए चाहती हूँ कि आप सब आओ और मेरे साथ जुड़ो उस सेगमेंट में. और इसके अलावा भी देर इज प्लेंटी दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट शेयरिंग विथ यू. आई विल गिव यू प्लेंटी रीजन टू स्टे ट्यून्ड टू फनेश योर रेडियो 104.9 FM.

0: अगर आप कुछ फाइनेंशियल गाइडेंस सीख कर रहे हो ना, तो अपना बना लें आप माई टाइम इक्विटी को, और mytimeequity.com पे सारी जानकारी आपके लिए हाजिर है. वी वॉन्ट यू ऑल टू विजिट दैट वेबसाइट बिकॉज दे कैन बिकम योर ट्रस्टेड पार्टनर इन वेल्थ मैनेजमेंट. दैट्स राइट, मिस्टर CPA सुधीर पाए और साथ में उनकी टीम पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे. दे इंटीग्रेट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एस्टेट एंड टैक्स स्ट्रैटेजीज एंड ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज इन टू वन कोहेसिव प्लान. तो ये आपको बेसिकली क्या देगा, इट विल गिव यू दैट क्लैरिटी, दैट कंट्रोल एंड दैट कॉन्फिडेंस इन एवरी डे फाइनेंशियल डिसीजंस. एंड हर दिन का जो एक ये जो एक थॉट प्रोसेस होता है ना कि कुछ करना है लेकिन सही रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ये वो रास्ता है आपके लिए. जरूर याद रखिएगा, mytimeequity.com इज द वेबसाइट एंड CPA सुधीर पाए एंड हिज टीम कैन डेफिनेटली हेल्प यू. The number to call is 4697021272. और मैं हर बार कहती हूँ कि भाई अगर ये वेबसाइट, ये फ़ोन नंबर्स आपके दिमाग में ना रहा तो बस एक हमारे स्टूडियो का नंबर याद रखें. यहाँ पे कॉल करके हमारे जो भी आरजे हैं, दे विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू आर सीकिंग. सो वंस अगेन द नंबर इन द स्टूडियो, इट इज़ 9722355555. और ये नंबर तो वैसे भी आप हैंडी रखो आपकी डेडिकेशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, और हमारे जो सवाल होते हैं आपसे, हमारे साथ इंटरैक्ट करने के लिए ऑन एयर भी इसी नंबर की तो जरूरत होगी.
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Drive a BMW, Mercedes or Audi? Then don't trust it with just anyone. German Motor Works in Richardson, expert European auto care. Precision diagnostic and top-tier service. All under one roof. From oil changes to brakes, they keep your drive flawless. Call 972-690-6623 today. German Motor Works. Engineered for excellence.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
3: कहते हैं माँ के हाथ का खाना दुनिया में सबसे स्पेशल होता है, पर इस मदर्स डे लेट्स मेक थिंग्स स्पेशल फॉर हर. एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस वेयर शी एंजॉयज एंड वी सेलिब्रेट हर.
8: द फ्लेवर लाउंज, वेयर एवरी डाइनिंग मोमेंट इज एन एक्सपीरियंस.
3: ऑन दिस मदर्स डे फ्लेवर लाउंज ला रहा है एक मीठा सा सरप्राइज, अ कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट फॉर एवरी मदर.
8: द फ्लेवर लाउंज एट प्रेस्टन रोड फ्रिस्को एट मलाबार गोल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर मदर्स हु मेक लाइफ फ्लेवरफुल.
9: ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां,
10: जुल्फें सिर्फ हवा में नहीं स्टाइल में भी उड़नी चाहिए. बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो, सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर, अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट. बिकॉज ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक, इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस. मेंशन फनेजिया एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर हेयर स्टाइल सर्विस. Call Amreen at 214-909-6601.
11: Or visit their Instagram, Amreen Salon, located at Allen and Frisco.
10: Amreen Salon, style that moves with you.
12: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.
13: Dallas ki dhadkan, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

Very specially for the weather that we are seeing today, since the morning hours, कुछ जो overcast देख रहे हैं उसी के चलते कुछ ये गाना 90s का लगाया. एक और गाना जो उसी दौर का मैं लेकर आने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले weather update that I want to bring for all of you right here on Funisha Radio 104.9 FM. अब क्या है ना कि दिन की शुरुआत तो अच्छी लग रही है आपको कि cloudy skies, warm temperatures, breezy भी है, 60s और 70s का ये जो माहौल लग रहा है, ये आपका इवनिंग आवर्स आते आते इट कैन टर्न इनटू सीवियर वेदर बिटवीन 6 to 10 PM टुनाइट. सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर स्टेपिंग आउट, बिकॉज आप जानते हो डैलस का वेदर, इट कैन गेट रियली बैड व्हेन दे से इट इज बैड. बट अकॉर्डिंग टू नेशनल वेदर सर्विस देर इज even the potential of a null event, which means we may not see any storms forming. So, ye aane wale hours mein we will get the clarity of it. But you should remember that this is not a guarantee. Null event hone ki koi guarantee nahi hai. Right now, there is a big possibility of severe storms that might develop later in the evening between 6 to 10 PM. As I told you, large hail bhi ho sakta hai, damaging winds bhi ho sakta hai, and tornado threat मेरे ख्याल से नहीं है आज, लेकिन you know, as I said, it is all 50-50 at this point of time. So keep an eye on the sky and more on the website that gives you the local weather. And keep listening to Funisha Radio 104.9 FM, क्योंकि यहाँ पर भी हम हर severe weather threat को आपके साथ update करते रहते हैं. This is Gapshap Gali with me too.

कुछ चीजें ना हम बिल्कुल नहीं भूलते हैं, एंड इट इज स्पेशली व्हेन ए फ्री समथिंग दैट यू आर गेटिंग राइट. और होपफुली देसी मंडी का भी ये स्पेशल स्पेशल डील जो चल रहा है पूरे हफ्ते आप नहीं भूलते हो. द बिगेस्ट साउथ एशियन ग्रोसरी स्टोर इन टाउन, देसी मंडी की बात हो रही है यहाँ पर, जहाँ पर मंडे से लेकर वेंसडे तक आपको मिलता है बाय वन गेट वन फ्री ऑन बिरयानी लेडीज एंड जेंटलमैन. और सिर्फ बिरयानी नहीं, नूडल्स भी, फ्राइड राइस भी, ये आपको बाय वन गेट वन फ्री मिलता है मंडे से लेकर वेंसडे तक. फिर ट्यूसडे और थर्सडे क्यों खाली जाए, तो बाय वन गेट वन फ्री ऑन डोसाज एंड चाट्स दैट यू हैव. सो देयर इज वैरायटी ऑफ बाय वन गेट वन फ्री डील फ्रॉम मंडे टू यू नो थर्सडे, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग राइट. सो जरूर जाइएगा एवरी वीकडे दैट यू गेट फ्रॉम 5 PM टू 9 PM. दैट्स ए विंडो दैट यू गोइंग टू गेट दिस बाय वन गेट वन फ्री डील. एंड यहाँ पर कोई मिक्स एंड मैच नहीं हो सकता है, ये मैं आपको बता देती हूँ. देसी मंडी में ये आपके लिए अवेलेबल है. एंड ऑफ कोर्स ये लुइसविल में है, ये आप अच्छी तरह से जानते हो ना. यू आर लिसनिंग टू फनेशिया रेडियो 104.9 FM, रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो। ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG Fintax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Grandhi Tax Pros, an associate of AG Fintax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna, that's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Grandhi Tax Pros, powered by AG Fintax. Plan today, profit tomorrow.
2: Kabhi aisa lagta hai ki decisions aap ले रहे हो पर रिजल्ट्स कंट्रोल में नहीं, करियर रुक सा गया है, रिश्तों में क्लैरिटी नहीं और फ्यूचर बस एक सवाल बनकर रह गया है। हर जगह आंसर्स ढूंढने से बेहतर है सही जगह समझना। कनेक्ट विद अनीता चुंद्रू एट द कॉलोनी टेक्सिस। चार्ट रीडिंग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हवन सर्विसेज से मिले सही गाइडेंस। कॉन्टेक्ट 9453387670। ईमेल astro111city@gmail.com. Anita Chundru, your life with right direction.
3: Contact 945-338-7670. Email astro111city@gmail.com or visit taxi at 5200 Memorial Drive, Colony, Texas.
4: यार मैं थक चुकी हूँ। पार्टी के पहले सफाई, फिर पार्टी, बाद में सफाई। ऊपर से आप तो कोई मदद करते हो नहीं, मेरे से नहीं होगा ये।
5: अरे यार बोला ना, लेकिन तुम्हें सुनना ही नहीं। बताया ना, जहाँ पार्टी है वहीं खाना है, जहाँ खाना है वहीं पार्टी है। सिंपल।
4: मतलब
5: देख, जगह बुक करेंगे पूरे 3 घंटे के लिए और वो भी सिर्फ $250 में, और खाना पीना जो ऑर्डर करना है वो अलग से पे करके वहीं ऑर्डर कर लेंगे। अब तेरे को तेरी सफाई की पड़ी है, अब खुल के पार्टीज कर, चाहे क्रिसमस हो, थैंक्सगिविंग हो या फिर तेरे भाई का बर्थडे। नाम याद रख बस, फन पिज्जा एट कॉलोनी।
3: विजिट फन पिज्जा किचन, FPK एट कॉलोनी इज नाउ ओपन फॉर डाइन इन।
6: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
7: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
8: ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಡ್ಯಾಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ NCR ಇಂದ ಟಾಪ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಫ್ ಕೆಳಗೆ. 200+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಕ 9th May and 10th May. ಸ್ಥಳ ಹಯಾತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ ಫ್ರಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾಲಸ್. ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಾತ್ರಿ 8 ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್. ಮೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
9: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो।

That's definitely a sad song. Gajendra Verma, who is known to have given us that breakup ka ek kya bolna chahiye celebration, jisme unhone kaha tha ki isme tera ghata mera kuch nahi jata. Ye wahi Gajendra Verma hai, aur inka perennially mujhe lag raha hai bichare ka jo hai heart टूटा ही हुआ है, हार्ट ब्रेक चल ही रहा है उनका मेरे ख्याल से. बिकॉज आई थिंक रियल लाइफ का भी बहुत कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस के काम में छलकता है. एम आई रॉन्ग इन सेइंग दैट? आई एम जस्ट वंडरिंग, यू नो, कि जो इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस हैं, जो अपना अपना गाना खुद लिखते हैं, जो अपने गाने खुद कंपोज करते हैं, गाते हैं, ये इनकी एक लाइफ का टुकड़ा ही तो होता होगा, नहीं? ऐसा मुझे लगता है. बट देन दे आर आर्टिस्ट, दे कैन प्रॉबेबली एब्जॉर्ब एनीबडी एल्सेस मूड एज वेल टू प्रेजेंट इट ऑल्सो. सो यस, वो गाने पे चलते हैं जो श्री राज ने रिक्वेस्ट किया है, एंड दैट इज इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता.

0: एंड दैट इज श्री राजेश रिक्वेस्ट लेडीज एंड जेंटलमैन गजेंद्र वर्मा, मुझे जिनका लगता है कि हर
1: गाना गजेंद्र वर्मा, लिसन टू माय सॉन्ग तेरा घाटा एक्सक्लूसिव।
0: हाँ जी, तेरा घाटा, वही गाना जो आपने सुना गजेंद्र वर्मा का। और मुझे ऐसा क्यों लगता था कि भाई गजेंद्र वर्मा वो हैं जो हमेशा हार्ट ब्रेक और दुखी आत्मा रहते हैं, लेकिन पता चला हमें सुरेश से कि नहीं, ऐसा है नहीं। उन्होंने कुछ हैप्पी सॉन्ग्स भी बनाए हैं, और एक हैप्पी सॉन्ग जो सुरेश की तरफ से आया है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू प्ले। कभी कभी आपको लगता है कि कुछ कुछ आपके दोस्त या फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जो हमेशा दुखी रहते हैं या दुख की तरफ ही ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, यानी कि हमेशा यू नो, अगर ग्लास में पानी जो आधा खाली है उस पर ही उनकी नज़र रहती है। द सैडिस्टिक काइंड्स, द पीपल हु आर ऑलवेज नेगेटिव, यू नो, ऐसा रहता है कि आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो आपको दिखे हैं जो हमेशा दुखी रहते हैं? वेल, ये मैं मानती हूँ कि खुशी कंटेजियस होती है, और वैसे दुखी लोग भी अपना जो वाइब है ना वो एक स्प्रेड करते हैं। सो इन दोनों लोगों का एक अलग ही इफेक्ट होता है, और वो इफेक्ट आप क्या चुनना चाहते हो उनसे, ये आप ही की मर्जी होती है। जस्ट एक मैंने सोचा मुफ्त का ज्ञान भी यहाँ पे दे दिया जाए आप लोगों के लिए। लेकिन ओवर टू सुरेश's रिक्वेस्ट, गजेंद्र वर्मा का एक और रूप देखते ही चलते हैं यार। दिस इज गपशप गली विथ मी टू।

Suresh's request right here on Phanisha Radio 104.9 FM. जी हाँ, आपकी request play कर रहे हैं हम और कुछ गजेंद्र वर्मा के एक के बाद एक के बाद एक के बाद गाने ऐसे play हुए. I hope you enjoy that. एक और गाना यहाँ पर और बहुत सारे गाने हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आएंगे and कुछ हटके play करने की कोशिश में let me get you this 8 AM Metro का गाना that you will enjoy. I just know it. क्योंकि क्या है ना, इतने सालों से आप लोगों के साथ शो करती हूँ, आपका टेस्ट भी थोड़ा सा समझती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इन्जॉय करोगे. ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ कि यू नो लाइफ में ना, जो हम बात कर रहे थे ना, नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव पीपल हैविंग देम अराउंड, नाउ दैट्स अ ब्लेंड दैट यू लर्न अ लॉट फ्रॉम. अच्छे लोगों से या खुश मिजाज, लेट्स से अच्छे लोग तो सभी हैं मान लेते हैं, लेकिन खुश मिजाज लोगों से आप सीखते हो कि कैसे खुश रहा जा सकता है, और जो नेगेटिव रहते हैं उनसे आप ये सीखते हो कि कैसे नेगेटिव नहीं रहना चाहिए लाइफ में. इन ईदर केस यू आर लर्निंग समथिंग. फिलहाल जो आप जो यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए ये कहना चाहती हूँ कि फिकर नॉट, लाइफ इज ब्यूटिफुल. या गपशप गली विथ मी टू, ओनली गुड वाइब्स या.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे.
4: Have you suffered serious injuries in an accident? Perhaps you need help with immigration, detention, or criminal defense issues. Maybe you're just having a hard time dealing with divorce, custody, or child support battle. Everybody has problems, but the Mathur Legal Team has the solution.
5: Mathur Law Offices, a professional law firm whose attorneys are dedicated to solving cases with multiple legal issues with unmatched success. Call today for consultation. 214-378-8880. 214-378-8880. That's 378-8880.
6: Mathur Law Offices, the might for the fight.
7: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
8: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
9: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है. पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है. और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी. पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं. प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है. साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं. आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshigram.com. अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई.
10: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी.
11: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
12: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
11: कैसे?
12: पेज 3 ईटरी?
11: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
12: ड्यूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
11: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
13: पेज 3 ईटरी, ईट सिप गॉसिप रिपीट.
14: मेरा रिटायरमेंट प्लान रेडी है.
15: प्लान या होप?
14: मतलब?
15: मतलब है प्लान मतलब स्ट्रेटजी, होप मतलब देखते हैं क्या होता है.
14: ओके, तो मेरा वाला होप है.
15: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक्स से बात करते हैं.
14: क्यों?
15: बिकॉज रिटायरमेंट को होप पे नहीं, स्ट्रेटजी पे प्लान करना पड़ता है.
16: वेल्थ टैक्टिक, Retirement Planning with Clarity and Strategy. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
17: Bawarchi Biryani is in Plano, bigger, better and the best now serving everyday lunch specials, thalis, biryani combos and refreshing Irani chai with delicious Indian snacks, freshly made sweets and bakery items. Please walk into Bawarchi Plano or visit bawarchiplano.com.
18: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
19: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
18: Kya matlab?
19: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
18: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
19: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
18: Ab to karna hi padega, madam.
2: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.
3: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेशिया रेडियो.

और थोड़ा नहीं, बहुत सारा लव आप अपने ज्वेलरी को देते हो. अगर किसी स्पेशल ओकेजन के लिए उसे खरीदते हो तो भले आप स्पेशल ओकेजन के लिए खरीदें या स्पेशल समवन के लिए खरीदें, श्री कृष्णा ज्वेलर्स आपके लिए वो सारी आपके मनपसंद डिज़ाइंस, जो ट्रेडिशनल भी हो या मॉडर्न अगर आपको चाहिए, एवरीथिंग कॉन्टेम्प्रेरी से लेकर ट्रेडिशनल तक ही, दे गेट इट फॉर यू. एवरी पीस टेल्स अ स्टोरी, फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड टू डार्जलिंग डायमंड्स टू एक्सक्विजिट कुंदन एंड पोलकी. लेडीज एंड जेंटलमैन, दे हैव बीन क्राफ्टिंग क्रिएशंस सिंस 1967 एंड दे आर लोकेटेड इन फ्रिस्को. आप सभी जानते हो इट इज श्री कृष्णा ज्वेलर्स. लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन. दिस इज गपशप गली विथ मी टू. इस गपशप गली में फिलहाल मैं आपको कहां ले जाने वाली हूं, आपको ले जाने वाली हूं एक ग्लोबल रिसर्च जो हुआ, एंड इट इज टू डू विथ फाइनेंसेस लेडीज एंड जेंटलमैन, यानी कि हमारी सैलरी. तो सैलरी के बारे में कुछ बात की जाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ग्लोबली रिकग्नाइज्ड फाइनेंशियल अथॉरिटी फॉर्च्यून इंडिया, जिन्होंने टॉप कंसल्टिंग फर्म्स के लेटेस्ट मार्केट रिसर्च को एनालाइज करके अपनी 2026 की ऑफिशियल रिपोर्ट जो है वो रिलीज की है, एंड द टॉप 10 कंट्रीज सीइंग द हाईएस्ट सैलरी इंक्रीमेंट दिस ईयर, उसका लिस्ट मैं बताने वाली हूँ आपको. अगर हम ग्लोबली वेरीफाई करें तो ये स्ट्रिक्टली इमर्जिंग मार्केट्स का साल है, एंड इस स्ट्रिक्टली इमर्जिंग मार्केट के साल में बहुत सारे साउथ एशियन कंट्रीज जो शामिल है इस टॉप 10 की लिस्ट में. नंबर 10 पे है थाईलैंड, नंबर 9 पे है मलेशिया लेडीज एंड जेंटलमैन, नंबर 8 पे ब्राज़ील, नंबर 7 पे फिलीपींस, नंबर 6 पे इट्स मेक्सिको, नंबर 5 पे चाइना, नंबर 4 पे इंडोनेशिया लेडीज एंड जेंटलमैन, और नंबर 3 पे है साउथ अफ्रीका, नंबर 2 पे वियतनाम लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड गेस हु इज ऑफिशियली लीडिंग द वर्ल्ड एट नंबर 1. इट इज ड्रम रोल्स प्लीज, एंड आई थिंक विथ सो मच ऑफ हाइप दैट आई हैव क्रिएटेड, इट्स नो ब्रेनर फॉर यू. इट इज इंडिया लेडीज एंड जेंटलमैन. जी हाँ, फॉर्च्यून की वेरीफाइड रिपोर्ट प्रोजेक्ट करती है कि इंडिया इज सीइंग द हाइएस्ट सैलरी हाइक्स ग्लोबली in 2026, averaging around a massive 8.7 to I think 9.1% average raise that they will be seeing there in many of the jobs. अब एक रिलायबल सोर्स हमेशा क्यों का जवाब भी देता है. द स्ट्रिक्ट रीजन बिहाइंड दिस, इफ यू वॉन्ट टू नो, हियर वी गो. फॉर्च्यून इंडिया और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स पॉइंट आउट करते हैं कि इन इकोनॉमीज में एक वॉर फॉर टैलेंट चल रही है. ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर्स, टेक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स इतनी तेजी से एक्सपैंड हो रहे हैं कि टॉप टीयर टैलेंट को रिटेन करने के लिए कंपनीज हैविली इन्वेस्ट कर रहे हैं. साथ ही स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कोर्स दैट इज ऑल्सो देयर, और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट्स भी इस मैसिव हाइक का एक वेरीफाइड रीजन है. तो अगर आप अपना नेक्स्ट करियर मूव प्लान कर रहे हो तो मे बी इट कैन बी बैक इन इंडिया और एनी अदर प्लेस ऑन द टेबल ऑफ टॉप 10 दैट आई जस्ट टॉक्ड अबाउट. यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विथ मी टू.

0: Every time they get that the PR from all of us, a lot of recognition that they get, and that's India Property Expo. Itna well-planned event hota hai ye, brought to you by grahapravesh.com. Aur ye phir ek bar lekar aa rahe hain aap logon ke liye isi saal, isi mahine May 9th and May 10th ko this grand event happening at Hyatt Regency Frisco in Dallas, jahan par aap mil sakte hain top builders from cities like Hyderabad, Bangalore, Mumbai, Chennai, Pune and Delhi NCR. 200 से भी ज़्यादा प्रीमियम प्रोजेक्ट्स ही शोकेस करते हैं, तो चाहे आपके लग्जरी अपार्टमेंट्स की बात हो, विलास की बात हो, प्लॉट्स या फार्मलैंड की बात हो, आप ज़रूर इनके साथ इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हो बैक इन इंडिया. इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट एंड यू डू नॉट हैव प्रॉपर चैनल्स, दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी लेडीज एंड जेंटलमैन, जहाँ पे एकदम ट्रांसपेरेंट होगा इंटरेक्शन एंड यू नो दैट ट्रांजैक्शन इफ़ यू आर प्लानिंग ऑन इन्वेस्टिंग बैक इन इंडिया और बाइंग ए रेडी टू मूव होम. ये आपके लिए वो सारी सहूलियत लेके आएंगे जो कि आपको एक बड़ा एक कंफर्टेबल एक यू नो इन्वेस्टमेंट के तौर पे या रेडी टू मूव होम अगर आपको चाहिए उसके लिए भी आपका बिल्कुल एक्सपीरियंस सिंपल रखेंगे. एंड दैट्स इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो दैट यू मस्ट रिमेंबर लेडीज एंड जेंटलमैन. रजिस्टर नाउ एट grahapravesh.com. दैट्स वेयर यू कैन गो एंड यस मेक श्योर दैट योर नेम इज इन द लिस्ट ऑफ देयर विजिटर्स ऑन द डे एंड दैट्स मे 9th एंड मे 10th. लेडीज एंड जेंटलमैन grahapravesh.com पे जाके रजिस्टर करना बिल्कुल भी ना भूलें. यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विथ मी टू. आप लोगों के लिए ना एक क्विक सवाल, मैं म्यूजिक लगाने वाली हूँ और आपको गेस करना है गाना. एंड दिस गाना विल ब्रिंग यू ए नाइस गिव अवे एंड इट इज़ फ्रॉम फन पिज्ज़ा किचन. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, देसी पिज्ज़ा जिनके ना हमने बहुत खाए हैं इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स एक्चुअली, एंड इट वॉज सो अमेजिंग. आई हैव टू टेल यू दैट वो अचारी चिकन पिज्ज़ा मैंने खाया था, आई रियली लव्ड इट एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय इट. इफ़ यू हैवन ट्राइड इट एवर, ट्राई द देसी ट्विस्ट पिज्ज़ा दैट यू गेट देयर. सो येस, इट्स फन पिज्ज़ा किचन, जहाँ से आपको $10 का गिफ्ट कार्ड मिलेगा. और आप याद रखिएगा, दिस इज़ फॉर द फ्रिस्को लोकेशन वेयर यू कैन कलेक्ट द गिफ्ट कार्ड. ऑल राइट, सो जो जीतेंगे उनको मिलेगा. पहला सही जवाब जिनसे मुझे मिलेगा, जो मुझे थोड़ा सा गा के भी बताएंगे. हाँ, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू सिंग अ बिट. ओके, सो हियर इज द म्यूजिक फॉर ऑल ऑफ यू एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट सॉन्ग इट इज राइट नाउ. 9722355555 नंबर इन द स्टूडियो. बस इतना ही दे सकती हूँ मेरे ख्याल से. मैं फिर से दू? All right, that is what you have to guess. I am going to play it again for you. All right, let's see who is on air with us.
1: Is this the song, Jab Koi Baat Bigad Jaye?
0: No, it is not actually. But now that you mentioned, mujhe lag raha hai ki is gaane mein wo feel hai, wo baat hai, wo music thoda sa jo initially hum sun rahe hain, it does feel like Jab Koi Baat. But no, it is not Jab Koi Baat.
1: Aapne bahut hi बहुत ही कम प्ले किया है
0: ना. आई नो, मैंने ना ये गाना चुन लिया है. अब चुन लिया है तो मैंने सोचा लेट्स गो विथ इट एंड लेट्स फिगर आउट इफ एनीबडी कैन. आई एम गोना प्ले इट अगेन फॉर. थैंक यू सो मच. यू नो व्हाट, आई एम गोना सी इफ आई कैन गिव यू ए नाइस क्लू विथ इट. जब रास्ता मुश्किल हो जाए ना तो हम ऐसी कुछ कुछ सुविधाएं प्रोवाइड कर देते हैं. तो लेट्स सी इफ आई कैन गिव यू ए नाइस यू नो सॉर्ट ऑफ अ क्लू टू ऑल ऑफ यू. लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड अ गुड क्लू फॉर ऑल ऑफ यू. तो 16 इयर्स बैक दिस फिल्म रिलीज्ड एंड दिस फिल्म हैड दिस एक्टर हु वाज अ टीचर. आई थिंक ही वाज अ म्यूजिक टीचर इन दिस वन. ऑलराइट, और ये फिल्म और क्या बता सकती हूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा. फिर से लगाने वाली हूँ, जस्ट गेस, ट्राई एंड गेस. ओके, ऑलराइट, लेट्स सी हु इज विद अस राइट नाउ. यू आर लाइव ऑन एयर, बताइए. हेलो,
2: हेलो,
0: हाँ जी, यू आर लाइव ऑन एयर, व्हाट्स योर नेम?
2: आई एम सॉरी, माय ऑफ द एयर करना चाह रही थी.
0: अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जरूर लूंगी आपका कॉल ऑफ एयर. यू आर लाइव ऑन एयर.
3: यप, द सॉन्ग इज ए खुदा मुझको बता तू रोता कहां है.
0: एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर, व्हाट्स योर नेम?
3: JK.
0: JK, you've just won for yourself $10 gift card from Fun Pizza Kitchen. Congratulations. Now, this is a movie that stars, ladies and gentlemen, Shahid Kapoor, Paathshala. Remember that one? Yeah.

0: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
1: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फनी शो पे।
2: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
4: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा।
5: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
6: घर की याद नहीं आई तुझे जैसे?
7: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
4: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
7: सच में बिल्कुल घर जैसा।
4: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुलचास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
8: Ready to turn up the heat? Introducing our Achari Paneer Pizza, where bold Indian spices meet cheesy perfection. Think tangy pickle flavors, a dash of chili, and soft paneer cubes soaking up every bit of that spicy magic, all on a hot, fresh crust straight from the oven. It's not just a pizza, it's a flavor explosion with every bite. If you dare to try something bold, come grab your Achari Paneer Pizza today, only at Fun Pizza Kitchen, where tradition meets the oven. Fun Pizza Kitchen, flavor that fires you up.
9: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
4: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
7: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
4: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
10: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
9: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
4: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
10: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
4: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
10: वेट, व्हाट?
3: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
11: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
3: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
12: Goodness is a beautiful thing, and good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 non-profit organization.
13: Dallas ki dhadkan, 104.9 FM, Funasia Radio.

0: You are listening to Gupshup Gali with me too. Ek sawal is segment mein jo main aapse poochti hoon, and it is a sawal that has hovered in my mind for quite a bit. Aap batayega aapka kya jawab hai, aur is jawab ke badle mein neon cactus, ek aisi jagah jahan pe aapko Mexican fusion meets global influence kind of food that you are going to get. It is different, ladies and gentlemen. I can vouch for it. Not just the food, but the vibe as well. Young, colorful, modern, full of energy, and perfect hangout place for date nights or your next chill plan that you have. You must go to Neon Cactus, ladies and gentlemen. Aur iske alawa, happy hours Monday se lekar Friday tak. Ye bhi yaad rakhiyega, special deals har roz aapke liye hota hai. Top it off with curated cocktails. Aur yahan se aapko $20 ka gift card mil sakta hai. One of you will win it. And aap logon ke liye ek sawal hai. Aur is sawal ka jo hai ek connection hai, it is with the current trend, ladies and gentlemen. अब क्या है ना कि मुझे ये जो सवाल पूछना है, ये सवाल आपके dining pleasures को लेकर है कि when was the last time you took yourself out on a dinner date? जी हाँ, आप और आपकी तन्हाई. जी हाँ, वैसा type का आप कब गए हो, जहाँ पर आपने सिर्फ maybe एक book पकड़ लिया अपना, या तो एक favorite पॉडकास्ट आप सुन रहे हो हेडफोन लगा के, एंड एंजॉय दैट डिलिशियस मील विद जस्ट yourself, ladies and gentlemen. If you have been doing this lately, you are definitely not alone, kyunki latest global trends ye batate hai ki bhai party of one is more popular than ever. Mere khayal se phone hamara jo ek saathi ban chuka hai, that is enough for people to have, and some people love reading books when they are sitting alone, right? Solo dining ye officially ek अल्टीमेट सेल्फ केयर मूव बन चुका है. तो क्या आपके लिए भी ऐसा कुछ है? अगर है तो ज़रूर मुझे बताइए. बट यहाँ पर इस जो ट्रेंड के कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल कैच है उसके बारे में भी बताना चाहती हूँ. वाइल वी आर आउट हियर एम्ब्रेसिंग आर इंडिपेंडेंट सोलो डेट्स, द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इज हैविंग अ बिट ऑफ अ पैनिक अटैक ऑन दिस ट्रेंड. क्योंकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब सोलो जा रहे हैं तो एक्चुअली समटाइम्स दे आर ऑक्यूपाइंग एन एंटायर टेबल विच माइट ऑक्यूपाई यू नो विच माइट एकोमोडेट फ्यू मोर पीपल, राइट? तो इस तरह से एक टेबल जब ऑक्यूपाई हो जाता है तो उनके लिए बड़ी मुश्किल की बात होती है. लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई एक ही बंदा होता है तो वो जो क्या कहना चाहिए कि जो टर्न अराउंड होता है वो इट इज़ फास्टर फॉर द रेस्टोरेंट्स. तो ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल सा है कि अच्छा है या बुरा है, शायद रेस्टोरेंट बिजनेस अभी भी जो है समझ नहीं पाई है. बट स्टिल द क्वेश्चन प्रोसेस कि भाई आप अकेले जाते हैं क्या रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, इन्जॉय करने के लिए, अपने लिए, अपने साथ जाते हैं क्या आप? अगर जाते हो तो ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं जाते हो तो भी बताइएगा. सी आई एम वन ऑफ दोज, आई कैन नॉट एंड आई विल नॉट गो बिकॉज दैट्स मी. मुझे कंपनी चाहिए होती है, मुझे चाहिए होता है मैं किसी के साथ बकबक कर सकूँ, कुछ अपने दिल की बात कर सकूँ, कुछ भी यू नो. लेकिन आई नीड कंपनी, आई कैन नॉट डू इट विथ यू नो पॉडकास्ट. ऑल्दो आई लव लिसनिंग टू पॉडकास्ट एंड दैट्स माई मी टाइम दैट आई डू व्हेन आई एम ड्राइविंग एक्चुअली. लेकिन जब मैं रेस्टोरेंट जाती हूँ तो मुझे कोई चाहिए अपने साथ. आपका क्या जवाब है इस पे? कैन यू गो अलोन और डू यू गो अलोन कि आप भी वो कंपनी वाले प्राणी हो? लेट्स टेक फ्यू कॉल्स अभी और कुछ गाने के बाद. यू आर लाइव ऑन एयर, बताइए.
1: हेलो,
0: हाय, यू आर लाइव ऑन एयर, व्हाट्स योर नेम?
1: मंजीत. रेखा.
0: हाँ, रेखा, अमिताभ की रेखा जी, बताइए, व्हाट्स योर आंसर? या
1: मैं अकेले ऐसे नहीं जा सकती, जाना पड़ता है कई बार अपने लिए.
0: हाँ.
1: लेकिन मुझे मजा नहीं आता, मजा मुझे फैमिली के साथ आता है. इतना मेरे कोई फ्रेंड्स तो मेरे ज्यादा है नहीं.
0: हाँ.
1: तो फैमिली ही मेरी फ्रेंड है, मेरे बच्चे जो है, मेरे दोस्त भी हैं.
0: हाँ.
1: उनके साथ जाके मुझे बहुत मजा आता है,
0: ज्यादा मजा आता है
1: अपने ग्रैंड किड्स के साथ.
0: Absolutely. So you are the company kind. अकेले आप अपने आप की कंपनी नहीं बन सकते हो. All right, got that. You are very much like me. You are very much like me. मेरे ख्याल से. Thank you for your answer. I'm going to take this next caller. You are live on air. बताइए.
2: Hey, hi. How are you?
0: Doing very well. Who is this?
2: This is Sandeep.
0: Sandeep, हाँ जी, बताए.
2: जी, मुझे पसंद है एक तरफ से अकेले जाना खाने पर भी और खासकर मूवी पर भी. हाँ जी, मैं अक्सर जाता भी हूँ. आपने बोला कि आप नहीं जाते, आप इंजॉय नहीं करते, विच इज गुड अगेन. बट मैं जब भी कोई खुशी होती है है या फिर कम.
0: हाँ,
2: तो जब मूड खराब होता है तो खाना इज द बेस्ट थेरेपी, एज यू नो.
0: एब्सोल्युटली अग्री.
2: और मूवी भी. सो आई बीइंग डूइंग दैट बिकॉज जब आप खुद के साथ जाते हो तो आपको फील होता है कि आपके अंदर भी एक इनोसेंट सा बंदा या बंदी है जो बहुत ही मासूम है, दुनिया से परे, जिसको खुश भी रहना है, हर इमोशंस को भी हैंडल करना है. जब अपने आपके साथ जो टाइम बिताते तो आपको मालूम पड़ता है कि यार नहीं, मैं थोड़ा अलग हूँ, जैसा चीजें गलत हो रही है, बट ठीक है, मैं उससे बाहर आ सकता हूँ. मैंने इसके पहले भी जिंदगी में किया है, मैं आगे भी करूंगा. और जब खुश होते हो आपको मालूम होता है, जब आप खुशी के माहौल में अकेले तो आपको मालूम होता है कि यार दुनिया तो मुझे प्रेस कर भी रही है, पर मुझे भी खुद को प्रेस करना है कि जो भी मैंने स्ट्रगल करे, जो भी हार्डवर्क मैंने करा, किसी ने देखा ही नहीं है.
0: बिल्कुल. That is amazing to know. Seriously, ये एक मेरे ख्याल से कला है. ये शायद सबकी बस की बात नहीं होती है, लेकिन जो कर सकते हैं ना उनके लिए, good for them. That's what I want to say. No, really. Thank you, Sandeep, for sharing your story. Seriously, मेरे ख्याल से ये एक ऐसी चीज है, मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ. तो एक हमें जवाब मिला जहाँ पे वो कंपनी पसंद करते हैं, और दूसरे जो अकेले अपनी कंपनी पसंद करते हैं.

0: आप क्या कर सकते हैं मैं बताती हूँ आपको. आप जीत सकते हैं $20 का नियॉन कैक्टस की तरफ से गिफ्ट कार्ड, डाइन इन गिफ्ट कार्ड, अगर आप मुझे जवाब देते हैं. मैं अपने सवाल को थोड़ा सा बदलना चाहती हूँ यहाँ पर, जस्ट सो दैट आई गेट ए पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट माय लिसनर्स आर थिंकिंग. और मैंने आपको बताया ना कि आजकल का नया ट्रेंड है सोलो डेट्स. जी हाँ, मैं और मेरी तन्हाई और साथ में अच्छा सा खाना रेस्टोरेंट में ऑर्डर करना, दैट्स द न्यू ट्रेंड लेडीज एंड जेंटलमैन. लोग किताबें पढ़ते हैं, लोग अपना यू नो पॉडकास्ट सुनते हैं, बहुत कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है. कई लोग तो भाई इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे भी रहते हैं. दैट आई डोंट नो हाउ मच इट इज़ गोइंग टू हेल्प, बट नन द लेस पीपल लव सोलो डेट्स दीज डेज. यानी कि खुद अकेले जाना रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई रेस्टोरेंट्स को एक्चुअली ये बात पसंद नहीं, क्योंकि समटाइम्स यू नो पीपल आर ऑक्यूपाइंग द स्पेस विच कैन अकोमोडेट मोर पीपल, यू नो. तो इसीलिए लोगों को पसंद नहीं है. तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो क्लैश है रेस्टोरेंट का, जहाँ पे एक तरफ तो क्या है कि एक प्रॉफिट मार्जिन मैक्सिमाइज कर सकते हैं, लुकिंग फॉर क्विक टेबल टर्न ओवर्स यू नो व्हेन वन इज डाइनिंग अलोन, एंड ऑन दी अदर हैंड यू हैव पेइंग कस्टमर्स हु जस्ट वॉन्ट टू एन्जॉय अ क्वाइट नाइस मील विदाउट बींग फोर्स टू सिट एट द बार, यू नो. तो आपके हिसाब से मैं सुनना चाहती हूँ कि क्या किसी रेस्टोरेंट का आपका सिर्फ इसीलिए टेबल डिनाई करना फेयर है कि क्योंकि आप अकेले हैं? टेल मी दैट. नो रियली, माने फ्रॉम एवरी एंगल दैट यू कैन थिंक अबाउट इट एंड गिव मी अ पर्सपेक्टिव ऑफ योर्स. तो मैंने अपना सवाल थोड़ा सा बदला है, मुझे आप बताओ कि कुछ रेस्टोरेंट्स, क्योंकि जब आप अकेले डाइन इन कर रहे हो तो आपको बार में यू आर आस्क्ड टू सिट सो दैट यू डोंट ऑक्यूपाई द टेबल बेसिकली. तो कई बार डिनाई किया जाता है जो अकेले खाने के लिए आए, ऐसे सुनने में आया है. मैंने कभी सुना तो नहीं था लेकिन ऐसे सुनने में आया है. तो आप मुझे बताओ कि किसी रेस्टोरेंट का आपको डिनाई करना कि आप या तो वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं, टेबल प्लीज ऑक्यूपाई ना करें, दैट कैन पोलाइट काइंड ऑफ अ रिक्वेस्ट दैट दे डू. सो इज इट फेयर डू यू थिंक? लेट मी नो 9722355555. मैं जानना चाहती हूँ मेरी जनता से, मेरी देसी जनता से, कि आपके क्या विचार है इस बारे में. 9722355555 नंबर इन द स्टूडियो. आपको टेबल डिनाई करना वाजिब है, फेयर है, अगर आप अकेले खाने जा रहे हो? दैट्स माय क्वेश्चन टू यू. यू आर लाइव ऑन एयर.
1: टेबल डिनाई, कैन यू हियर मी? हेलो,
0: क्रिस्टल क्लियर. टेल मी व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट.
1: I was just listening, actually. It's a really nice topic.
0: Mm-hmm.
1: So I got denied one time in Denver.
0: Oh, you were?
1: Right.
0: Okay.
1: I'm in I'm in Dallas right now.
0: Okay.
1: So it was a really nice restaurant. I forgot the name, but it was in downtown area.
0: Okay.
1: And they told me, like, you may actually sit at the bar. Because, you know, like, there's a lot of actually seat, empty. But
0: okay,
1: they request me politely.
0: Huh.
1: And I just did consider, like, sometimes you can consider that. I didn't mind, actually. But
0: okay.
1: Your topics recall my memory,
0: mm-hmm.
1: and I'm just sharing with you. Nothing
0: Thank
1: else.
0: You
1: I did
0: so much.
1: Positively, nicely.
0: Yeah, but don't you think because the restaurant was so empty, there were vacant seats, you could have gotten one table? I mean, if you didn't want to go and sit at the bar, what about that?
1: True, true. That's actually their business, but I didn't think about that.
0: Huh.
1: But now, after a long time later, I'm just thinking, they could actually let me to sit over there.
0: Yeah, I mean, I would probably try and understand if it is really quite full and people are already waiting, people with a bigger company are waiting, then I would understand. But yeah, that's, thank you for sharing. I didn't know anybody has actually faced in my circle,
1: yeah.
0: So now I know.
1: Next time, you know, like... maybe you watch Mr. Bean, right?
0: Yeah.
1: He always carry a beer. Next time I will carry a beer and just keep that in another seat so that I can occupy it with another people.
0: Sounds like a plan, sir. What's your name?
1: Kazi.
0: Can you spell that for me?
1: K-A-Z-I.
0: K-A-Z-I. Thank you so much. Keep listening because I'll be announcing the name of the winner. You are live on air. Bataiye.
2: Hi, Abby here.
0: Mm-hmm.
2: And from my perspective, it's the same thing. Kya stack or single go, you know, any couple show mein jana allowed hai ki nahi. If you think that perspective, almost is the same thing, right? Even though there are space available, even though you have all the
0: correct
2: stuff,
0: I see your perspective. I do see your perspective actually here. Lekin agar keval restaurant tak limit karun to aapko kya lagta hai ki ek jo solo ja raha hai usko ek table diya ja sakta hai ki nahi?
2: As I think yes, kyunki as a stack also I always feel jab young the, jab college mein the, it's always like why I'm so nice, I'm always dressed properly, lekin it's not allowed.
0: Why is it not allowed? I hear you. I totally hear you. What's your name?
2: Abby.
0: Abby.
2: Abhishek.
0: Abhishek, thank you so much, Abhishek, for your perspective. I do hear you. I mean, for the people who don't have a company and they are happy with their company, they are people who can mingle. Why not? I mean, right? You are live on air.
3: Hi.
0: Hi, who's this?
3: I'm Judith Shalini.
0: Hi,
3: yeah,
0: Shalini.
3: I'm a bit contradicting, but in my opinion, I feel if you're single, you're asked to sit at the bar. The restaurants have their codes, like protocol, right?
0: Correct.
3: So if they have to attend the table, they have different set of services. But here, the bartender is already there, and they usually take the orders. So it's easy for them, and actually, I think the waitresses all are like hourly paid, so it works out for them better. So in their point of view, I just feel... They are right at what they are.
0: Oh, you think so? But what if I tell you, you know, the perspective, if you can see, you know, if there is a single person dining at a table, the food will come

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Door rehkar bhi desi rehna aasan nahi hota. Par jab mile apni culture ki khushbu, apne khane ka taste, to dil kehta hai, this is home. Welcome to Desi Mandi, Louisville. Dallas ka sabse bada desi grocery store, jahan har desi ek roof ke niche, north se south, street se festive, har taste, har culture, ek hi jagah, pure desi, full mandi experience, unmatched variety, unbelievable deals, only at Desi Mandi. Desi Mandi, powered by Desis, loved by Dallas.
7: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai, profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी. डायग्नोसिस क्लियर है. आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी. एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी. फ्रॉम टैक्सेस टू सीएफओ एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन. कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com. प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज.
8: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
9: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
8: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
9: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
10: Samasya ka pakka samadhan.
9: Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
11: सब कुछ साफ रख सकते हो
12: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती. कोई नहीं सोचता मेरे बारे में.
13: क्योंकि ये कौन बोला?
12: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं. और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे. हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है. मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
14: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है. कॉल जीतू पटेल 972-877-2500.
15: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499. Or email at info@seemamehtalawfirm.com.
16: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
17: इंडिया में घर खरीदना या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना अब हुआ और भी आसान. गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो अब फ्रिस्को में. मिलिए मुंबई, पुणे, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के टॉप डेवलपर्स से. सब एक ही छत के नीचे. 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कीजिए और अपने प्लान्स के हिसाब से सही प्रॉपर्टी चुनिए. आइए 9th एंड 10th मई को हयात रेजेंसी फ्रिस्को डलास में सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक. एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री. माई स्क्वायर फीट प्रेजेंट्स सबसे बड़ा इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो.
18: डलास की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो.

डिम लाइट्स का तो सवाल ही नहीं होता भाई. इट इज ओवरकास्ट आउटसाइड, जिसका मतलब ये है कि घरों में भी लाइट्स जले होंगे. ऑफिस में तो जलते ही हमेशा, लेकिन घरों में भी आई थिंक वी हैव स्विच्ड ऑन द लाइट्स एंड एवरीथिंग. दैट्स व्हाट आई डिड व्हेन आई वाज स्टेपिंग आउट टुडे. एंड आई डू वांट टू मेक श्योर दैट यू ऑल आर अवेयर ऑफ द वेदर. मौसम सुबह से जो है वो काफी ओवरकास्ट जो दिख रहा है, ब्रीजी है, ऑल ऑफ दैट इज देयर. बट इन द इवनिंग आवर्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ए स्टॉर्म और टू. अगर ये डेवलप होती हैं तो आपके लिए ये वार्निंग भी है कि लार्ज हेल और गस्टी विंड्स भी उनके साथ अकम्पनीड होंगी. एंड दिस इज़ बिटवीन 5 टू 11 पीएम. सो मेक श्योर अगर आप उस दौरान बाहर रहने वाले हैं, जिस भी जगह जाने वाले हैं, वहाँ का वेदर कैसा है आप ज़रूर देख लीजिएगा. इट कैन बी ए नल इवेंट ऑल्सो, लेकिन ध्यान रहे कि इट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी इफ़ इट डिवेलप्स इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस लार्ज हेल. ऑलराइट, इन द मीन टाइम इट विल बी मोस्टली क्लाउडी, ब्रीजी एंड क्वाइट वार्म टूडे, क्योंकि आज हम 90 रीच करने वाले हैं. जी हाँ, एंड इट इज टुडेज टेम्परेचर फॉर अ हाई दैट वी आर गोइंग टू सी अराउंड 90 एंड लो विल बी अराउंड 60, लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड कल फिर एक बार हम ड्रॉप देखने वाले हैं, क्योंकि रात को कोल्ड फ्रंट आने वाला है, जिसकी वजह से टेम्परेचर हमारा कल क्लोज टू 80 होगा और मोस्टली हाईएस्ट 70s दैट वी विल बी सीइंग, लेडीज एंड जेंटलमैन. और कल रात का टेम्परेचर कुछ 60 के आसपास. यही कुछ थर्सडे का भी हाल रहेगा. एंड देन फ्राइडे go back again in the 80s we will, and Saturday and Sunday back to higher 80s and 90s that we are going to touch. And that is your entire week's forecast, ladies and gentlemen. लेकिन आज का forecast क्या है आपके लिए, शाम का क्या इरादा है, ये भी जरूर बताइएगा. Cinco de Mayo, ladies and gentlemen, इसके बारे में भी बातचीत होगी आप लोगों के साथ right here. Let's get you this next गाना for the reason that it was produced by Gulshan Kumar and it is his birth anniversary today, the head honcho of the T series that we know. He died in 1997 at the age of 46. He was born on this day in 1951.

दिल धड़कने के ये अच्छा रीजन है, लेकिन कभी कभी दिल धड़कता है फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, एंड इट कैन बी बिकॉज ऑफ अ फॉल, बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट, ए वर्क प्लेस इंजरी. बहुत कुछ चीज़ें हैं जो वाकई में आपके इतना स्ट्रेस ऐड करता है, डिफिकल्ट टू इवन फंक्शन और थिंक अबाउट कॉम्पनसेशन. वो तो बहुत दूर की बात हो जाती है, आप अपने आप को ही देखने में बिजी हो जाते हो, अपने आप को ही संभालने में बिजी हो जाते हो, एंड प्लस द बिजी स्केड्यूल्स दैट वी हैव, राइट. ऐसे में एक नाम जो आपके सामने आना चाहिए राइट एट द बिगनिंग ऑफ योर प्रॉब्लम, यानी कि अगर एक्सीडेंट आज हुआ है तो कल ही उनसे बात करें, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. आई वांट यू आज ही अगर कर सकते हैं तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती है. बट यस, इफ यू मीट विद एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जहां पे आपको लगता है कि आपको कॉम्पनसेशन मिल सकता है, देन अटर्नी ओमर ख्वाजा के साथ आप जरूर कनेक्ट करें, बिकॉज दे विल बी एबल टू हेल्प यू वेरी वेल. If you go to them right at the beginning, even better. और उनका सबसे बड़ा प्रॉमिस जो आपके लिए होता है वो है कि आपको पे नहीं करना होता है जब तक आप अपना केस जीत नहीं जाते हो, यानी कि आपको जब तक अपना कॉम्पनसेशन मिल नहीं जाता है. और मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा प्रॉमिस कोई कर सकता है टू गिव यू दैट कॉन्फिडेंस टू गेट इन टच विद देम राइट अवे. एंड दैट फ्री कंसल्टेशन फॉर ऑल ऑफ यू एट 4693005046, और इनकी वेबसाइट पे जरूर जाइएगा attorneyomar.com. और राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, एक और गाने की रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम दिस फिल्म जिसका आपने अभी भी गाना सुना. मैंने कहा यार व्हाई नॉट, बिकॉज द सॉन्ग्स वर सो अमेजिंग इन दिस फिल्म कि ये अपने आप में एक एल्बम के तौर पे रिलीज हो रहा था. इट वाज लेटर दैट महेश भट्ट एंड द टीम केम अप विद द फिल्म. एक्चुअली फिल्म तो बाद की बात थी, पहले गाने ही रिलीज होने वाले थे. एंड गुलशन कुमार हैड हिज डाउट्स, उनका आज बर्थ एनिवर्सरी, और उन्हीं को याद करते हुए और महेश भट्ट को याद करते हुए लेट्स टॉक अबाउट दिस इंसिडेंट, लिटिल इंसिडेंट दैट हैपेंड, कि जब ये फिल्म बन के तैयार हो गई, महेश भट्ट ने जो तैयार की थी विद राहुल रॉय एंड अन्नू अग्रवाल, एब्सोल्युटली न्यू कमर्स, तो गुलशन कुमार को पूरा भरोसा नहीं हो रहा था. ही हैड फुल फेथ इन द एल्बम, द म्यूजिक एल्बम, बट ही वॉज नॉट वेरी श्योर अबाउट द फिल्म. तो ही थॉट कि एल्बम रिलीज करते हैं और फिल्म को रहने ही देते हैं, यू नो. तो तब एक्चुअली महेश भट्ट अपेरेंटली वेंट टू सी गुलशन कुमार, और उन्होंने एक ब्लैंक पेपर पे साइन करके दिया था कि अगर ये फिल्म फ्लॉप हुई तो वो फिल्म मेकिंग छोड़ देंगे. लेकिन उसकी नौबत कभी आई ही नहीं, बिकॉज वी नो व्हाट इट डिड एट द बॉक्स ऑफिस. अनीश की रिक्वेस्ट पे लेट्स गेट यू अनदर वन फ्रॉम दिस वन, आशिकी.

Gulshan Kumar's birth anniversary today. This is May 5th that we are talking about. And happy Cinco de Mayo, ladies and gentlemen. Ji haan, aaj May 5th hai. Aur agar aap aaj shaam bahar nikalne wale hain, to aapko ek baat bilkul aapko clearly samajh mein aana chahiye ki bhai, America truly loves a good theme party. And that is what exactly you'll see around. Lekin kya aap jante hain ki aaj hum actually kya celebrate kar rahe hain? It is not Mexico's Independence Day. You should all know that. Jo ki ek bahut bada misconception कंसेप्शन होता है हर इंसान के लिए तो नहीं बोलूंगी कई लोगों के लिए. नाउ सिंको दे मायो एक्चुअली मार्क्स ए वेरी स्पेसिफिक हिस्टोरिकल मोमेंट मेक्सिकोज इनक्रेडिबल 1862 विक्ट्री ओवर फ्रांस एट द बैटल ऑफ पुबला. एक फनी सी एक रियलिटी बताऊं आपको, ये दिन शायद मेक्सिको से कहीं ज्यादा यूएस में इसे मैसिव तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है. एंड ओवर द इयर्स इट हैज ऑफिशियली बीन रीब्रांडेड एज द अल्टीमेट मार्केटिंग टूल फॉर आवर लोकल रेस्टोरेंट्स एंड बार्स. और आज के दिन हर जगह चिप्स, साल्सा, फाहिताज एंड स्पेशल मेन्यूज का एक बिल्कुल टेक ओवर सा हो जाता है. सो यस, थॉट विल प्ले दिस ट्रैक, दिस लास्ट ट्रैक फॉर ऑल ऑफ यू राइट हियर ऑन फनीजर रेडियो. दिस इज गपशप गली विद मी टू.

0: And that's all the time I have with you all. Up next is Simran, ladies and gentlemen. And this is Me Too signing off for the day.
1: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला.
2: ओह हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids wear.
5: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
4: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
6: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to karna hi padega, madam.
9: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
11: Are you sun, ye astrologer bol raha hai 2026 teri rashi walon ke liye bahut lucky hai.
12: Ma, reels pe sab lucky hi hote hain. Generic predictions sabko thodi help karti hain. To phir agar real clarity chahiye to personalized guidance lo.
13: Guidance ki baat ho to ek hi naam hai, Pandit Ram Tulsi. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
3: कहते हैं माँ के हाथ का खाना दुनिया में सबसे स्पेशल होता है, पर इस मदर्स डे लेट्स मेक थिंग्स स्पेशल फॉर हर. एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस वेयर शी एंजॉयज एंड वी सेलिब्रेट हर.
14: द फ्लेवर लाउंज, वेयर एवरी डाइनिंग मोमेंट इज एन एक्सपीरियंस.
3: ऑन दिस मदर्स डे फ्लेवर लाउंज ला रहा है एक मीठा सा सरप्राइज, अ कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट फॉर एवरी मदर.
14: द फ्लेवर लाउंज एट प्रेस्टन रोड फ्रिस्को एट मलाबार गोल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर मदर्स हु मेक लाइफ फ्लेवरफुल.
15: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
16: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में.
15: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया. कैसे मैनेज होगा सब?
16: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं.
3: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता. जीनो क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट. नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम. कॉल 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
17: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Phoenicia Radio.

0: the...
1: Hello and Namaste Dallas, you are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. Abhi वक्त हो चुका है 12:37 और आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि देसी गर्ल को और शो का नाम है आफ्टरनून अड्डा. मैं हूं आपके साथ 12:30 to 2:30 तक एंड आई होप आई रियली होप कि यू इन्जॉय द शो एंड आई एम गोइंग टू टेल यू मोर एंड मोर अबाउट कि क्या चल रहा है आजकल, क्या ट्रेंड हो रहा है और आपसे भी बहुत सारे सवाल पूछने वाली हूँ, कुछ गिव अवेज भी हैं. सो स्टे ट्यून्ड.

अब आप चाहे जश्न इश्क सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर कोई और भी सेलिब्रेशन, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है आपके पास. मतलब आप जा सकते हैं मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स में और आप वहां से खरीद सकते हैं डायमंड रिंग्स, ईयर रिंग्स, नेकलेसेस और ऐसे बहुत सारे ज्वेलरी जो कि आपके स्पेशल मोमेंट को और भी स्पेशल बना सकता है. दे हैव ऑल काइंड ऑफ ज्वेलरीज रेंजिंग फ्रॉम सॉलिटेयर्स टू कंटेम्प्रेरी स्टाइल्स. और उनका जो डायमंड कलेक्शन है ना, उनकी जो क्वालिटी है वो मतलब ऐसा शाउट आउट करती है टाइमलेस ब्यूटी को, टाइमलेस डिज़ाइन को, जो कि परफेक्ट है एंगेजमेंट्स के लिए, एनिवर्सरी के लिए या फिर सिर्फ सेलिब्रेट करने के लिए जश्न इश्क. तो ये जो मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स हैं वो प्रेस्टन रोड फ्रिस्को में सिचुएटेड है, तो आप वहाँ बिल्कुल जाएं. आप उनकी वेबसाइट्स भी देख सकते हैं फॉर एक्सप्लोरिंग द डिज़ाइंस. और क्योंकि मदर्स डे आ रहा है, तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू गो एंड शॉप फॉर योर मॉम फ्रॉम मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स.

0: डैड।
1: राहुल कैसा है बेटा? Everything fine?
0: Everything fine, Dad. In fact, बहुत खुश हूँ मैं. After a long time.
1: Hey, are you in love?
2: तू ही मुझको बता दे.
0: How do you know?
1: You're a bab, Sale. When the son is in love, the father just knows.
2: अपने तू दिल का पता दे.
3: हेलो एंड वेलकम बैक टू माय शो. यू आर लिसनिंग टू फनएशिया रेडियो. शो का नाम है आफ्टरनून अड्डा और मैं हूं आपकी अपनी आरजे देसी गर्ल एके आरजे सिम्मी. तो मैं आपको बताने वाली हूं कि आजकल सोशल मीडिया पे क्या वायरल हो रहा है, क्या ट्रेंड हो रहा है, लोग किसके बारे में बातें कर रहे हैं. तो आजकल जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे वायरल हो रहा है वो है इंडिया के रीसेंट इलेक्शन रिजल्ट्स. हाँ जी, अभी अभी तमिलनाडु और कोलकाता के रिजल्ट्स आए हैं और इस बार रिजल्ट थोड़े शॉकिंग है, कहले तो थोड़े अनएक्सपेक्टेड भी हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु की. तो यहाँ पे एक मेजर पॉलिटिकल ट्विस्ट देखने को मिला है. जो एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन है सी जोसेफ विजय, उनकी पार्टी टीएमके ने धमाकेदार एंट्री मारी है और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी है. फिलहाल उनकी पार्टी ने अराउंड 100% सीट्स जीती हैं और ट्रेडिशनल पार्टीज को स्ट्रांग चैलेंज दिया है. मतलब ये कहीं ना कहीं यूथ पावर को दिखा रहा है, नए लीडरशिप को दर्शाता है. और ये जो पूरा पॉलिटिकल सीन है ना फिलहाल उस स्टेट का, तमिलनाडु का, ये थोड़ा चेंज हो गया है. तो मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके ओपिनियंस क्या है. इज इट अ गुड साइन? आप अपना कोई ओपिनियन इस पे शेयर करना चाहें तो वी आर लिसनिंग टू यू. लेट मी नो.

हाँ जी, और ऐसी ही आंधी आ चुकी है बंगाल में भी विद द इलेक्शन रिजल्ट्स, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बीजेपी ने मेजॉरिटी वोट्स हासिल किए हैं। सो अभी हमारे पास कुछ कॉलर्स थे जिन्होंने अपना ओपिनियन, अपने व्यूज शेयर किए कि यू नो पीपल जस्ट वांटेड अ शिफ्ट, उनको चाहिए था कि कोई नया बंदा आए, कुछ नई पॉलिसीज लेके आए। बट वी आर ऑल इन वेट एंड वॉच मोड, लेट्स सी कि कैसा जाता है। लोगों ने एक शिफ्ट चाहा है, लोगों ने ट्राई किया है कि नए बंदों को मौका मिले, और वो देखना चाहते हैं कि वो कैसा रूल करते हैं। सो इट इज़ अ वेरी वेरी हेल्दी कॉम्पिटिशन जो कि इलेक्शन रिजल्ट्स में देखने को मिला है, एंड वी आर ऑल इन वेट एंड वॉच मोड। अगर आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं विद द लेटेस्ट ट्रेंडिंग मच टॉक्ड अबाउट रिजल्ट्स के बारे में, तो मुझे कॉल कर सकते हैं एट 972-235-5555 पे।

हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। अगर आप इन एंड अराउंड डैलस ढूंढ रहे हैं कुछ अच्छा खाने को, और क्योंकि लंच ब्रेक भी हो चुका है, तो अगर आप कुछ फ्लेवरफुल एक्सपीरियंस चाह रहे हैं तो आप जा सकते हैं Page 3 E3 पे। और डैलस का ये नया फ्लेवर हब बन गया है एट हब 121, और Page 3 E3 जो है यहाँ पे हमें क्लासिक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, एक इंडियन स्ट्रीट फूड का जो कि मॉडर्न फ्लेवर के साथ मिक्स होके बहुत ही सारे फूड आइटम्स जैसे कि कबाब, चाट, फ्यूजन बाइट्स एंड मॉकटेल्स के रूप में वहाँ पे ये सब रेंजेस और वैरायटी उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं। तो आप जाइए फॉर योर वाइब्रेंट वाइब्स, चाहे वो ब्रंच हो, लंच हो या फिर डिनर हो, ये लोकेशन परफेक्ट है अगर आप एक फूडी हैं, अगर आपको किसी को डेट पे लेके जाना है या फिर नए नए फ्लेवर्स ट्राई करने हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं Page 3 E3 पे फॉर द डिटेल्स के लिए। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड विद फनेशिया रेडियो।

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी बजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे
4: हेलो एक्सीडेंट क्लेम ओके नेम ऑफ द लॉयर
5: उमर ख्वाजा
6: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833 गेट उमर और विजिट attorneyumar.com
7: यार बॉस ने फिर से डांट दिया ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस
8: अरे रिलैक्स यू नीड अ कूल थेरेपी
7: थेरेपी वो तो बहुत महंगी है
8: नहीं कूल मतलब कूल चा थेरेपी
7: ये क्या होता
8: है सिंपल चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन
9: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस
10: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai. Transparent pricing. No hidden fees. No surprises. Aur haan, sabse badi khabar. Unka AI-powered platform. Real-time rates compare karta hai. Taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
11: Beta, itni der se baithe ho, homework hua?
12: Mama, koshish to kar raha hu, par samajh mein nahi aa raha hai.
11: रोज का सेम प्रॉब्लम
13: जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे लुमडी लर्निंग सेंटर जहां बच्चे रटते नहीं समझते हैं लुमडी का कस्टम करिकुलर फिस्को प्रॉस्पर एंड मैकिनी आईएसडी स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है
14: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 टू 13 कंटीन्यूअस फीडबैक ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रांग क्रिटिकल थिंकिंग
15: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को
9: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फनेशिया गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ Lumity Learning Center. Build mastery. Unlock potential.
16: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
17: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
18: Get ready for the smoky, flavorful goodness of Tandoori Chicken Pizza. Perfectly marinated tandoori chicken, mildly spiced, tender and bursting with aroma. Layered over creamy cheese and a golden crust. It's the perfect balance. Not too spicy, not too mild. Just right for every flavor lover. Taste the magic of the tandoor on your favorite sliced tandoori chicken pizza. Only at Fun Pizza Kitchen. Fun Pizza Kitchen, where every slice tells a story. 3 minutes. That's how long it takes to sign up with Bezit. They challenge your property tax appraisal, build the case, go to the hearing. You just wait for the result. 89% of customers get a reduction. Average savings over $1,100. Collin and Denton County. May 15th is your last day this year. Bezit.co.
19: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
20: Hello and welcome back to my show. You're listening to Fun Asia Radio, 104.9 FM. Or आज हमारे साथ हैं मिस शेफाली पंजवानी जी जो कि हैं एक होम मॉर्टगेज लोन एक्सपर्ट शी हैज़ कम फ्रॉम माय फैमिली होम लोन जो कि फैमिलीज को होम लोन ऑप्शन समझाते हैं और होम बाइंग प्रोसेस में इसको सिंपल बनाने में हेल्प करते हैं तो शेफाली जी वेलकम टू आवर शो आप ऑन एयर हैं और आपसे हमारा एक सवाल है कि जो बिजनेस ओनर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं या फिर 1099 अर्नर्स हैं, उनके लिए होम लोन लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, डिफरेंट होता है, तो ऐसा क्यों होता है और आप इसमें कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं? ओवर टू यू.
1: ओके, ग्रेट क्वेश्चन. क्योंकि इनका इनकम फ्लक्चुएट होता रहता है 1099 में और जब सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, और W2 में फिक्स इनकम रहती है, तो ट्रेडिशनल लोन स्टेबल इनकम प्रिफर करती है, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन और इवेल्युएशन थोड़ा अलग हो जाता है. कुछ प्रोग्राम्स में बैंक स्टेटमेंट्स या अल्टरनेटिव इनकम डॉक्यूमेंटेशन भी कंसिडर किया जाता है फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड, फॉर द बिजनेस ओनर्स और फॉर द वन हु आर ऑन 1099, सब्जेक्ट टू लेंडर गाइडलाइंस एंड अप्रूवल. सो इसके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स है जिसमें अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा आप स्टिल क्वालिफाई हो सकते हो घर खरीदने के लिए, रीफाइनेंस के लिए या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए. और अगर आपको आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल रिव्यू करवाएं और देखें कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कुछ फिक्स क्रेडिट फिक्स या कुछ करने की जरूरत है बिफोर यू टेक नेक्स्ट स्टेप.
20: थैंक यू सो मच शेफाली जी. आई थिंक हमारे लिसनर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा. एक और सवाल है आपसे कि अगर कोई घर खरीदने का सोच रहा है तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, प्रोसेस क्या होना चाहिए, अगर आप इस पे थोड़ा गाइड कर देते प्लीज.
1: सबसे पहला ये प्रोसेस होना चाहिए कि आप अपने फाइनेंशियल मॉर्गेज प्रोफेशनल से रिव्यू करवाएं, आप देखिए कि आपके इनकम, क्रेडिट और डॉक्यूमेंट्स कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. सही गाइडेंस से आपका प्रोसेस स्मूथ हो सकता है क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है जो आपके सिनेरियो में फिट होता है, इंस्टेड ऑफ फर्स्ट गोइंग एंड सर्चिंग फॉर द होम. सो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप आपका क्रेडिट रिव्यू करें और फाइनेंशियल रिव्यू करें. काफी दफा ऐसा होता है कि देर आर टू बोरोवर्स, एक बोरोवर का क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है और एक का ठीक ठीक है. सो उसकी वजह से भी बहुत अफेक्ट करता है क्योंकि आपका हाईएस्ट स्कोर नहीं देखा जाता है. तीन क्रेडिट ब्यूरो में से आपका जो मिडिल स्कोर है उसको लिया जाता है. और जैसे आप हस्बैंड वाइफ दोनों अप्लाई कर रहे हो, हस्बैंड का मिडिल स्कोर अच्छा है और वाइफ का कम है, तो वाइफ का ही कंसिडर किया जाएगा जो लो होगा मिडल में. तो प्लीज आप बैठ के पहले अपना क्रेडिट प्रोफाइल रिव्यू करिए, आपके इनकम, आपके फाइनेंशियल्स रिव्यू करें, और कुछ अगर है डेट जो आप पे कर सकते हैं थोड़ी बहुत, जिससे आपको काफी इंटरेस्ट रेट और आपकी प्रोफाइल में काफी फर्क पड़ सकता है, तो पहले ये करना बहुत जरूरी है. इसके लिए आप मॉर्गेज प्रोफेशनल के साथ में बैठ के डिस्कस करके करिए अपने सिनेरियो के हिसाब से, एंड देन गो फ्रॉम देयर. एंड इफ यू नीड एनी हेल्प और इफ यू वांट टू फाइंड आउट एनी ऑप्शंस, कि आप कोई भी स्टेज पे हो, राइट नाउ यू आर नॉट रेडी, इवन दो यू आर प्लानिंग फॉर इन द नेक्स्ट टू इयर्स, इन अ ईयर यू शुड ऑलवेज सिट डाउन एंड टॉक टू अ मॉर्गेज प्रोफेशनल एंड सी वेयर विच राउट यू नीड टू गो और विच इज द बेस्ट राउट फॉर यू. एंड इफ यू नीड एनी हेल्प प्लीज गिव अस अ कॉल at 469-734-3338.
20: Thank you so much, Shefali ji, hamare listeners ko guide karne ke liye. We'll connect with you next time. Thank you once again. And listeners, you know whom to connect with in case agar aapko koi bhi jankari chahiye होम लोन मॉर्टगेजेस पे. नाउ हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे गाने बजाते हैं, और या फिर अगर आपके पास कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट है तो बिल्कुल रीच आउट टू अस एट 972-235-5555 पे.

Hello and welcome back to my show. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. और मैं हूँ आरजे देसी गर्ल और आरजे सिमी. और मैं आपसे अभी तक बहुत सारी बातें कर चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारी बातें अभी बाकी भी हैं. आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आ रहा है हमारा देसी मंडी गिव अवे क्वेश्चन. जी हाँ, अगर आपको ग्रॉसरीज वगैरह का गिव अवे मिल रहा है देसी मंडी से, कि तो क्यों ना पार्टिसिपेट करें, हमसे बातें करें, हमें इस क्वेश्चन का जवाब बताएं. लेकिन क्वेश्चन क्या है वो मैं बताऊंगी आपको इस गाने के बाद. तो स्टे ट्यून्ड एंड लिसन टू दिस सॉन्ग.

0: बताना।
1: हाँ जी, अगर आप मुझे कुछ बताना चाहें तो, और अगर आप मिल ना भी सके तो आप मुझे कॉल तो जरूर कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने इस सॉन्ग पे जाने से पहले आपको बताया था कि हमारा गिव अवे क्वेश्चन आने वाला है, और ये जो गिव अवे क्वेश्चन है वो मदर्स डे से रिलेटेड है, क्योंकि मदर्स डे इज राउंड द कॉर्नर। और मैंने सोचा कि मैं क्या पूछूं, और फिर मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आया कि यू नो, सिंस वी आर लिविंग इन USA और हम यहाँ का पेरेंटिंग स्टाइल, यहाँ की जो मम्मीज है, मतलब जो सेम इंडियन मॉम्स, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो फिलहाल रह रहे हैं जिनकी मम्मी इंडिया में होंगी और उन्होंने दूसरे तरीके से परवरिश की होगी, रेस किया होगा बच्चों को, आपको, और अब आप एक जो है अमेरिकन मॉम बन चुकी हैं, अब आप अमेरिका में रह रही हैं, तो क्या डिफरेंस है देसी मॉम्स इन इंडिया वर्सेस देसी मॉम्स इन अमेरिका? आई नो कि बहुत डिफरेंसेस हैं एंड इट्स लाइक एन एवरीडे थिंग जो यहाँ पे माएँ जो है, मदर्स जो हैं, गो थ्रू कर रही है। अगर आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग जवाब है या आपका कोई भी ओपिनियन है तो हमें कॉल कीजिए एट 972-235-5555 पे, और आप जीत सकते हैं एक इंटरेस्टिंग देसी मंडे गिफ्ट हैम्पर।
2: Feel me.

0: बाप है वो तुम्हारे,
1: तो मैं क्या करूँ इसके बारे में?
2: अम्मी पिछले 7-8 साल से मैं इतने धक्के खा रही हूँ कि इखलाक नाम की चीज मेरे अंदर से बिल्कुल खत्म हो गई है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो हमारी जिंदगी में जहर घोलने के जिम्मेदार हैं।

0: मैं दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार करने वाली बीवी।
1: हेलो एंड वेलकम बैक डैलस। आप सुन रहे थे जिंदगी गुलजार है से, ये जिंदगी गुलजार है ड्रामे से ये सॉन्ग जो कि काफ़ी पॉपुलर है। हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि मदर्स डे पे स्पेशल उसका, कि आपको क्या लगता है कि जो देसी मॉम्स हैं, पाकिस्तानी मॉम्स हैं, यहाँ पे इंडियन मॉम्स हैं यूएस में, उनकी परवरिश वर्सेस जो अभी इंडिया या पाकिस्तान में जो मॉम्स थे उनमें क्या डिफरेंस है। तो इसका हमें काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग जवाब मिले और इसकी जो हमारा जो ये गिव अवे है उसकी विनर हैं यास्मीन जी, और मैं आपसे ये सारे जो है जवाब भी शेयर करूंगी आफ्टर दिस सॉन्ग। और जो मुझे पसंद आया वो ये था कि उन्होंने कहा कि अगर आप इंडिया में होते हो, इंडिया में अगर आपकी बचपन आपका बीता है तो जो है आपको बहुत डंडे पड़ते हैं। अगर आपने बात नहीं मानी अपनी मम्मी की, अपने पापा की, तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है, डंडे भी पड़ते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ बच्चे यूएस में करे तो उनको डर लग जाता है कि वो पुलिस बुला लेंगे। और कभी कभी तो बच्चे ये बोल भी देते हैं कि अगर ना ज़्यादा परेशान किया, मुझको कुछ फोर्स किया, तो मैं तो पुलिस बुला लूँगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, विच आई डेफिनेटली अग्री।

तो आज की हमारी लकी विनर है यास्मीन जी. यास्मीन जी, आपको मिला है ग्रॉसरी गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम द बिगेस्ट ग्रॉसरी स्टोर इन DFW, जो कि है लुविसविल टेक्सास में. इट इज देसी मंडी. तो आप बिल्कुल वहां जाएं और अपना ये गिफ्ट हैम्पर कलेक्ट करें और हमें टाइम दें 24 to 48 hours का, ताकि हम आपके डिटेल्स उस तक शेयर करें और हम बाकी लिसनर्स को भी और भी मजेदार गिव अवे के आंसर शेयर करेंगे आफ्टर दिस सॉन्ग. एंड इफ यू वॉन्ट टू शेयर और रिक्वेस्ट एनी सॉन्ग्स विथ मी, प्लीज कॉल मी एट 972-235-5555.

हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर शो विच इज आफ्टरनून अड्डा, और आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम। और अभी अभी हमने जो है एक गिव अवे किया था मदर्स डे स्पेशल पे, जिसमें हमने पूछा था कि देसी मॉम्स इन इंडिया और पाकिस्तान वर्सेस दी देसी मॉम्स इन यूएस और अमेरिका, तो क्या डिफरेंस होता है। और बहुत सारे कॉल्स आए, बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई उन्होंने। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि जो मॉम्स इंडिया में थी, जो हमारी मॉम्स थी, वो ज़्यादातर स्टे एट होम थी, वो बहुत ज़्यादा जो है घर के बाहर वाला काम नहीं करती थी, और वो सबके लिए, उनको पसंद आता था कि सबके लिए खाना बनाए और एवरीथिंग। लेकिन जो अब यूएस में जो मॉम्स हैं, उनको घर का भी काम करना पड़ रहा है, बाहर का भी काम करना पड़ रहा है, ग्रॉसरी भी लानी पड़ रही है, बच्चों को जो है ड्रॉप पिकअप और भी बहुत सारी चीज़ें जो उनको करना पड़ रहा है, और वो इंडिपेंडेंट हो गई हैं बिल्कुल, और ये बहुत खुशी की बात है। बट उसके साथ बहुत सारा वर्कलोड भी आ रहा है, तो अब ये तो खैर है ही, विथ ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जो मोस्ट इंटरेस्टिंग आंसर था वो ये था कि इंडियन मॉम्स सोचती नहीं थी डंडा वंडा करने से पहले, हम बच्चों को जो है डांटने वाटने से पहले, बट यहाँ पे तो बहुत सोचना पड़ता था, क्योंकि खुदा ना खास्ता कभी भी पुलिस का चक्कर भी लग सकता है अगर आपके बच्चे ने कहीं कंप्लेन कर दिया तो। थैंक यू सो मच एंड कीप लिसनिंग टू आवर शो।

हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, अपनी मॉम्स को ही देख लीजिए, वो कितने खूबसूरत है. खैर, यू आर लिसनिंग टू फनेशिया रेडियो एंड आई एम आरजे देसी गर्ल, ऑल्सो नोन एज आरजे सिम्मी. अगर आप H1B पे हैं, F1 पे हैं, L1 पे हैं, या किसी भी दूसरे नॉन इमिग्रेंट वीजा पे हैं, और आप प्लान कर रहे हैं कि आपको US परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इट, तो द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता कैन बी अ ग्रेट हेल्प टू यू. वो अटॉर्नी सीमा मेहता और उनकी जो एक्सपीरियंस टीम है, वो एक्सक्लूसिवली स्पेशलाइज करती हैं इमिग्रेशन लॉ में, इंक्लूडिंग EB-5, इन्वेस्टर वीजास, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीजास, PERM लेबर सर्टिफिकेशन एंड US सिटीजनशिप. तो अगर आपको इस पे और जानकारी चाहिए EB-5 इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम पे, तो उनका ईमेल है info@seemamehtalawfirm.com, और आप उनकी वेबसाइट पे जाएं और भी डिटेल्स लाएं, और आई थिंक शी विल बी अ ग्रेट गाइड एंड कंसल्टेंट फॉर एनी ऑफ योर रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट्स.

हां जी, वेलकम बैक. आप सुन रहे थे चले जैसे हवाए सनन सनन. आई मीन दिस आर सम ऑफ द मोस्ट एवरग्रीन सॉन्ग्स फ्रॉम द मूवी मैं हूं ना. और है ना, ये सब सॉन्ग सुनते ही खुद में अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है. मैं दीवानी दिल की रानी तो, बट फिर याद आता है कि नहीं नहीं मन मर्जियां नहीं कर सकते. खैर, अपने शो को आगे बढ़ाते हैं. इस सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगी कि इस वीक टॉप 5 सॉन्ग्स कौन से थे और हम उनको प्ले करेंगे वन बाय वन. तो जो 5th स्लॉट पे है वो है जाइए सजना सॉन्ग फ्रॉम धुरंधर द रिवेंज, जो कि गाया है जैस्मिन सैंडलास ने और शाश्वत सचदेव, सतेंद्र सरताज. और इस मूवी में रणबीर सिंह ने क्या एक्टिंग की है. तो आप भी सुनते रहिए, हमें इंजॉय कीजिए ये सॉन्ग. फिर मैं आपको बताऊंगी कि टॉप 4 में कौन है. ये है 5th नंबर पे और मोस्ट पॉपुलर 4 सॉन्ग्स और भी हैं.

तो आप सुन रहे थे जाइए सजना, जो कि टॉप 5 मोस्ट प्लेड सॉन्ग्स की लिस्ट में है ये वीक पे, ये 5th नंबर पे था। और जो 4th नंबर पे है वो है द सॉन्ग मजबूर बाय शहरयार रेहान एंड जोहा वसीम। इट्स अ वेरी यंग एंड रोमांटिक सॉन्ग, आई होप यू एंजॉय इट।

Hello and welcome back to my show. You are listening to Afternoon Adda with RJ Desi Girl, RJ Simmi. और अभी अभी हम बात कर रहे थे top 5 songs of the week की. And before we proceed कि जो है हम top 3 में जाएं, मैं आपको बताना चाहती हूँ Connecting America के बारे में, जिसकी help से आप अपने business expense को powerful income में बदल सकते हैं. जी हाँ, ये बहुत ही unique insurance based स्ट्रैटेजी डिजाइन करते हैं आपके बॉटम लाइन को बूस्ट करने के लिए. और सिर्फ इतना ही नहीं, ये होम ओनर्स को अपने मॉर्टगेज पे ऑफ करने में भी हेल्प करते हैं 10 साल या उससे भी कम टाइम में. तो देर किस बात की है, कॉल कीजिए जेम्स को एट 321-888-7345 पे, या फिर विजिट करें कनेक्टिंग अमेरिका financials.com पे और अपने डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस को इनकम में बदलने के लिए तैयार हो जाएं. और अब हम आगे सुनते हैं द टॉप थ्री, थर्ड नंबर पे जो हमारा सॉन्ग है, विच इज अगेन फ्रॉम धुरंधर, गहरा हुआ.

तो अब हम बढ़ते हैं अपने जो है टॉप 5 सॉन्ग्स ऑफ द वीक के पहले सॉन्ग की तरफ, और वो है बैरन। आजकल सोशल मीडिया वगैरह पे काफी ट्रेंड हो रहा है, आपने जरूर सुना होगा अगर आप सोशल मीडिया पे

0: हमारे बीच भी दूरियों का समय आ गया है। फिलहाल मेरे जाने का वक्त हो चुका है। मेरा शो होता है 12:30 से 2:30 बजे तक, तो मुझे मन तो नहीं कर रहा है, बट मुझे अब आपसे अलविदा लेना पड़ेगा। बट आप सुनते रहिए फन एशिया रेडियो। आप और फन एशिया रेडियो के दूसरे सेगमेंट्स भी सुन सकते हैं, जैसे कि अपना पंजाब, वनकम रेडियो, रेडियो कारवान, या फिर रेडियो संगम। और आज तो रेडियो संगम की फर्स्ट एनिवर्सरी भी है। जी हाँ, बिल्कुल इंजॉय करते रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और एक और बार रिमाइंड कर देती हूँ कि मदर्स डे आ रहा है, तो आई होप कि अपने अपनी मदर्स के लिए कुछ स्पेशल प्लान किया हो, और अगर नहीं किया हो तो कर लीजिए।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
3: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
2: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
3: वेट, व्हाट?
4: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
5: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
4: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
6: कहते हैं माँ के हाथ का खाना दुनिया में सबसे स्पेशल होता है, पर इस मदर्स डे लेट्स मेक थिंग्स स्पेशल फॉर हर। एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस वेयर शी एंजॉयज एंड वी सेलिब्रेट हर,
7: द फ्लेवर लाउंज वेयर एवरी डाइनिंग मोमेंट इज एन एक्सपीरियंस।
6: ऑन दिस मदर्स डे फ्लेवर लाउंज ला रहा है एक मीठा सा सरप्राइज, अ कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट फॉर एवरी मदर।
7: द फ्लेवर लाउंज एट प्रेस्टन रोड फ्रिस्को एट मलाबार गोल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर मदर्स हु मेक लाइफ फ्लेवरफुल।
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
2: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
9: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
2: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
10: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
11: इन प्लेनो।
10: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
12: क्या मतलब?
13: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
13: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
12: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
14: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
16: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
17: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
18: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
17: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
19: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
9: क्रेविंग डिलीशियस इंडो चाइनीज एंड नॉर्थ इंडियन फूड, रेड हॉट चिली पेपर इज द प्लेस टू गो। विद लोकेशंस इन फ्रिस्को, मकीनी, रिचर्डसन एंड नाउ आवर न्यूएस्ट लोकेशन इन एलन एट वाटर्स एंड 121। वेदर यू आर डाइनिंग इन, टेकिंग आउट और केटरिंग, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
11: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
20: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

A very warm welcome to the listeners of 104.9 FM Financial Radio. Sun rahe hain aap. Jee, main hoon Kiran aapke saath. This is your afternoon drive time with Sunehri Kiran. Monday to Friday, 2:30 baje se 5 baje tak main aapke saath maujood rehti hoon. Aap bhi mere saath rehte hain. 972-235-5555 ke through. Aaj hai jee Tuesday. Aap jante hain har roz aapke liye ek different flavor leke aati hoon. Kuch exciting taake flavors bhi badalte rahe. Gaano ke tarike aur gaano ki jo लैंग्वेज है वो भी बदलती रहे, मतलब फिगरेटिव लैंग्वेज जो है वो बदलती रहे, उनकी टोन्स, उनकी फील बदलती रहे. और आज क्या है जी ट्यूसडेज को आपके लिए लेकर आती हूँ बॉलीवुड स्पॉटलाइट. स्पॉटलाइट डालते हैं हम ऐसे स्टार पे जिन्होंने अपने काम से बॉलीवुड को दिए कुछ अमेजिंग गाने, चाहे वो एक्टर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों, डायरेक्टर्स हों, म्यूजिक डायरेक्टर्स हों, कंपोजर्स हों, लिरिसिस्ट हों, anyone, singers, anyone and everyone who has worked towards Bollywood's amazing music is who we celebrate right here and shed some light on them. This is Bollywood Spotlight right here on your afternoon drive time with Sunehri Kiran. And today's spotlight is on Varun Dhawan.

0: 1 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Heere moti maina chahu.
3: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy one get one free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy one get one free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
4: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
5: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids wear.
6: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
5: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
7: Beta, itni der se baithe ho, homework hua?
8: Mama, koshish to kar raha hu, par samajh mein nahi aa raha.
7: रोज का सेम प्रॉब्लम.
9: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे. लुमडी लर्निंग सेंटर, जहां बच्चे रटते नहीं समझते हैं. लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मकिनी आईएसडी स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है.
10: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 टू 13. कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रांग क्रिटिकल थिंकिंग.
9: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को.
11: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फनेशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ. Lumity Learning Center. Build mastery. Unlock potential.
12: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है. पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी. पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं. प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है. साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं. आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshigram.com. अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई.
13: Astrology readings for guidance only and results may vary.
14: Chicken banana. Chicken banana?
15: Bro, banana नहीं, banana. मतलब make the chicken right.
11: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
16: Immigration paperwork se pareshan? Ab tension chhodiye. EasyPetition.com ke saath USCIS petition file karna hua easy. आप खुद इंडिपेंडेंटली प्रिपेयर और फाइल कर सकते हैं पेटिशंस लाइक F1 या B1 चेंज ऑफ स्टेटस, F1 OPT, H4 विद EAD, I-485 और I-485J, N400 नेचुरलाइजेशन और 200 से भी ज्यादा पेटिशन टाइप्स और प्राइसिंग सिर्फ $30. तो आज ही जाइए easypetition.com पर. easypetition.com.
17: Drive a BMW, Mercedes or Audi? Then don't trust it with just anyone. German Motorworks in Richardson, expert European auto care, precision diagnostic and top tier service. All under one roof. From oil changes to brakes, they keep your drive flawless. Call 972-690-6623 today. German Motorworks, engineered for excellence.
18: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on FunAsia Radio.
19: डालस की धड़कन 104.9 FM, FunAsia Radio.
20: Don't touch that dial. Keep listening.

बॉलीवुड स्पॉटलाइट में हमने आज स्पॉटलाइट डाली है वरुण धवन पे, उन्हीं के ऊपर पिक्चराइज्ड कुछ ब्यूटीफुल गाने आपके लिए लाइंड अप है मेरे पास. सुन रहे हैं आप आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इफ यू आर लुकिंग टू लेवल अप योर टेक करियर, तो आपको बताती हूँ जी कि टेक सन सॉफ्ट इंक is hiring. Ji haan, they have multiple openings for Java engineers. Frisco, Texas mein located hain. Full-time jobs offer kar rahe hain Monday through Friday. Toh agar aap US mein authorized hain kaam karne ke liye and you're ready to take on exciting new projects, then this is an offer for you. Apna resume bhejiye. There are two ways of sending your resumes. Either you can email your resume or you can send them at a proper address. Toh email note kar lijiye to send your resume. That email ID is gautam@techsunsoft.com, which is gautam@techsunsoft.com. या फिर आप मेल कर सकते हैं अपना रेज्यूमे एट दिस मेलिंग एड्रेस 12800 वेस्टरिज बुलेवार्ड स्वीट 229 फ्रिस्को में लोकेटेड है. सो डू नॉट वेट. इफ यू आर लुकिंग फॉर जावा इंजीनियरिंग जॉब्स इन फ्रिस्को टेक्सास फुल टाइम रोल्स मंडे थ्रू फ्राइडे, देन टेक्सनसॉफ्ट इंक इज हायरिंग. वरुण धवन के बारे में क्या बताएं जी, 27 अप्रैल 1987 को करते हैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट. सो अभी अप्रैल का महीना गुजरा है, अभी इन्होंने लास्ट वीक में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. हिंदी फिल्मों में काम करते हैं, वन ऑफ द वेरी पॉपुलर एक्टर्स में शुमार किया जाता है वरुण धवन को. बहुत सारी मूवीज में नजर आए हैं, चाहे वो रोम कॉम मूवीज हों या थोड़ी सी एक्शन मूवीज हों. इनफैक्ट एक तो बहुत ही खतरनाक सी किस्म की मूवी उसमें नजर आए थे जिसका गाना था जीना जीना. देखिए क्या नाम था उस फिल्म का, नास्तिक बदलापुर. बदलापुर में नजर आए थे, जो कि बहुत ही डिफरेंट रोल था. एंड आई थॉट आई रियली लाइक्ड हिम इन बदलापुर. दैट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिंग जो उससे पहले वो फिल्में कर चुके थे. तो हम इसी तरह के चंद एक गाने आपके लिए वरुण धवन के लगाऊंगी. अभी तो मैंने आपको कुछ हैप्पी नंबर्स उनके सुनाए, एक बदलापुर से गाना लगाती हूँ आतिफ असलम की आवाज में. बहुत ही खूबसूरत गाना, आई एब्सोल्युटली लव दिस वन.

जी हाँ, बदलापुर से सुन रहे थे आप ये. अच्छा, वरुण धवन के करियर की ये अराउंड 5वीं मूवी थी. सबसे पहले वरुण धवन ने अपने करियर का आगाज किया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर. ही डायरेक्टेड करण जौहर इन द ही असिस्टेड करण जौहर इन मूवी माय नेम इज खान, जो कि 2010 में रिलीज हुई थी और करण जौहर उसके डायरेक्टर थे. तो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए उन्होंने इस मूवी में काम किया और उसके बाद ही वॉज कास्टेड एज अ हीरो इन करण्स मूवी ओनली विच वॉज रिलीज इन 2012 विच वॉज स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जिसका एक गाना मैंने अभी आपके लिए प्ले किया था. उसके बाद उनकी मूवी आई मैं तेरा हीरो और उसके बाद हम्टी शर्मा की दुल्हनिया एंड देन द फिफ्थ मूवी जो कि उनकी रिलीज हुई या एज अ हीरो चौथी मूवी रिलीज हुई वो बदलापुर थी. एंड आई थिंक बहुत अच्छा उन्होंने अपना ग्राफ चेंज किया क्योंकि स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक मुख्तलिफ किस्म की मूवी थी, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया और मैं तेरा हीरो एक कम्प्लीटली डिफरेंट जॉनर की मूवीज थी और बदलापुर में हमने एक बिल्कुल मुख्तलिफ वरुण धवन को देखा. आई रियली होप कि वरुण धवन इस तरह के काम ज़्यादा करें बिकॉज अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा टाइपकास्ट हो जाते हैं एक यंग चर्पी रोल में. तो लेट्स सी कि हमें और इस तरह की कैसी मूवियाँ देखने को मिलती हैं वरुण धवन की. फिलहाल मैं आपके लिए जो अगला गाना लगाने वाली हूँ दैट इज़ टेकन फ्रॉम द मूवी, कौन सी मूवी जी, दिस इज मैं तेरा हीरो. बहुत ही पॉपुलर हुआ था ये सॉन्ग शनिवार रात ही. लेकिन उससे पहले आपको बताऊँ कि अगर आपने घर जैसा खाना खाना है, गाने तो मैं आपको सुना रही हूँ पर घर जैसा खाना भी तो खाना होता है इंसान ने, कभी कभी दिल नहीं कर रहा होता घर में खाना पकाने का. बिल्कुल मैं अक्सर मेरे साथ तो होता है कभी कभी कि आज बिल्कुल दिल नहीं है, लेकिन बाजार से खाना तो खाना है, रेस्टोरेंट का खाना तो खाना है, लेकिन ऐसा कि जैसे घर जैसा जायका हो. और वो मिलेगा आपको तंदूरी फ्लेम पे. गार्लैंड में लोकेटेड है जी तमाम आपके नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स जैसे कि तंदूरी प्लैटर्स, रिच वेलवेटी करीज, हॉट फ्रेश नान्स, कबाब प्लैटर्स, जो कुछ भी आपको पसंद है वो सब आपको होम स्टाइल कुक्ड स्टाइल होता है यहाँ पे. तंदूरी फ्लेम लोकेटेड इन गार्लैंड. अपने नेक्स्ट घर जैसे खाने के लिए तंदूरी फ्लेम जाइए.

taken from the movie October. ये गाना आप सुन रहे थे. वरुण धवन और बनीता सांधु थे इस फिल्म में जी. थोड़ी सी मुख्तलिफ फिल्म थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई, लेकिन स्टोरी जो है वो अच्छी कैचिंग स्टोरी थी. एंड वरुण धवन एक्चुअली डिड जस्टिस टू द रोल एज वेल. अच्छा जी, आगे बढ़ रहे हैं कुछ वरुण धवन पे पिक्चराइज फिल्में और उनके कुछ आउटस्टैंडिंग गाने आपके लिए प्ले कर रही हूँ. उससे पहले आपको बताऊँ कि अगर आप किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या अनफॉर्चुनेटली देर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो ऐसी सिचुएशन कैन बी एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल. यू हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ थिंग्स अलॉन्ग विद इंश्योरेंस कंपनीज, पेपर वर्क, लीगैलिटीज, दिस एंड दैट, और इतना सारा निटिग्रिटीज होता है कि हम एज रेगुलर पीपल हमें बहुत सारी चीजों का तो पता ही नहीं होता. तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक ऐसे अटर्नी की जरूरत है जो आपकी तरफ से आपका केस फाइल करे. हु विल रिप्रेजेंट यू? एंड दैट अटर्नी इज अटर्नी उमर ख्वाजा. तो ना सिर्फ ये कि वो आपका केस फाइल करेंगे, दे विल हेल्प यू गेट द बेस्ट कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग अनटिल एंड अनलेस यू विन द केस. तो आपके लिए एक एब्सोल्युटली विन विन सिचुएशन है. चाहे आप किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हों या आपका कोई जानने वाला, आपके कोई लव्ड वन या फ्रेंड्स या फैमिली कोई ऐसी सिचुएशन से गुजर रही हो, तो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ इज गिव देम दिस नंबर. दैट फ्री कंसल्टेशन कॉल नंबर इज 469-300-5046, 469-300-5046, और विजिट द वेबसाइट विच इज attorneyomar.com, OMAR, attorneyomar.com. ये जो गाना मैं आपके लिए लगाने लगी हूँ, ये एक बहुत ही खूबसूरत गाने की रेंडिशन है. नया एक काइंड ऑफ, वो कहते हैं ना, नया तड़का लगा के ये गाना प्रेजेंट किया गया. इस मूवी में अरिजीत सिंह ने गाया फॉर आलिया भट्ट एंड वरुण धवन. दिस इज मैं तेनू समझावा की.

0: लैपटॉप, चार्जर, कॉफी, फोन, उफ, ऑफिस का चेकलिस्ट यार खत्म ही नहीं होता.
1: एग्जैक्टली. और ऊपर से व्हाट टू वेयर का स्ट्रेस अलग.
0: ओ गॉड, पहले आउटफिट, फिर उसके बाद उसके साथ क्या पहनना है.
1: हाँ, आई कीप दैट पाथ सिंपल.
0: कैसे?
1: ज्वेलरीज जो ऑफिस, डिनर, वीकेंड, हर दिन हर ओकेजन को सूट करे.
0: ओ, दैट काइंड ऑफ ज्वेलरी.
1: या कैरेट लेन काइंड.
2: Lightweight, real diamonds, your everyday fine jewelry. Made to be worn, not stored. Carat Lane, a Tata product. Now open in Frisco.
3: सब कुछ साफ रख सकते हो.
4: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती. कोई नहीं सोचता मेरे बारे में.
5: क्योंकि ये कौन बोला?
4: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पॉलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं. और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे. हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है. मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
1: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है. कॉल जीतू पटेल 972-877-2500.
6: Did you know Bawarchi Biryani's is the number one Indian restaurant chain in USA? It's true. With over a decade of experience and 50-plus locations across the country, Bawarchi Biryani's makes the best Hyderabadi Dum Biryanis and Andhra Pulaos. They also serve the finest North and South Indian cuisine. So why dine anywhere else?
7: Visit one of their DFW locations, Plano, Frisco, Irving or Richardson.
8: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी. सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
9: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी. जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी.
8: के टू ड्राइव मतलब?
9: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है. लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लव फील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस, सब के टू ड्राइव हैंडल करता है.
8: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
9: 100%
10: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी. विजिट k2drive.com और कॉल 214-814-0402. Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
11: Computer ji ka sawal ye hai, business owners ko loan lena mushkil kyun lagta hai? Option A, slow process. Option B, zyada paperwork. Option C, credit score ka concern. Ya option D, loan decline hone ka dar.
12: Main expert lifeline use karna chahunga.
11: Computer ji, SBA loan expert se connect kiya jaye.
1: SBA Loan Experts ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है. नो टैक्स returns needed to apply और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं. Results सिर्फ 10 मिनट में.
2: बिजनेस लोन options को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338. 817-786-3338. The SBA Loan Experts. फैसला क्लैरिटी के साथ.
1: कभी ऐसा लगता है कि decisions आप ले रहे हो पर results control में नहीं, करियर रुक सा गया है, रिश्तों में क्लैरिटी नहीं और फ्यूचर बस एक सवाल बनकर रह गया है. हर जगह आंसर्स ढूंढने से बेहतर है सही जगह समझना. कनेक्ट विद अनीता चुंद्रू एट द कॉलोनी टेक्सास. चार्ट रीडिंग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हवन सर्विसेज से मिले सही गाइडेंस. कॉन्टैक्ट 9453387670. ईमेल astro111city@gmail.com. अनीता चुंद्रू, your life with right direction.
2: Contact 945-338-7670. Email astro111city@gmail.com or visit taxi at 5200 Memorial Drive, Colony, Texas.
13: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6 0021 or Lee at 214-576-6439.
14: ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಅನ್ನು ಡ್ಯಾಲಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ NCR ಅಂತ ಟಾಪ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೂಫ್ ಕೆಳಗೆ. 200+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಕ 9th May and 10th May. ಸ್ಥಳ ಹಯಾತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ, ಫ್ರಿಸ್ಕೋ, ಡ್ಯಾಲಸ್. ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಾತ್ರಿ 8 ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್. ಮೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಅನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
15: अभी बजा आएगा ना भिड़ो.
16: पुन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे.
17: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फन एशिया 104.9 FM.

जी हाँ, एक बार फिर आपको वेलकम करती हूँ. सुन रहे हैं आप आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. दिस इज बॉलीवुड स्पॉटलाइट, और स्पॉटलाइट हमने आज डाली है वरुण धवन पे. कुछ उनके ऊपर पिक्चराइज्ड खूबसूरत गाने आपके लिए प्रेजेंट कर रही हूँ, और थैंक यू सो मच आप सबकी फोन कॉल्स का एंड फॉर पार्टिसिपेटिंग. आगे बढ़ते हुए अगला गाना आपके लिए प्ले करेंगे जी ABCD2 से. लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप चाहते हैं एक ऐसा देसी ग्रोसरी स्टोर जहां पे जाके आपकी तमाम देसी ग्रोसरी नीड्स पूरी हो जाएं, और आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स के चक्कर ना लगाने पड़े ना प्राइस को लेके और ना ही चीजों की क्वालिटी को लेके, तो वो जगह है देसी मंडी, द बिगेस्ट साउथ एशियन ग्रोसरी स्टोर इन टाउन, लोकेटेड इन लुइसविल टेक्सास. और जी अमेजिंग ऑफर्स होती हैं उनकी पास लगी हुई है उनकी ग्रोसरी के ऊपर. साथ ही साथ उनका एक मीट का सेक्शन है विच इज क्लीन, वेरी टाइडी एंड वेरी यू नो बहुत खूबसूरती से, मैं कहती हूँ, गोश्त काट के रखा हुआ होता है उन्होंने. लास्ट टाइम आई वॉज देयर आई रियली एंजॉयड शॉपिंग फॉर मीट ओवर देयर. सो जरूर जाइए. अगर आपकी पूजा की रिक्वायरमेंट्स है, पूजा हो रही है आपके घर में या आपको पूजा की सामग्री चाहिए, तो उनका एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज पूजा का सेक्शन है जहां से आप अपने तमाम पूजा की एक्सेसरीज खरीद सकते हैं. इसके साथ जब आप शॉपिंग करके कंप्लीटली थक जाते हैं तो भूख लगती है, भूख लगने के लिए आपको कहीं और नहीं जाना, क्योंकि देसी मंडी का अपना रेस्टोरेंट है जो आपको ब्रिलियंट डिशेज सर्व करता है. और आजकल तो उनके ऊपर डील लगी हुई है. क्या डील है जी? बोगो की, यानी कि बाय वन गेट वन एब्सोल्युटली फ्री फ्री फ्री. तो सबसे पहले तो ये कि मंडे टू थर्सडे डील चल रही है 5 बजे शाम से रात 9 बजे तक. तो ये 4 घंटे डील का टाइम होता है जिसमें बोगो लगा होता है. मंडे और वेंसडे को अगर आप जाएंगे तो आपको बाय वन गेट वन फ्री मिलेगा बिरयानी नूडल्स और फ्राइड राइस पे. और अगर आप जाएंगे ट्यूजडे और थर्सडे को तो आपको मिलेगा बाय वन गेट वन ऑन डोसाज एंड चाट्स. मिक्स एंड मैच अलाउड नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशंस को अप्लाइड हैं, लेकिन आप जरूर जाइए, विजिट कीजिए देसी मंडी को. दिस इज ट्रूली द बिगेस्ट देसी स्टोर इन टाउन. यू आर गोइंग टू रियली एंजॉय शॉपिंग एज वेल एज ईटिंग, और सब कुछ आपको मिल जाएगा एक छत के नीचे, लोकेटेड इन लुइसविल टेक्सास.

0: फिल्म एबीसीडी 2 से सुन रहे थे आप ये गाना श्रद्धा कपूर और वरुण धवन पे पिक्चराइज्ड दिस मूवी एंड सम ब्रिलियंट सॉन्ग्स एज वेल एज डांसेस. ऑल्दो मुझे एबीसीडी 1 जो है वो और भी ज़्यादा अच्छी लगी थी. आई थिंक स्टोरी बड़ी यूनिक थी एबीसीडी 1 की और स्पेशली उसके अंदर सारे ही डांसर्स थे. सलमान थे उसके अंदर, धर्मेश थे और देखिए उन फीमेल लीड का मुझे नाम भूल गया है, वो जो बिग बॉस में भी आई थी और शी वॉज अ ब्रिलियंट डांसर. तो चूंकि सारे डांसर्स थे तो एवरीथिंग वॉज सो नेचुरल इन दैट मूवी. ऑल्दो एबीसीडी 2 वॉज अ वेरी पॉपुलर मूवी एंड एवरीबडी रियली लव्ड इट. अच्छा, अब मैं लेके आई हूँ आपके लिए द कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण, ब्रॉट टू यू बाय फन पिज्जा किचन. जी हाँ, पिज्जा खाना है आपने लेकिन आपको देसी ट्विस्ट चाहिए उस पिज्जा में, तो फिर फन पिज्जा किचन से बेटर जगह नहीं मिल सकती आपको, पिज्जा विद देसी ट्विस्ट. तो आप वेजिटेरियन हो या आप नॉन वेज हो, इट रियली डजंट मैटर बिकॉज फन पिज्जा किचन हैज अ ब्रिलियंट स्लाइस वेटिंग फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड योर पैलेट. सो फन पिज्जा किचन .com पे लॉग ऑन कीजिए और चेकआउट कीजिए कि आप कौन सा पिज्जा उनका खाना पसंद करते हैं. और ये मौका है आपके पास $10 का गिफ्ट कार्ड जीतने का. ये बताती चलूँ आपको कि अगर आपने पिछले महीने में ये गिफ्ट कार्ड फन एशिया के किसी शो पे जीता है तो एक महीने का वेट कर लीजिए, यू कैन ओनली बी अ विनर वंस अ मंथ. और दूसरा ये कि यू विल, इफ यू विन विच आई होप यू डू, तो यू विल हैव टू गो टू फन पिज्जा किचन फ्रिस्को एंड कलेक्ट द गिफ्ट कार्ड बाय हैंड. तो अगर आप वो ट्रिप लगा सकते हैं तो फिर आप जरूर कॉल कीजिए फन पिज्जा किचन का ये. और वैसे तो चूंकि ये कॉन्वर्सेशन कॉर्नर है तो कॉल तो जरूर ही कीजिए बिकॉज ये मौका होता है मेरा और आपका एक क्वाइट कॉर्नर में कॉन्वर्स करने का. दैट इज वाई दिस इज कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण, ब्रॉट टू यू बाय राइट नाउ एट फन पिज्जा किचन. अच्छा, अब आपसे सवाल, बात हम क्या बात करें, कुछ फिल्मों की बात हो रही है, ऑब्वियसली हीरो हीरोइंस की बात हो रही है और फिल्में हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. हर दौर में हर इंसान की फिल्म जिंदगी में एंटरटेनमेंट इज़ ऑलवेज बिन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ. चाहे वो पुराना ज़माना हो तो लोग थिएटर्स जाया करते थे, नया ज़माना है तो लोगों ने फिल्में देखनी शुरू कर दी और ड्रामे फिल्में यही हम सब की यू नो एंटरटेनमेंट का जरिया है. तो आप बताइए कि आज तक Who had the best on-screen chemistry ever? आपके नज़दीक कौन से वो हीरो हीरोइन हैं जिनकी केमिस्ट्री आपको बेहतरीन लगती थी टीवी के ऊपर? चाहे वैसे हम फिल्मों की बात करें तो फिल्मों की बात कर लेते हैं, फिल्मों के हिसाब से बेहतरीन केमिस्ट्री आपको किसकी लगती है? 9722355555 है स्टूडियो का नंबर, फ़ोन उठाइए, कॉल मिलाइए कॉन्वर्सेशन कॉर्नर में, मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिए. यू हैव टू शेयर विद मी हु डू यू थिंक हैज़ द बेस्ट ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ever ever in Bollywood. Fun Asia Radio, you're live on air. Apna naam bataiye.
1: Hi, this is Gauravi.
0: Hi Gauravi, how are you doing?
1: Very well, thank you. Thank you for a lovely show.
0: Thank you Gauravi, thank you so much. Bataiye, who do you think Gauravi has the best on-screen chemistry ever?
1: I mean, अभी के लोगों में या
0: आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आपको जो पिक करना है अभी कर लें या तभी कर लें, जैसे भी करें.
1: So I think मेरे लिए there are three couples that I would like to say actually.
0: Okay.
1: राजेश खन्ना एंड मुमताज.
0: राजेश खन्ना एंड मुमताज. Okay.
1: Yes. अमिताभ एंड रेखा. And आमिर खान एंड जूही चावला.
0: आमिर एंड जूही इज वेरी इंटरेस्टिंग. यस यस फॉर श्योर. अच्छा,
1: इनिशियली वो लोग क्या आते थे, लाइक आई मीन ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम कायमत से कायमत तक मेरा ही प्यार की.
0: अच्छा मुझे ये बताइए कि आप जब केमिस्ट्री को जज कर रही होती हैं तो व्हाट इज इट दैट यू नो हैज टू गो बिटवीन द लीड कपल फॉर यू टू फील द केमिस्ट्री?
1: That's a good question. मैंने सोचा नहीं था बट अब मैं सोच रही हूँ. I think that you know जो you should feel that there is electricity between them. You should get that feeling.
0: Right.
1: कि हाँ इसे there is that sparks are flying.
0: Yeah. ठीक है जी, मतलब ज़्यादा हुआ तो आग पकड़ लेगा मामला. ठीक है. ठीक है गौरवी, दैट इज अमेजिंग, थैंक यू सो मच हमें बताने के लिए. सुनते रहिए, मैं अभी विनर अनाउंस करती हूँ राइट आफ्टर दिस. फन एशिया रेडियो, यू आर लाइव इन एयर, व्हाट इज योर नेम?
2: हाय, आई एम नंदिनी.
0: हाय नंदिनी, हाउ आर यू डूइंग?
2: आई एम डूइंग वेल, थैंक यू.
0: यू आर वेलकम. बताइए नंदिनी, आपके नजदीक बेस्ट ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री किसकी रही है? चाहे आजकल के बताइए, चाहे पुराने बताइए, जो आपका दिल करे.
2: सो द फर्स्ट थिंग इज शाहरुख खान एंड काजोल. as our parents thought it would be Dharmendra and Hema Malini.
0: Ye baat theek hai.
2: So those two are all-time favorites.
0: Right, right. अच्छा तो शाहरुख खान और काजोल की आपको कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है?
2: डीडीएल से.
0: राइट एंड कुछ कुछ होता है ऑफ कोर्स. ठीक है जी, बिल्कुल सही. नंदिनी थैंक यू सो मच बताने के लिए. सुनते रहिए आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर इन अ बिट. फनीशर रेडियो योर लाइव इन एयर. अपना नाम बताइए.
3: कोकिला राणा.
0: कोकिला जी. कोकिला जी बताइए, व्हिच हु डू यू थिंक हैज द बेस्ट केमिस्ट्री एवर?
3: राजेश खन्ना एंड शर्मिला टैगोर.
0: लवली. राजेश एंड शर्मिला जी, दैट इज ग्रेट. आपको क्या अच्छा लगता था उनका, मतलब हाउ डू यू फील लाइक दे हैव द बेस्ट केमिस्ट्री?
3: द स्टोरी, एक्शन, एवरीथिंग रियली गुड फॉर द मूवी, नो?
0: या एंड सम ब्रिलियंट
3: सॉन्ग्स, गुड एक्टिंग.
0: जी ठीक है, बिल्कुल सही. योगिला जी थैंक यू सो मच. सुनते रहिए, मैं अभी विन अनाउंस करती हूँ. ऑलराइट जी, यू अट्यून्ड इनटू कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण, ब्रॉट टू यू बाय फन पिज्जा किचन. फनीशर रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. व्हाट इज योर नेम?
4: हाय, माय नेम इज कमलेश खेरा, दे कॉल मी केके.
0: ऑलराइट कमलेश, बताइए हु डू यू थिंक हैज द बेस्ट केमिस्ट्री?
4: आई वुड से कंपलीटली.
0: कौन, दोबारा बोलिए.
4: धर्मेंद्र एंड हेमा मालिनी. धर्म धर्म एंड द ब्यूटीफुल हेमा मालिनी.
0: बिल्कुल सही जी, आपने बिल्कुल सही कहा. ये बताइए कि आपको इनकी मूवीज में जो आप केमिस्ट्री फील करते हैं, क्या चीज आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी इस लीड कपल में?
4: द करिश्मा एंड धर्म, यू नो दे यूज्ड टू कॉल हिम धर्म धर्म. एंड हेमा मालिनी वाज लाइक अ रियल साउथ इंडियन ब्यूटी, यू नो.
0: यस.
4: The classical Indian beauty, you can say.
0: Yes, for sure. All right, lovely. Thank you so much, Kamlesh ji, for connecting. Sunte rahiye, main abhi vir announce karti hoon right after this. All right, ji, sawal aapse pucha hai maine ki on screen best aapka pasand ka pair kaun tha? Bahut sare maze maze ke jawab aa rahe hain. Dharmendra ji aur Hema Malini ne is waqt baazi mari hui hai with lots of likes. Fanisha Radio, you're live in air. What is your name?
5: Hello.
0: Hi, what is your name?
5: Sabha.
0: जी सबा जी बताइए, आपके नजदीक बेहतरीन ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री किसके दरमियान थी?
5: रेखा अमिताभ एंड अनिल कपूर सिद्धि.
0: रेखा अनिल कपूर सिद्धि, ये आपने बिल्कुल डिफरेंट जवाब दिया. अब तक किसी ने नहीं कहा कि आपको अनिल कपूर और श्रीदेवी की केमिस्ट्री में क्या, मतलब चीज आपको अट्रैक्ट करती थी उनके पेयर में?
5: उनकी मतलब दोनों की, एक तो उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, दोनों अपने आपको रखते थे, दोनों साथ बहुत अच्छे लगते थे, स्पेशली लव की मूवी में जब दोनों साथ आए.
0: कौन सी मूवी में आपको बहुत अच्छे लगे? अच्छा अच्छा, चलिए दैट इज अमेजिंग. आपने बड़ा अच्छा हमें ये डिफरेंट एक पेयर बताया है, अनिल कपूर और श्रीदेवी का. थैंक यू सो मच सबा. सुनते रहिए, आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर इन अ बिट. फनीशर रेडियो, यू आर लाइव इन एयर. व्हाट इज योर नेम?
6: आपने बड़ा अच्छा हमें ये डिफरेंट हेलो पेयर.
0: रेडियो की आवाज प्लीज कम कर दें ताकि मुझे मेरी आवाज ना सुनाई दे.
6: सलमान खान एंड माधुरी दीक्षित.
0: मैम, यू विल हैव टू टर्न द रेडियो वॉल्यूम डाउन सो आई कैन लिसन टू यू, अदरवाइज आई विल हैव टू ड्रॉप द कॉल.
6: ओके, द माधुरी दीक्षित एंड सलमान खान, हम आपके हैं कौन में. उन लोगों ने बहुत अच्छा किया परिवार का.
0: सलमान एंड माधुरी, आप अपना नाम बताइए दोबारा.
6: पुष्पा पटेल.
0: पुष्पा
6: पटेल.
0: ऑल राइट, पुष्पा पटेल. हाँ जी पुष्पा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग हमें पेयरिंग बताई है सलमान और माधुरी की. बहुत कम लोग जो है इस पेयरिंग का जिक्र करते हैं. सो इज हम आपके हैं कौन, द ओनली फिल्म दैट यू रियली लाइक्ड अबाउट लाइक्ड ऑफ?
6: नो, आई लाइक्ड दैट ऑल माधुरी दीक्षित एंड सलमान खान की मूवी.
0: राइट,
6: पर दे रियली गुड डूइंग गुड जॉब.
0: यस,
6: एंड प्लस हेमा मालिनी एंड धर्मेंद्र
0: जी.
6: Shole.
0: Absolutely.
6: Yeah. Good movie for that one.
0: Yes, for sure. All right, Pushpa, thank you so much. Two wonderful pairs that you have discussed with us. Please keep listening. I'll announce the winner in a bit. So, आप लोग सुनते रहिए प्लीज. अभी रेडियो से स्विच ऑफ मत कीजिएगा, कहीं जाइएगा मत. मुझे विनर अनाउंस करना है अभी. फनीशर रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. व्हाट इज योर नेम?
7: माय नेम इज सोनाली.
0: सोनाली जी, सोनाली बताइए, हु इज योर फेवरेट लीड पेयर, द बेस्ट केमिस्ट्री यू फील?
7: मुझे अमिताभ एंड हेमा मालिनी की अच्छी लगी थी, स्पेशली इन बागबान.
0: हाँ, ये आपने सही बात बताई,
7: वन ऑफ द माइंड ब्लोइंग
0: जी
7: Then I like Shah Rukh Khan and Kajol.
0: Hmm.
7: And Ajay Devgan and Kajol.
0: Both Ajay and Kajol.
7: Also looks pretty good together.
0: जी अच्छा, आपने हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन जी की बात की, आपने उनकी सत्ते पे सत्ता देखी है?
7: हाँ मैंने देखी, एंड एक्चुअली दैट वाज लाइक यू नो बिट ऑफ अ स्पाइसी वन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, एंड बागवान वाज लाइक इन अ डिफरेंट लेवल.
0: या बागवान, वो तो बिल्कुल मतलब दे वर इन अ यू नो पेरेंट्स रोल, और वो जब पेरेंट्स बन जाता है इंसान तो फिर वो मियां भी एक हो जाते हैं, बच्चे अलग हो जाते हैं, इस तरह की सिचुएशन बन जाती है.
7: लाइक द आइडियल वन, राइट? कि प्यार ऐसा ही होना चाहिए एज यू ग्रो.
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल. और स्पेशली जब बच्चे बड़े हो जाएं तो मियां बीवी को और ज्यादा एक साथ आ जाना चाहिए, बिकॉज दे रियली नीड ईच अदर सपोर्ट देन. For sure. Sonali, thank you for your call. Please keep listening. I'll announce the winner in a bit. Fun Asia Radio, you are live on air. Apna naam bataiye.
8: Hi, Anil this side. How are you?
0: Very good, Anil. How are you doing?
8: I am doing great. I'm not in for winning anything, but I think Jackie Shroff and Meenakshi Seshadri was the best pair, and in the movie Hero was that I was referring to. But they had done a lot of good movies together, but they have a little great understanding by doing any movies, actually.
0: I really, really agree with you. I didn't think about it, but Meenakshi aur Jackie Shroff ki sari hi filmein badi kamal ki hua karti thi, aur aap sahi keh rahe hain, their chemistry was always bang on.
8: Yes,
0: wonderful. Anil, thank you so much for sharing your favorite pair. Please sunte rahiye, main abhi winner announce karti hoon. Fun Asia Radio, you're live on air. What is your name?
9: Hey, Kiran, this is Pallavi.
0: Hi, Pallavi. How are you doing?
9: Doing good, how are you?
0: Very good, thank you for asking. Bataiye Palvi, what's your favorite jodi?
9: I have couple in my mind.
0: Uh-huh.
9: So first one, it's Amitabh Bachchan and Rekha. Of course, it's Silsila.
0: Right.
9: Then I would say Shah Rukh Khan and Priti Zinta in Veer Zara.
0: Right.
9: And who can forget Anil Kapoor and Madhuri Dixit?
0: Oh, of course. Anil and Madhuri, yes. They were always fire. When they were together, there was fire striking everywhere. That's for sure.
9: Exactly.
0: And especially, I loved them in Beta. I thought they were absolutely fiery in Beta. एक गाने के साथ मैं वापस आती हूँ और आपको विनर अनाउंस करती हूँ. कौन है विनर? ये लास्ट कॉल ले रही हूँ जी, लास्ट कॉल ऑफ कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण, फन एशिया रेडियो. अपना नाम बताइए.
10: अमित. माय नेम इज अमित.
0: जी अमित, बताइए आपका पसंदीदा पेयर कौन सा है?
10: मेरा पसंदीदा ऑन स्क्रीन पेयर अक्षय कुमार इन कैटरीना कैफ, स्पेशली विद टू मूवीज दैट वाज डीप रूटेड टू द कल्चर एंड ऑल लाइक लव एंड एवरीथिंग वाज नमस्ते लंदन वाज वन ऑफ इट. उसमें अच्छी तरह बताया हुआ है कि ईस्ट एंड वेस्ट एंड हाउ आवर कल्चर एट द एंड एंड ऑल्सो

0: Akshay Kumar and Katrina Kaif, especially with two movies that was deep rooted to the culture and all like love and everything was Namaste London was one of it. Usme achhi tarah bataya hua hai ke East and West and how our culture at the end. And also unke hi pair ki dusri movie Singh Is King that is like really resonating.
1: बिल्कुल सही. और ये वो टाइम था जब अक्षय और जो कैटरीना है वो बहुत सारी फिल्मों में एक साथ आए थे. मेरे ख्याल 6-7 फिल्में इन्होंने बैक टू बैक एक साथ की थी और सारी ही सुपरहिट फिल्में थी. सो थैंक यू अमित फॉर शेयरिंग योर व्यू. सुनते रहिए, मैं भी अनाउंस करती हूँ राइट आफ्टर दिस.

0: जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी, पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस।
1: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
2: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
3: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
2: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
3: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
4: घर की याद नहीं आई तुझे? जैसे
5: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
6: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
5: सच में बिल्कुल घर जैसा।
6: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
7: 3 minutes. That's how long it takes to sign up with Bezit. They challenge your property tax appraisal, build the case, go to the hearing. You just wait for the result. 89% of customers get a reduction. Average savings over $1,100. Collin and Denton County. May 15th is your last day this year. Bezit.co.
8: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
9: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, बट तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
8: कैसे?
9: पेज 3 ईटरी?
8: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
9: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours and the food crafted to suit every craving, every appetite.
8: मतलब great food, great drinks and great company, यानी कि मैं।
10: Page 3 ईटरी, eat, sip, gossip, repeat.
11: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
12: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
11: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
12: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
13: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है, क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
14: Goodness is a beautiful thing, and good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadaqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 non-profit organization.
15: कितने आदमी थे?
16: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।
17: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

वरुण धवन पे हमने डाली है स्पॉटलाइट राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. कुछ खूबसूरत गाने वरुण धवन की फिल्मों से आपके लिए प्ले कर रही हूँ. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी राइट हियर ऑन 104.9 एफएम फाइनेंशियल रेडियो. आई एम हियर विद यू टिल 5 पीएम. आप भी मेरे साथ हैं 9722355555 के थ्रू. तो जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अगर आप सोच रहे हैं टू प्रिपेयर योर USCIS पिटिशन बाय योरसेल्फ लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरू करना है प्रोसेस, तो चाहे H4 EAD एक्सटेंशन हो या F1 OPT एप्लीकेशन हो या आप ग्रीन कार्ड पेटिशन फाइल करना चाहते हो अपनी फैमिली की ऑल बाय योरसेल्फ, यू कैन डू दैट थ्रू easypetition.com. जी हाँ, यू कैन प्रिपेयर योर एप्लीकेशन योरसेल्फ विद स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस. easypetition.com आपके लिए वो प्लेटफॉर्म है जो चीजों को बहुत आसान और क्लियर करके प्रेजेंट करता है. आप लॉग इन कीजिए easypetition.com पे और देखिए कि हाउ कन्वीनियंट एंड ईजी द वेबसाइट इज एंड नेविगेशन इज एब्सोल्युटली अ ब्रीज. बहुत आसानी से आप नेविगेट करेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत क्लियर वेबसाइट डिजाइन की गई है आपकी सहूलत के लिए. EAZY easypetition.com. और यही नहीं, अगर आपकी जॉब लूज हो गई है वाइल यू आर ऑन H1B और आपको चेंज ऑफ स्टेटस फाइल करना है तो वो भी easypetition.com के थ्रू हो सकता है. सिंपल गाइडेड एंड डिजाइंड फॉर इमिग्रेंट्स हु वांट टू फाइल देयर केसेस, प्रिपेयर देयर एप्लीकेशंस कॉन्फिडेंटली एज वेल एज कीप कंट्रोल ऑफ देयर एप्लीकेशंस, नीड टू गो टू easypetition.com. EAZY easypetition.com. And while you are checking out, do not forget to use the promo code FUNASIA, FUNASIA, to get your $30 credit. So that is easypetition.com for you. And while I play the next song, which is one of my favorites from his movie, Varun Dhawan's movie, I must tell you the views and opinions expressed in these live announcements as well as the interviews that we do here on our shows are paid advertisements and does not necessarily represent the official view of the radio station nor the RJ.

और जी कलंक फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना, और बॉलीवुड स्पॉटलाइट में वरुण धवन के गाने आपके लिए प्ले कर रही हूँ। और आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं जी कि फन एशिया रेडियो का जो सिस्टर रेडियो है, विच इज रेडियो संगम, विच आप सुनते हैं उसे 104.9 FM HD4 पे, टर्न्स वन टुडे। जी हाँ, आज पहली एनिवर्सरी है रेडियो संगम की, और रेडियो संगम सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, इट इज अ ग्लोबल सेंसेशन, फास्टेस्ट ग्रोइंग, मोस्ट लव्ड तेलुगु रेडियो है जी ये रेडियो संगम। तो जरूर इफ यू लाइक द लैंग्वेज एंड जो भी ना भी आपको समझ आती हो, तो आप वाइब्स के लिए जरूर ट्यून इन कीजिए, प्लेइंग ऑन 104.9 FM HD4, द सिस्टर रेडियो ऑफ फन एशिया रेडियो। सो रेडियो संगम सेलिब्रेट्स इट्स फर्स्ट एनिवर्सरी टुडे, वी आर विशिंग Radio Sangam a very happy birthday.

जी हाँ, फिल्म तो थी दिलवाले, जिसमें हमें नजर आए वरुण धवन, कृति सेनन और ऑफ कोर्स शाहरुख खान और काजोल. सातवीं फिल्म थी शाहरुख और काजोल की एक साथ, और काफी सालों बाद हमें ये दोनों दोबारा से एक फिल्म में नजर आए. और आई काइंड ऑफ लाइक्ड द मूवी. सॉन्ग्स तो खैर अच्छे थे ही, लेकिन मूवी भी इतनी खराब नहीं थी, मजे की फिल्म थी. अगर आपने नहीं देखी तो जरूर चेकआउट कीजिए. अच्छा जी, इसी तरह आपके लिए गाने प्ले हो रहे हैं, वरुण धवन के गाने प्ले कर रही हूँ. और बताऊँ आपको कि वरुण धवन को कुछ फिल्मों के लिए काफी अप्रिसिएशन मिली, डिफरेंट अवार्ड्स मिले, चाहे वो फिल्म फेयर की तरफ से हों या स्क्रीन अवार्ड्स हों या जी सिने अवार्ड्स हों या फिर स्टार गिल्ड अवार्ड्स हों. तो सबसे पहला जो उनकी मूवी आई थी एज अ डेप्यूटेंट, विच वॉज स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसके लिए वरुण धवन वन अ लॉट ऑफ नॉमिनेशंस फ्रॉम फिल्म फेयर, स्क्रीन अवार्ड्स, जी सिने अवार्ड्स, अबाउट द मोस्ट प्रॉमिसिंग मेल एक्टर या डेब्यूटेंट के लिए. और उसी के साथ उसके बाद जो 2015 में उनकी फिल्म आई हम्प्टी शर्मा की धुलनिया, उसके लिए भी उन्होंने काफ़ी सारी नॉमिनेशंस पाई फॉर बेस्ट एक्टर. और मैं तेरा हीरो के लिए भी बेस्ट एक्टर की नॉमिनेशंस मिली उनको. और बदलापुर जो मूवी आई थी, जिसका गाना भी थोड़ी देर पहले मैंने आपके लिए जीना जीना प्ले किया था, उस मूवी के लिए बिग स्टार एंटरटेनमेंट की तरफ से उन्होंने जीता बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन पाई फॉर बेस्ट एक्टर पॉपुलर एज वेल एज क्रिटिक्स. इस गाने के बाद जब वापस आऊँगी तो आपको मजीद बताऊंगी कि और कौन कौन सी फिल्मों के लिए वरुण धवन ने पाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई नॉमिनेशन. इफ नॉट फिल्म फेयर, दैट देर आर सो मेनी अदर अवार्ड फंक्शन दैट हैपन, वहां पे नॉमिनेशंस मिली. ये गाना हम प्ले कर रहे हैं खास मलिक साहब के लिए. मलिक साहब, एंजॉय.

0: जुड़वा टू से सुन रहे थे आप ये गाना. हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आकर अभी आधा घंटा मेरा और आपका एक साथ. आई एम हियर टिल 5 PM. स्टे ट्यून्ड.
1: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
2: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
1: सच या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
2: वेट, व्हाट?
3: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
4: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
3: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
10: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकौड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
3: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
11: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी. सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
12: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी. जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी.
11: K2 ड्राइव मतलब
12: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है. लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस, सब K2 ड्राइव हैंडल करता है.
11: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
12: 100%
13: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी. विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402. Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
12: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
14: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
12: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
14: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
12: ये क्या होता?
14: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
15: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
16: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
17: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
16: Kya matlab?
17: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
16: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
17: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
16: Ab to karna hi padega, madam.
18: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
3: कहते हैं माँ के हाथ का खाना दुनिया में सबसे स्पेशल होता है, पर इस मदर्स डे लेट्स मेक थिंग्स स्पेशल फॉर हर. एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस वेयर शी एंजॉयज एंड वी सेलिब्रेट हर.
15: द फ्लेवर लाउंज, वेयर एवरी डाइनिंग मोमेंट इज एन एक्सपीरियंस.
3: ऑन दिस मदर्स डे फ्लेवर लाउंज ला रहा है एक मीठा सा सरप्राइज, अ कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट फॉर एवरी मदर.
15: द फ्लेवर लाउंज एट प्रेस्टन रोड फ्रिस्को एट मलाबार गोल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर मदर्स हु मेक लाइफ फ्लेवरफुल.
19: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
20: Information shared here is for for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth at mytimeequity.com for professional advice.
21: भाई ऑफिस लॉग आउट हो जाता है पर दिमाग कभी लॉग आउट ही नहीं होता.
22: Because it's never trained to pause. That's why meditation matters.
21: कितने apps try किए यार but
22: then don't try alone. Experience it at Osho Transformation Retreat.
23: May 14th to May 17th, a 3-day immersive journey to release stress, clear emotional blocks and reconnect with your inner self through powerful meditation techniques guided by experienced facilitators. Register now at oshouniversal.org. Pause the noise. Meet yourself.
24: कितने आदमी थे?
25: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है.

और इसी के साथ इट इज टाइम टू गिव यू द करेंसी अपडेट कि यूएस डॉलर आज कहाँ स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड. तो ट्यूजडे मे द 5th 4:47 पीएम इन द स्टूडियो सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम एंड अकॉर्डिंग टू xrates.com यूरो आज ट्रेड कर रहा है 0.85 पे जबकि ब्रिटिश पाउंड इज ट्रेडिंग एट 0.73. इंडियन रुपी 95.12 पे ट्रेड कर रहा है जबकि पाकिस्तानी रुपी इज ट्रेडिंग एट 278.71. नेपालीज रुपी 152.27 नेपालीज रुपी आर ट्रेडिंग फॉर वन यूएस डॉलर जबकि 122.75 बांग्लादेशी टकर्स आर ट्रेडिंग फॉर वन यूएस डॉलर. और इसी के साथ गोल्ड प्राइस अपडेट. अकॉर्डिंग टू goldprice.org इस वक्त है जी एक आउंस सोने की कीमत $4,557.13 जबकि एक ग्राम सोने की कीमत राइट नाउ इज $146.52. कल की निस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में आज $1.07 का इजाफा हुआ यानी कि $1.07 जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $33.10 का इजाफा देखने को मिला. बट दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट आई हैव फॉर यू वेयर योर फाइनेंस मैटर्स राइट हियर ऑन सुनहरी किरण.

ऑलमोस्ट टाइम टू से माय बाइस टू यू, लेकिन उससे पहले आपको ट्रैफिक की अपडेट देती चलूं जी. दो तीन कोलिजन्स हमें नज़र आ रहे हैं इस वक्त रोड्स पे. सबसे पहले वी कैन सी अ कोलिजन एट 635 टुवर्ड्स सेंटरविल रोड साउथ बाउंड, जिसकी वजह से फोर लेन्स वर ब्लॉक्ड. ऑल्दो क्लियरिंग अप शुरू हो गई है. द इंसिडेंट वॉज रिपोर्टेड अबाउट एन आवर एंड 20 मिनट्स अवे, सो द क्लियरिंग अप इज ऑलमोस्ट डन. सो होपफुली अब आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक का बैकअप नहीं मिलेगा. हाउ एवर द सिवेरिटी ऑफ द इंसिडेंट वॉज रिपोर्टेड क्वाइट हाई, सो प्लीज बी विजिलेंट इफ यू आर रीचिंग देयर. एक और कोलिजन इज रिपोर्टेड एट IH 30 टूवर्ड्स पीक स्ट्रीट east bound, jiski wajah se three lanes are blocked. The event is reported about 25-30 minutes ago, so there is a lot of backup right now at this spot, and the severity of this incident is reported high as well. Another incident that is reported right about aap keh lijiye 8 minutes ago is at SH 114 at Belt Line Road westbound, jiski wajah se one lane is blocked, that is closer to the exit lane. The severity of this incident is reported high as well. Aap jante hain traffic ka time hai, rush hour hai, to ek bhi lane blocked ho to lots of pile up hame dekhne ko milta hai. So these are the three incidents that I can see on the roads of Dallas. Other than that, everything seems pretty clear. Aur isi ke sath main le rahi hu ab aapse vida. Thank you so much for connecting with me this afternoon. Kal ek bar phir hazir hungi afternoon drive time with Sunehri Kiran leke 2:30 PM to 5 PM. और आप जानते हैं हर रोज लेकर आती हूँ आपके लिए एक डिफरेंट फ्लेवर. कल का फ्लेवर इज पॉप फ्रीक्वेंसी. आई एम गोइंग टू प्ले सम पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक फॉर यू, सम आउटस्टैंडिंग ड्रामाज हम बताएंगे. मैं हमेशा आपको हफ्ते में बताती हूँ कि कौन से बेस्ट ड्रामाज रहे इस हफ्ते के. सो वी गोइंग टू टॉक अबाउट दोज ड्रामाज, द टॉप 10 ड्रामाज ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान TRP चार्ट्स राइट नाउ और लास्ट वीक के. और उसी के साथ कुछ और ट्रॉफी ट्रैक्स आपके लिए लेकर हाजिर होंगी. एवरी डे न्यू फ्लेवर राइट हेयर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. थैंक यू so much for connecting with me this afternoon. You have a good one.

गुरु रंधावा विद दैट ट्रैक विच इज कॉल्ड रूप दी रानी, पति पत्नी और वो दो। अब वो दो तो बच्चे भी हो सकते हैं, इनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी है। यू आर लिसनिंग टू योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो। पता है आपको एक बात कि दुनिया के सबसे खूबसूरत लोग जो है ना, उनमें से आप कई हो, आप में से जितने भी सब खूबसूरत लोग हैं ना, वो मेरी पोस्ट पर हंस लेते हैं, मेरी बात पर हंस लेते हैं, बाकी नहीं हंसते। अब आप देख लो, खूबसूरत हो तो हंस लो, नहीं तो आपकी इच्छा है। खैर, एक गाना और है जी लाइंड अप, उसके बाद लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। दिस इज योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो। आज के दिन कुछ कुछ बर्थडेज हैं, कुछ गिव अवेज हैं मेरे पास, वील टॉक मोर अबाउट दैट एज वी प्रोग्रेस इन आवर शो। फॉर नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज द वेदर प्लेइंग। फॉर नाउ इट इज 86 डिग्रीज, आज का हाई 86 ही है जी, एंड इट्स गोना गेट डाउन फ्रॉम नाउ ऑन। आज की जो शाम रहेगी दैट विल बी अराउंड 63। टुमारो मॉर्निंग इज गोना बी अ लिटिल कूलर देन टुडे, 55 फॉर अ लो, 72 फॉर अ हाई। थर्सडे वी आर लुकिंग एट अ सिमिलर टेंपरेचर, 53 एंड 73, and the whole weekend is going to be around 50s, low 60s and higher 80s. That is your weather update for now. It is Jojo Honey Singh collaborating with AP Tillon. एक्चुअली ये मैशअप नहीं लगाना, हमने गाना लगाना है, पर गाना लगाने से पहले एक और गाना है जो कि जिंदगी को डेडिकेटेड है। मुझे लगता है इससे बेहतर कोई चीज़ है नहीं लाइफ में। दुनिया में कुछ भी आ जाए ना, लाइफ इटसेल्फ इज़ द बिगेस्ट जॉय दैट यू विल एवर एक्सपीरियंस। और इस जिंदगी को अगर प्रेम आपने नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं है इस जिंदगी में रहने का। लव एंड लिव योर लाइफ।

0: Love you, Zindagi. Indeed, I love my life, and I hope that you love yours too. Good evening, Fanesia. Who is this?
1: Hi, this is Sam. How are you?
0: I am fantastic, Sam. Sab theek thaak?
1: Ji, mazay mein ek song request kar sakta hoon?
0: Wohi kar sakte hain, sir. Chole bhature ka kaam Chandigarh wale pe hota hai. Bataiye kya sunenge?
1: मैंने समझा शायद साइड में आपने वो भी शुरू किया हो
0: किया
1: तो मजे हो जाएंगे बट एनीवे
0: किया हुआ है पर वो साइड थोड़ी सी दूर है अरविंग में है मेरा रेस्टोरेंट ना तो वहाँ पे
1: अच्छा
0: मिलेंगे
1: अच्छा
0: अब बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
1: जी वो बंटी और बबली का है चोरी से चोरी
0: चोरी से चोरी बंटी और बबली कमिंग अप फॉर यू राइट आफ्टर द नेक्स्ट कमर्शियल ब्रेक. आप लोग भी कहीं मत जाइएगा जी, मैं यूं जा रहा हूं, यूं ही जल्दी से वापस आ रहा हूं. एंड लाइक आई सेड, कीप स्माइलिंग, स्पेशली खूबसूरत हो तो मुस्कुरा दो यार, वैसे भी जिंदगी छोटी सी है.
2: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
3: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
2: Visionary Eye. See clearly, live boldly.
4: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
5: Excuse me? It's called being loyal.
4: It's called being predictable.
5: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
4: And what's so special at Neon Cactus?
5: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabiha halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
4: Not bad.
5: Happy hours Monday to Friday. And amazing food and drink deals every day.
4: Okay, this I didn't expect from you.
5: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
6: यार बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस.
5: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं.
6: सच में एक्सपेंसेस से इनकम? कैसे?
5: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू. उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है.
6: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं वापस भी आएंगे.
5: एग्जैक्टली. अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर.
6: नंबर बोल जल्दी.
5: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com.
7: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश.
8: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है. पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है. और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी. पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं. प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है. साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं. आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8-6823464611 और विजिट masterjoshigram.com. अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई.
9: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली ऑन रिसर्च में वेरी.
10: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस. ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क. ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न. या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर.
11: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा.
10: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट्स से कनेक्ट किया जाए.
12: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है. नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं. रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में.
13: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338. 817-786-3338. The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ.
14: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
15: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
16: यार मैं थक चुकी हूँ, पार्टी के पहले सफाई, फिर पार्टी, बाद में सफाई, ऊपर से आप तो कोई मदद करते हो नहीं. मेरे से नहीं होगा ये.
17: अरे यार बोला ना, लेकिन तुम्हें सुनना ही नहीं. बताया ना, जहाँ पार्टी है वहीं खाना है, जहाँ खाना है वहीं पार्टी है. सिंपल.
16: मतलब
17: देख, जगह बुक करेंगे देंगे पूरे 3 घंटे के लिए और वो भी सिर्फ $250 में। और खाना पीना जो ऑर्डर करना है वो अलग से पे करके वहीं ऑर्डर कर लेंगे। अब तेरे को तेरी सफाई की पड़ी है, अब खुल के पार्टीज कर, चाहे क्रिसमस हो, थैंक्सगिविंग हो या फिर तेरे भाई का बर्थडे। नाम याद रख बस, फन पिज्जा एट कॉलोनी।
15: विजिट फन पिज्जा किचन FPK@Colony इज नाउ ओपन फॉर डाइन इन। Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
10: Ek baar jo maine commitment kar di,
18: to phir sirf Fun Asia hi sununga.
19: I am Rahat Fateh Ali Khan and you are listening Radio Fun Asia.

गर्मियां आ रही हैं भैया, गर्मियां, और गर्मियों में ना लू लग जाती है। मामा कहती थी कि भैया प्याज ज़्यादा खाया करो, प्याज खाने से लू नहीं लगती। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लू जाते हैं लोग, हमारे वहाँ तो लू आती है, लग जाती है। यहाँ पे एक्सक्यूज़ मी, कैन आई गो टू द लू? सो एक लू वो है जो लगती है, एक लू वैसे वो वाली भी लगती है, लू जाके जो होता है, बट समझ गए ना आप कि डिफरेंट काइंड ऑफ लू। बट बात यहाँ ख़त्म नहीं होती भैया, बात ऐसी है कि लू ना गर्मियों में टेक्सस में भी होती है, और टेक्सस का क्या होता है कि टेक्सस में होती है खूब सारी गर्मी इंडिया की तरह। तो अगर लू से बचना है तो कुछ उपाय हैं नेचर में दिए गए हैं। अब वो क्या क्या उपाय हैं मैं बता रहा हूँ आपको। सलाद में कच्चा आम थोड़ा सा रखना चाहिए, हमेशा साथ में छोटा प्याज खाएँ, सिर और कान हमेशा ढक कर रखें, खूब सारा पानी पिया करें। और अगर फिर भी आपको लू लग जाए ना, तो आप क्या करें कि अपनी पत्नी को बताइए, क्योंकि पत्नियां क्या है अच्छे अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। किसी को गर्मी या लू लगे तो बीवी के पास ले जा, ये सब गर्मी और वैसे भी गर्मियाँ आ रही हैं, और जब ज़्यादा गर्मी हो जाए, जब यहाँ टेम्परेचर 100 से ऊपर चला जाए ना, तो आपने एक काम करना है कि अपने सिर को ढक के बाहर निकलना है, क्योंकि आपको पता ही होगा, नहीं पता तो ज्ञान की बात है वैसे तो, कि जो भूसा है उसमें आग जल्दी लग जाती है, इसलिए सर ढक के प्लीज़।

0: 5 बज के 27 मिनट इन द स्टूडियो क्लॉक, 527 इन द स्टूडियो क्लॉक एंड आई एम गोना बी विद यू टिल 7 o'clock. मई की 5 तारीख हो चुकी है जी, ट्यूसडे का दिन है और मंगलवार की बात आपको नहीं पता तो बता देता हूं भैया, मन की बातें आज बीवी से नहीं करनी, बिकॉज मन मन है और गल होती है बात, और वॉर का मतलब आपको पता है, ट्रंप बाबा एक्सपर्ट है, अब तक तो आप भी एक्सपर्ट हो गए होंगे. सो इसलिए प्लीज डू नॉट डू द मन स्टॉक्स विद द वाइफ्स टुडेज बिकॉज इट कैन कन्वर्ट इन टू अ वॉर. मंगल वॉर.
1: अंकल दादू से
2: गाइस, दादू आ गए,
1: यस आ गए,
2: गिफ्ट रेडी?
1: हां रेडी, मैं लेके आता
2: हूं. गाइस गाइस, दादू से कम.

बच्चों तो तुम नए शादी करना चाहते हो ना, और फिर तुम ये भी डर रहे हो कि यार पत्नी ऐसी मिले जो लड़ाई ना किया करे। भैया देखो, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि शास्त्रों में इसी को पत्थर से तेल निकालने का कार्य बोला जाता था। देखो, बीवी है तो लड़ेगी, बर्तन है तो खड़केंगे, दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और वैसे भी ना, शादी के बाद पहले 2-4 साल ही मुश्किल होती है, उसके बाद आदत पड़ जाती है ब्रो।

0: मेरा भी प्यार आपके लिए बहुत ज्यादा यार, इसलिए आपके लिए लेके आया हूँ जी रेड हॉट चिली पेपर का जबरदस्त ड्राई चिली चिकन, या फिर उनका बेबी कॉर्न मंचूरियन, और जबरदस्त मक्खन वाला चिकन यानी कि RHCB का बटर चिकन जो कि जबरदस्त है। अच्छा जी, आप जीत सकते हैं ये तीनों में से एक आइटम, आपकी अपनी चॉइस है। मैं होता तो बटर चिकन ही खाता। तीन लोकेशंस में क्लेम कर सकते हैं इसको, एलन हो, रिचर्डसन हो या हो मिकिनी। इट्स नॉट अवेलेबल फॉर द फ्रिस्को लोकेशन। आई एम गोना आस्क यू क्वेश्चन हर बार की तरह, और जो देगा सही जवाब तीसरे नंबर का कॉलर। तीसरे नंबर का क्यों भाई? वैसे ही मैं बचपन में गिर गया था, मुझे तीन बारी चोट लगी, मैंने तीन नंबर अपने पास पेट कर लिया, तीन कुत्ते रख चुका हूँ, अब आगे की बात बाद में बताऊंगा। तीसरे नंबर का कॉलर जो है जी, उसको मिलेगा ये इनाम। क्या है सवाल? टुडे मार्क्स द बर्थडे ऑफ एन एक्टर, और ये एक्टर बड़े ही जबरदस्त किस्म के एक्टर हैं। मतलब ही इज नॉट डन अ मेन स्ट्रीम रोल, मतलब मेन स्ट्रीम रोल किए हैं, बट एज अ लीडिंग एक्टर एक दो रोल आए होंगे, बट नॉट एज अ हीरो। मैडक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में इनका काम है, काफ़ी फिल्मों में रोल प्ले किया, जैसे कि स्त्री, भेड़िया, स्त्री टू, अमेजोन प्राइम वीडियो में हथौड़ा त्यागी के नाम से इनका एक सीरीज, पाताल लोक में नजर आए, ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल टू, रश्मि, रॉकेट, वेदा एंड स्टोलन। अगर इनके करियर की बात की जाए तो दिल्ली थिएटर के बाद एक छोटा सा अपीयरेंस आया था रंग दे बसंती में एज अ स्टूडेंट, और उसके बाद मुंबई आए एंड देन वर्क फॉर नॉकआउट एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, और उसके बाद सोल ऑफ सैंड, देन डर्टी पिक्चर नो वन किल जैसिका, उसमें भी कास्टिंग डायरेक्टर रहे, एंड देन डन मैनी अदर मूवीज एज वेल। मैं लगा रहा हूँ उनकी फिल्म का एक गाना, आपको बताना है उनका नाम, जो देगा मुझे सही जवाब ही और शी गेट्स रेड हॉट चिली पेपर का जबरदस्त गिव अवे। कॉलर नंबर 3, इफ यू गिव मी द राइट आंसर देयर इज योर शॉट। हियर वी गो।
1: हे, बाकी सब ठीक?
2: बस चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
2: बस चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक है ना?
2: बस चल रहा है भाई।
1: व्हाट अबाउट यू?
2: हाँ चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
2: बस चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
2: बस चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक है ना?
2: हाँ ठीक है।
1: और तेरा?
2: बस चल रहा है। ओह, कितना मनमोहक व्यू है, इतना सन्नाटा क्यों है, देखो ना ढलता सूरज धीरे धीरे धीरे धीरे ढल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
2: बस चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
2: बस चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बाकी सब ठीक बस चल रहा है। इस गाने में भी नजर आ रहे हैं वो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। नाम शायद आपको याद ना हो, पर मेरे साथ कौन है, करते हैं इनसे बात। गुड इवनिंग फनेजिया, कौन बोल रहा है?
3: सिद्धार्थ।
0: सिद्धार्थ, क्या हाल है? बड़े थके हुए लग रहे हो आज आप।
3: नहीं सर, थोड़ा आवाज बैठी हुई है।
0: बैठी हुई है?
3: हाँ जी।
0: चलो वो भी बैठी है आस लगा के, कोई बात नहीं। बताओ नाम।
3: अभिषेक बैनर्जी।
0: अभिषेक बैनर्जी कहते हैं हमारे सिद्धार्थ भाई। देखते हैं जी आपका जवाब दुरुस्त है कि नहीं। दूसरे नंबर पे कॉलर कौन है? हेलो।
4: हेलो।
0: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते।
4: मैं सेकंड नंबर आंसर दूं भी या नहीं दूं? अभिषेक बैनर्जी।
0: अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, पर आप उनकी लाइफ में नंबर वन है, ये बात याद रखना।
4: हमें तो आपको सुनकर ही मजा आ जाता है।
0: थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या नाम है आपका?
4: पूजा।
0: पूजा, वाह, पूजा करूं मैं तेरी, तेरी तपस्या करूं, क्या बात है। मतलब बंदे के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, पूजा ही पूजा है उसकी जिंदगी में, क्या बात है। एक और लेडी आई थी, उनका नाम था खुशी। मैंने कहा खुशी यार आपने तो मतलब पनिशमेंट ही दे रखी है अपने हस्बैंड को, बेचारा सैड भी हो तो बोलेगा खुशी। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपकी कॉल का, थैंक यू वेरी मच। कॉलर नंबर 3, गुड इवनिंग, यू कैन बी द लकी वन, व्हाट्स योर नेम? हेलो। बात नहीं करते हैं हमारे साथ, बात ही नहीं करते हैं। गुड इवनिंग फनीशिया, कौन बोला है? रेडियो का वॉल्यूम कम, रेडियो का वॉल्यूम कम कर लीजिए ना प्लीज, नहीं तो जाना पड़ेगा, फोन फट जाएगा कान।
5: हेलो कमारून भाई,
0: कान फट जाएगा, रेडियो का वॉल्यूम बंद कर लीजिए ना, समझते ही नहीं है इनको, इनको आता ही नहीं, इनको तो आता ही नहीं है। अच्छा आपका नाम क्या है?
5: मेरा नाम सत्य ऋषि है।
0: सत्य ऋषि मतलब सच ही बोलेंगे
5: जी?
0: सत्तर ऋषि,
5: सात ऋषि
0: सर। बल्ले बल्ले बल्ले, मैंने कहा यहाँ एक मेरे पास ऋषि दोस्त था, वही नहीं संभलता था, सात ऋषि को क्या करूंगा। चलो बताइए क्या जवाब है आपके पास?
5: अभिषेक बैनर्जी।
0: खेला का खेल में आप जीत गए हैं, मुबारक हो आपको। आपको तो, आपको तो आता है। अरे बहुत बढ़िया आता है। क्या नाम बोले थे अपना? सत्तर ऋषि,
5: सप्तर ऋषि,
0: सत्तर ऋषि, सत्तर ऋषि मंडल, सत्तर ऋषि। बहुत बहुत मुबारक हो, मैं आपकी डिटेल्स ऑफ द ईयर लेता हूँ। यस इट इज इनडीड अपना बैनर्जी साहब जिन्होंने बहुत अच्छे रोल किए हैं. ही इज आई थिंक ही इज अ वेरी वर्सटाइल एक्टर. ड्रीम गर्ल ले लो, इनकी स्त्री ले लो, स्त्री टू ले लो. आई थिंक ही इज डन अ फैंटास्टिक जॉब. यू होल्ड द लाइन फॉर मी, आई विल टेक योर डिटेल्स ऑफ द एयर. यस इट इज दिस जेंटलमैन जिनका नाम है अभिषेक बैनर्जी. आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था, खड़गपुर वेस्ट बंगाल. आज 40 साल के हो चुके हैं, May 5th, 1985. शबनम जी जाइएगा मत, जो आप कहना चाहती थी हम सुनेंगे. ऑलराइट, आप लोग गाना सुने, मैं आ रहा हूँ वापस.

0: वैसे भी सुना है आजकल भेड़िया लोगों का कीटो डाइट चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: तेरा भी बोलना।
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू
1: भाई, लिख के दूं क्या?

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय वन गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: ओए की दशा तेनु, मैंने नवे सॉफ्टवेयर खरीदना पसंद है जो एक दूजे दिन आल काम ना करे।
2: मचा, आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर ऐसे।
3: मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपनी प्राइवेसी का कोई चिंता नहीं बाबा।
4: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite, जिसे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है। कॉमन एक सॉफ्टवेयर एक Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
5: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। Desi Mandi, powered by Desis, loved by Dallas.
6: Immigration attorneys in the DFW area. If you're looking to grow your client base and reduce your overheads, join Fun Asia Media Group for an exclusive short seminar designed only for you. Discover how Fun Asia can deliver a steady stream of qualified clients while helping you cut costs on paralegal work and routine filings. Plus, enjoy a complimentary lunch on us. Seats are limited. Please email your interest to immigration@funasia.net to reserve your spot.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं।
10: तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
12: Drive a BMW, Mercedes or Audi? Then don't trust it with just anyone. German Motorworks in Richardson, expert European auto care, precision diagnostic and top tier service. All under one roof. From oil changes to brakes, they keep your drive flawless. Call 972-690-6623 today. German Motorworks, engineered for excellence.
13: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 469-362-7755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day flavor play.
14: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
15: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
16: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
17: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
16: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
18: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
19: इन प्लेनो।
18: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
15: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
8: भाई, ऑफिस लॉग आउट हो जाता है पर दिमाग कभी लॉग आउट ही नहीं होता।
1: बिकॉज इट्स नेवर ट्रेन्ड टू पॉज, दैट्स व्हाई मेडिटेशन मैटर्स।
8: कितने एप्स ट्राई किए यार, बट
1: देन डोंट ट्राई अलोन, एक्सपीरियंस इट at Osho Transformation Retreat.
2: May 14th to May 17th, a three-day immersive journey to release stress, clear emotional blocks and reconnect with your inner self through powerful meditation techniques guided by experienced facilitators. Register now at oshouniversal.org. Pause the noise. Meet yourself.

0: McDonald's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
1: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
2: बेटा इतनी देर से बैठे हो, होमवर्क हुआ?
3: मम्मा कोशिश तो कर रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है।
2: रोज का सेम प्रॉब्लम।
4: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे। लुमडी लर्निंग सेंटर, जहाँ बच्चे रटते नहीं समझते हैं। लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मकिनी ISD स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है।
5: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 टू 13। कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रांग क्रिटिकल थिंकिंग।
4: कन्वीनिएंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को।
0: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फाइनेंशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ। लुमडी लर्निंग सेंटर, बिल्ड मास्टरी, अनलॉक पोटेंशियल। I've been researching retirement planning.
6: Oh, really? Where?
0: Google, YouTube, a guy on TikTok.
6: Or you could just talk to WealthTactic.
0: What's the difference?
6: They create a real retirement strategy. Not just investments, but a plan for when your income stops.
7: WealthTactic. Because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
8: भाई ऑफिस लॉग आउट हो जाता है पर दिमाग कभी लॉग आउट ही नहीं होता।
9: बिकॉज इट्स नेवर ट्रेन्ड टू पॉज, दैट्स व्हाई मेडिटेशन मैटर्स।
8: कितने एप्स ट्राई किए यार, बट
9: देन डोंट ट्राई अलोन, एक्सपीरियंस इट एट ओशो ट्रांसफॉर्मेशन रिट्रीट।
0: मे 14th टू मे 17th, अ 3-day इमर्सिव जर्नी टू रिलीज स्ट्रेस, क्लियर इमोशनल ब्लॉक्स एंड रीकनेक्ट विद योर इनर सेल्फ थ्रू पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स गाइडेड बाय एक्सपीरियंस फैसिलिटेटर्स। रजिस्टर नाउ एट oshoyuniversal.org. पॉज द नॉइज, meet yourself.

एब्सोल्युटली बिंदास बोलो और फनेशिया पे आ गए, अपने दिल के सारे द्वार खोलो यार, दिल से किया करो बात, मैं रहूंगा आपके साथ ऑल द वे टिल 7 o'clock दिस इवनिंग। गुड वाला इवनिंग, वेलकम बैक, दिस इज योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो, द नेम ऑफ द शो इज द बिंदास शो, ब्रॉट टू यू बाय वेरी ओन बंदा बिंदास मार्विन दास। यूरोप डे आज के दिन मनाया जाता है जी, 5th of May, एंड दैट मार्क्स दिस ग्रेट सेलिब्रेशन ऑफ यूरोप डे। यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट वाइड सेलिब्रेशन ऑफ पीस एंड यूनिटी इन यूरोप इन मे एवरी ईयर ऑन टू सेपरेट डेट्स। द यूरोपियन यूनियन सेलिब्रेट्स द डे ऑन May 9th, वाइल द काउंसिल ऑफ यूरोप सेलिब्रेट्स इट ऑन May 5th। यूरोप डे इज अ टाइम टू सेलिब्रेट यूरोप्स रिच हिस्ट्री वाइल प्लानिंग फॉर इट्स फ्यूचर। इट सेलिब्रेट्स द यूनिटी अमंग द कंट्रीज इन द यूरोपियन यूनियन वाइल चैलेंजिंग पीपल टू रिफ्लेक्ट ऑन द इशूज दैट अफेक्टेड। ऑन यूरोप डे यूरोपियन सिटीजन्स आर मेड टू फील क्लोजर टू ईच अदर। Countries within the union strengthening their ties, and citizens can overcome any sense of distance they feel from the various European countries. I have been to several parts of Europe. Main Paris gaya hoon, main Brussels gaya hoon, main Spain gaya hoon, and I think Europe is a wonderful place. If you guys have been to Europe somewhere, aap log apni kahaniyan share kare mere sath, kahan kahan gaye hain, and what did you like about the place you visited? Let's talk about Europe on Europe Day, which is happening today, May 5th. And if you've been to Europe, I'd like to hear it. कहाँ गए हैं, क्या अच्छा लगा, डिड यू लाइक द फूड, इफ यस व्हाट डिड यू ईट, कहाँ रहे, अगर वो जगह पसंद आई, समथिंग दैट यू वांट टू पॉइंट आउट टू फ्यूचर यूरोप ट्रैवलर्स, डू गिव मी अ कॉल, 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो। रिमेंबर द नेम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड बिफोर योर नेक्स्ट ज्वेलरी परचेज, बिकॉज दीज आर द पीपल दैट विल गेट यू सम ग्रेट ग्रेट डील्स। यू कैन शाइन ब्राइट with diamonds, and you know, nothing is better than diamonds for a girl. They say diamonds are a girl's best friend, and if you want to be in the good books of your girls, get them some diamonds. Dallas Preston Road pe aa chuka hai Frisco mein Malabar Gold and Diamond. Destination ek hi hai for stunning diamond rings, earring, necklaces, anything that you're celebrating, from engagements, anniversaries, or just celebrating love or living life every day. Timeless quality and designs, that is Malabar Gold and Diamond. Download the app and you'll know why मलाबार डायमंड गोल्डन डायमंड स्टैंड्स आउट। आप लोगों से सवाल कर रहे हैं, मुझे पता है आप लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, कौन कौन यूरोप गया है, कहां कहां गया है, क्या अच्छा लगा, बताइए जरा, 972-235-5555।

गोविंदा नाम मेरा, मेरा नहीं, फिल्म का नाम था विक्की अनकियारा, इसमें नजर आई जी। विक्की पाजी क्या हाल है, कतरीना जी को हमारा हेलो बोल दीजिएगा। ऑल इज वेल। आईपीएल की तरफ से अगर बात की जाए तो आज का मैच था, विच वॉज द 48th मैच ऑफ द 70 दैट आर ड्यू। दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स वॉज द गेम, एंड टुडेज गेम दिल्ली कैपिटल्स बैटेड फर्स्ट, 155 रन बनाए उन्होंने 7 विकेटों के लॉस पे इन देयर 20 ओवर्स। समीर रिजवी 40 ऑफ 24, ट्रिस्टन स्टब्स 38 ऑफ 31, एंड पथुम निसांका 19 ऑफ 15। देन केम्स चेन्नई सुपर किंग्स टू बैट। मैं धोनी की वेट कर रहा था पर अभी भी नहीं आए। 159 फॉर 2 इन 17.3 ओवर्स, यानी कि 15 गेंदें बची थी, 8 विकेटों से ये गेम चेन्नई सुपर किंग्स जीत गया। बल्लेबाजी की बात की जाए तो संजू सैमसन, बस्कर भाई 87 नॉट आउट इन 50 डिलीवरीज, कार्तिक शर्मा 41 एंड उर्विल पटेल 17 टेकिंग द टीम टू दैट विन देयर। आई जस्ट मिस्ड अ कॉल जिसने कॉल किया था, भाई थोड़ा सबर, अब आप कॉल कर सकते हैं, लाइनें हमारी खुली हैं। एक ही गाने का वक्त है और वो लगाने लगा हूँ, उसके बाद जाएंगे जी हम कहाँ ब्रेक पे यार, और कहाँ थोड़ी सी बातों को आराम देंगे। आप कहीं मत जाइएगा, बिकॉज आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस नेक्स्ट ट्रैक।

0: The King Khan is back in the news. Bollywood's King Shah Rukh Khan is once again getting up for a massive move at the global box office. Reports suggest that his upcoming film, King, has secured a crucial international deal, one that's now drawing comparisons to major Hollywood projects like Avengers Doomsday. According to The Buzz, this deal focuses on global distribution and an expanded screen count, aiming to release King on record-breaking scale worldwide. What makes this even more interesting is that the strategy is reportedly designed to directly compete with big releases from Marvel Studios. The hype around King is already strong, with promises of high-octane action, stylish presentation, and a grand cinematic scale. Audiences can expect to see Shah Rukh Khan in a completely new avatar. Industry insiders believe that this is the deal that is executed, if executed well, could become the biggest international release in the history of Indian cinema. Well, I'm looking out for King, and why not? The King Khan will be there, man. Sabko pasand hai. Ek break ke baad aaya. Don't go anywhere.
1: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
2: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
1: के टू ड्राइव मतलब
2: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब के टू ड्राइव हैंडल करता है।
1: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
2: 100%
3: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402
4: कभी ऐसा लगता है कि डिसीजंस आप ले रहे हो पर रिजल्ट्स कंट्रोल में नहीं, करियर रुक सा गया है, रिश्तों में क्लैरिटी नहीं और फ्यूचर बस एक सवाल बनकर रह गया है? हर जगह आंसर्स ढूंढने से बेहतर है सही जगह समझना। कनेक्ट विद अनीता चुंद्रू एट द कॉलोनी टेक्सिस। चार्ट रीडिंग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हवन सर्विसेज से मिले सही गाइडेंस। Contact 945-338-7670. Email astro111city@gmail.com. Anita Chundru, your life with right direction.
5: Contact 945-338-7670. Email astro111city@gmail.com. Or visit taxi at 5200 Memorial Drive, Colony, Texas.
4: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? उमर ख्वाजा।
6: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
7: Get ready for the smoky, flavorful goodness of Tandoori Chicken Pizza. Perfectly marinated tandoori chicken, mildly spiced, tender, and bursting with aroma. Layered over creamy cheese and a golden crust. It's the perfect balance. Not too spicy, not too mild. Just right for every flavor lover. Taste the magic of the tandoor on your favorite sliced tandoori chicken pizza. Only at Fun Pizza Kitchen. Fun Pizza Kitchen, where every slice tells a story.
8: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
9: भाई ऑफिस लॉग आउट हो जाता है पर दिमाग कभी लॉग आउट ही नहीं होता।
10: बिकॉज इट्स नेवर ट्रेन्ड टू पॉज, दैट्स व्हाई मेडिटेशन मैटर्स।
9: कितने एप्स ट्राई किए यार, बट
10: देन डोंट ट्राई अलोन, एक्सपीरियंस इट एट ओशो ट्रांसफॉर्मेशन रिट्रीट।
11: May 14th to May 17th, अ 3-day इमर्सिव जर्नी टू रिलीज स्ट्रेस, क्लियर इमोशनल ब्लॉक्स एंड रिकनेक्ट विद योर इनर सेल्फ थ्रू पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स गाइडेड बाय एक्सपीरियंस फैसिलिटेटर्स। रजिस्टर नाउ एट oshouniversal.org. पॉज द नॉइज, meet yourself.
12: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Fun Asia Radio.

एक लड़की जाती है पंडित जी के पास, पंडित जी को बोलती है, पंडित जी मेरी लाइफ में दो लड़के हैं, कौन होगा वो किस्मत वाला जिससे मेरी शादी होगी? पंडित जी कहते हैं, पहले वाले से तुम्हारी शादी होगी और दूसरा वाला किस्मत वाला होगा।

कल रात को ना चित्रगुप्त सपने में आए थे मेरे। चित्रगुप्त पता है ना आपको, बड़े जाने माने बंदे थे भाई। उनका जो लिस्ट होती है ना, बड़ी खतरनाक होती है उनकी लिस्ट। तो चित्रगुप्त साहब आए और बोल रहे थे कि यार बंदा बिंदास मारविंदास, चिंता मत कर यार, तू तेरी बातों को जो इग्नोर करते हैं ना उनके लिए, कहते मैं अलग से लिस्ट बना रहा हूँ। ये चित्रगुप्त कह रहे थे।

0: 6:25 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। आज मई की 5 तारीख है, मंगलवार का दिन है, शाम ढल चुकी है जी। बस ढलते ढलते ऐसे ही आप घर पहुंचेंगे, फिर वो थोड़ी सी ची ची ची चू पे पे पे मतलब घर में टीवी की आवाज आती होगी ना, समझ लिया करो यार। उसके बाद थोड़ा खाना पीना, फिर थोड़ी सी मतलब टीवी की बैकग्राउंड आवाज। उसके बाद आप बेड पे सोने जाओगे तब भी थोड़ी चुट चुट चुट मतलब वो पंखे वगैरह की आवाज, फिर आप शांति से सो जाना। गुड नाइट।
1: पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: अच्छा, हम देसियों में ना एक बड़ी खास बात है, वो हम बाद में जाता हूँ, पहले आपको ये बता दूं कि आज जन्मदिन है जी एक और, विच इज दिस वंडरफुल सिंगर, उनका नाम है क्रेग डेविड। क्रेग डेविड के गाने कुछ याद हैं आपको? नहीं याद हैं तो मैं सुनाता हूँ ना यार। ये देखो, ऐसा गाना बनाया था उन्होंने।

0: ऑलराइट विद दैट लेट्स टेक यू टू अ इंपॉर्टेंट सेगमेंट हियर जो कि हम सारे सोचते हैं कि हाँ आज कर लेंगे कल कर लेंगे हो जाएगा यार क्या दिक्कत है यार वो है टैक्सेस। टैक्सेस में ऐसा प्रॉब्लम है भैया कि अगर अंकल सैम आपके पीछे लग गए ना तो आपको कोई नहीं छुड़ा सकता, ना पापा आएंगे ना मम्मी आएगी और तो और बीवी का भी जोर वहाँ पे नहीं चलेगा। एक ही चीज़ चल सकती है, एक गुड CPA हु कैन हेल्प यू formulate all of your tax problems, who can help you bring them together and who can help you address them and you don't have to be a part. Wo sari headache lenge. Kaun hai wo? Shalini Kodiyal, CPA is the name and somebody who's been doing this for quite some time, getting resolutions for many tax clients. Let's welcome her. Good evening, Shalini. How are you? Shalini ji, good evening. Can you hear me now?
1: Good evening, Marvin. How are you?
0: God is good, life is beautiful. आप बताइए सब ठीक ठाक। ये बताइए कि taxes में सबसे एक important बात होती है कि आपको अगर आपका business है and a lot of people know कि हाँ यार और कई लोग ऐसा भी करते हैं कि they open an LLC or a business or a company to put some of the expenses of their life there, which is fine. But सबसे बड़ी problem है कि हम तो रसीदें ही नहीं रखते, हमें तो पता ही नहीं, मालूम ही नहीं है। तो आप क्या कहेंगी फॉर अ गुड टैक्स टू हैपन, फॉर अ गुड अकाउंटिंग टू हैपन, हाउ इम्पॉर्टेंट आर योर एक्सपेंसेस एंड ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस?
1: वेल, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव बोथ ऑफ देम सेपरेट, योर बिजनेस एंड पर्सनल। स्पेशली फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस, IRS ऑलवेज वॉन्ट अ डिटेल्ड यू नो रिकॉर्ड ऑफ योर एक्सपेंसेस। Especially if you buy equipment or material over $2,500, that's really important. So the good habit is just take a picture. Like whenever you buy something, take a picture and upload it on your accounting software or to your local drive to keep track of your expenses.
0: Wonderful. So according to you, tax ye jo taxes hain, इसके लिए अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना, उनका एक रिकॉर्ड बनाना बहुत जरूरी है। नाउ इफ समबडी इज सुपर बिजी, राइट, फैमिली, किड्स, वाइफ, तो अगर उनके पास टाइम नहीं है, डू यू प्रोवाइड बुककीपिंग सर्विसेज? डू यू प्रोवाइड दिस ट्रैकिंग फॉर सम ऑफ द पीपल?
1: यस, वी डू प्रोवाइड अकाउंटिंग सर्विसेज टू स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस ओनर्स एंड वी हेल्प देम हाउ दे कैन मैनेज देयर एक्सपेंसेस स्मूथली।
0: वंडरफुल। नाउ एक और बड़ा सवाल, बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ भाई टैक्स प्लानिंग, what is tax planning, how can you help our clients, and an example of your tax planning strategy that worked for your client?
1: Right, so tax planning is a process where your CPA or your tax professional identify tax loopholes. They look for deductions, credits, and tax advantage strategies that will benefit you long term. So when a single member LLC owner comes with $500,000 of income, right, and with no tax strategy, that's really an ideal situation where we do projections based on C-Corp or S-Corp and make sure the client gets the best benefit out of all tax strategies.
0: Wonderful. And iske saath saath koi example bhi de dijiye jisme aapne tax strategy kisi ke liye dali ho. Yeah, you implemented a tax strategy which saved your client a ton of money.
1: Right. I mean, Marvin, tax strategies, my savings to hai hi hai. I've done close to 95 tax plans so far, and every client has received a tremendous amount of savings. But savings comes with proper understanding of your tax situation. So first thing is to understand what are your taxes, what are your tax bracket looks like, and then what are the strategies out there that help you and your family and your business overall. It's not a cookie cutter model.
0: आपको उनका सिचुएशन स्टडी करनी पड़ेगी एंड देन यू कैन कम अप विद अ सॉल्यूशन फॉर देम। वंडरफुल, गुड टू नो शालिनी। नाउ टेल मी दिस इज वेल के यू नो अ लॉट ऑफ पीपल आर हियरिंग अबाउट FBAR और ये वही है जैसे ऊपर से हमारे एरोप्लेन निकल जाता है वैसे कई लोगों की बातें निकल जाती हैं। सो FBAR आई थिंक इज समथिंग दैट पीपल नो बट इट जस्ट फ्लाइज ओवर द हेड। व्हाई डोंट यू एक्सप्लेन व्हाट इज FBAR एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बी कंप्लायंट विद दैट?
1: FBAR इज हाईली इम्पोर्टेंट पीस इन आवर इंडियन कम्युनिटी टैक्सेशन। It's reporting your foreign accounts. So if you hold more than $10,000 in your foreign assets, you need to report FBAR through EBAR system. And FBAR is reporting of your foreign bank and financial accounts to the FinCEN Department, which is the Financial Crimes Enforcement Network. And it's very important. People don't understand when till they, you know, get a letter of a penalty and notice from the FinCEN Department. I'm helping a client who has not filed FBAR for the last 10 years, and he also had some PIFC accounts, P-I-F-C. PIFC accounts are those where you hold mutual funds ETFs in Indian accounts. You need to report Form 8621 to the IRS. So very important piece that our Indian taxpayers that are residing in U.S. Forget about it.
0: Wonderful. Get in touch with Shalini Kodiyal. Get compliant. Get going. Get organized. 281-760-5573. Call to the studio. Get this number anytime. Shalini appreciates you. Remember the name? Shalini Kodiyal, CPA, LLC.

चलो वहां में तो आप चले ही आओ, बट उससे पहले आपको एक और जगह जाना है जिसका नाम है जी Page 3 Eatery. द नेशन वांट्स टू नो क्या हो रहा है Page 3 Eatery में. आपका स्वागत है इस डिबेट सेगमेंट. डिबेट सेगमेंट छोड़ो, आपको बताना चाहता हूँ कि Page 3 Eatery अगर आप अभी तक नहीं गए हो भैया, यू आर मिसिंग आउट. ब्रेकिंग न्यूज इज नाउ ऑन Page 3. डालस हैज गॉट अ न्यू फ्लेवर एट हब 121. Page 3 Eatery आ चुका है जी, वेयर बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मीट्स मॉडर्न फ्लेयर. कबाब्स हो, चाट्स हो, फ्यूजन बाइट्स या मॉकटेल्स, I love their vada pav, I love their palak patta chaat, I love their papdi chaat, I love their ransom which is Nawab's ransom, mutton biryani, Lakhnavi style hai. Unka kebab khaiye, unka galotti kebab khaiye, oye hoye hoye, maza na aaya to paise wapas. Vibrant vibes hain, brunch, lunch, yaho dinner, perfect for foodies, dates ya flavor chasers. Page3eatery.com is the website, that's page3eatery.com. Today marks the birthday of the name that brought T-Series to the global platform, Gulshan Kumar Dua. 5th of May 1951 he was born, passed away on the 12th of August 1997. Indian film and music producer, and of course bahut sare bhajan bhi unhone gaye hain. Super Cassettes Industries Private Limited music label in the Bollywood industry. After founding T-Series in 1983, he established it as a leading record label in the 1990s. Death ke baad, T-Series has been running by his younger brother Krishan Kumar and son Bhushan Kumar. His daughters Tulsi Kumar and Kushali Kumar are also playback singers. We are remembering the legend of Indian music industry, Mr. Gulshan Kumar Dua, on today's date. Taking you to one more track, and uske baad aapko ek do baatein aur khas batayenge, phir jaane ka waqt hoga. But this is true, ki baby ko to bass pasand hai. और अगर पिज्जा बेस हो, अच्छे से बनाया हो, तो क्यों नहीं पसंद आएगा ब्रो? वो कहाँ मिलेगा? फन पिज्जा किचन.

वंडरफुल ट्रैक, और उसके साथ साथ हो रहा है जी मेरा वक्त आज के लिए आपसे इजाजत लेने का. बट उससे पहले आपको ये बताता चलूं कि इफ़ यू आर लुकिंग टू ग्रो योर फाइनेंशियल फ्यूचर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर रिटायरमेंट, बिकॉज हम लोग ये सोचते हैं यार कि कहाँ बूढ़े होंगे हम. बर हकीकत तो यही है कि बूढ़ा तो हम सब ने होना है यार, हम उसको डिले करते रहते हैं या एक्सेप्ट करना छोड़ देते हैं. बट यू नो वन डे योर रेगुलर इनकम इज़ गोना स्टॉप, यू आर गोना रिटायर. वॉट इज़ गोना हैपन देन? If you want to have a steady income even when you retire, maybe more income than what you are making now, that is possible through wealth management. And that can be done by My Time Equity. Mr. Sudhir Pai is the principal of this company. He does alternative investments, chahe crypto ho, real estate ho. There are many options, but he guarantees you results. And that is what Sudhir Pai is known for. Make sure to log on to the website mytimeequity.com. mytimeequity.com. इस वेबसाइट पे जाइए, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन, कॉल देम, मेक एन अपॉइंटमेंट, एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. विद दैट इट इज टाइम फॉर मी टू से बाय बाय, अडियोस, गुड नाइट. अपना ख्याल रखिए. जिंदगी में बहुत सारी चीजें हमें तंग करती हैं, हमें परेशान करती हैं, बट हाउ वी रिएक्ट टू दैट डिपेंड्स ऑन अस. अब अगर परेशानी है उसके बारे में सोच सोच के तो कुछ नहीं होगा. वेन यू कीप थिंकिंग अबाउट दैट स्ट्रेस, दैट सिचुएशन, दैट पेमेंट, दैट प्रॉब्लम, इट इज नॉट गोना सॉल्व. What is going to happen? You're going to get more stressed. और चिंता जो है वो आयु को खा जाती है भैया. इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन ढूंढो. डोंट फोकस ऑन द प्रॉब्लम, फोकस ऑन द सोल्यूशन. एंड इफ यू कांट फाइंड अ सोल्यूशन, अगर पता ही है कि वो प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, लेट इट गो. नथिंग एंड्स लाइफ, नथिंग एंड्स द वर्ल्ड. एक प्रॉब्लम आती है, चली जाएगी. दिस इज हाउ इट गोज. बट इफ यू फोकस ऑन द सोल्यूशन, यू माइट बी एबल टू फाइंड वन. एंड इफ यू फाइंड इट, Don't be stressful. It is gonna pass as well. With that, good night. Bye bye. Adios. Shabakhair. See you tomorrow.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
3: अरे सारे तो सेम है.
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला.
3: ओ हाँ, ये तो अलग है.
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं front page पे रहूँ.
6: Front page का तो पता नहीं, but तेरा page 3 में होना मेरी guarantee है.
5: कैसे?
6: Page 3 eatery?
5: No, not another restaurant again.
6: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
5: मतलब great food, great drinks, and great company. यानी कि मैं.
7: Page 3 eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
8: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस. ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क. ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न. या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर.
9: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा.
8: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए.
10: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है. नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं. रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में.
11: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338. 817-786-3338. The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ.
12: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
11: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.